प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक मालवा टायर्स एंड सर्विसेज दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। ए 24 घंटे सत्तो दिन मोबाइल सर्विसेज प्रदान करदे ने। इना तो किसी भी तरह दे नवे ते पुराने ट्रक एंड ट्रेलर टायर्स, व्हील बैलेंस एंड अलाइनमेंट्स, टायर रोटेशन एंड रिपेयर्स दीयां सेवावां लैण लई तुसी मालवा टायर्स नूं 403-899-1985 जां फिर 403-899-1984 ते संपर्क कर सकते हो। मालवा टायर्स एंड सर्विसेज दा पता है, बिल्डिंग नंबर 8616, 44th स्ट्रीट, साउथ ईस्ट, कैलगरी। प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक फर्स्ट चॉइस लाइटिंग, प्लंबिंग ते इलेक्ट्रिकल दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। फर्स्ट चॉइस लाइटिंग एंड प्लंबिंग दा फोन नंबर 403-457-1457 यानी 403-457-1457। इना दे शोरूम दा पता है, यूनिट नंबर 2121-3961 52 एवेन्यू नॉर्थ ईस्ट कैलगरी, कॉमनवेल्थ हाल दे बिल्कुल नेड़े। प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक HMP कस्टम कैबिनेट्स दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो किसी भी तरह दे कस्टम किचन, बार्स, वॉशरूम वैनिटी, क्लाजेट अते कमर्शियल मिल वर्क बारे कोई भी जानकारी लैण लई तुसी पॉल सेखों जी नूं 403-829-5000 या फिर 403-701-4947 ते संपर्क कर सकते हो। HMP कस्टम कैबिनेट्स लिमिटेड दा पता है, यूनिट नंबर 11-2316 27 एवेन्यू नॉर्थ ईस्ट कैलगरी। पंजाबी रेडियो 102.7 FM ते प्रसारित होण वाले प्रोग्रामां ते जो भी विचार पेश कीते जांदे ने ओ उना विद्वाना दे अपने विचार ने। रेडियो अदारा 102.7 FM इना दे नाल सहमत होवे ए लाजमी नहीं।

0: प्रोग्राम का यह हिस्सा तुहाडे तक परमजीत पलाहा डेजर्डिन इंश्योरेंस एजेंट के सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है।
1: इना तो किसी तरह की इंश्योरेंस जिवें लाइफ डिसेबिलिटी ऑटो होम मोटरबाइक बोट अते होर बिजनेस इंश्योरेंस बारे जानकारी लैण लई तुसी परमजीत पलाहा जी नूं 403-554-4444
0: यानी 403-554-4444 ते संपर्क कर सकते हो। परमजीत पलाहा जी दे ऑफिस का पता है यूनिट नंबर 210-2323 32nd एवेन्यू नॉर्थ ईस्ट कैलगरी।
2: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक YYC होम केयर सर्विसेज दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। ए किसे भी उम्र तो लै के बुजुर्गां तक दी घर विच रह के संभाल करदे ने। इना दे एक्सपीरियंस्ड पंजाबी केयर गिवर्स डेली एक्टिविटीज जिवें नवाउणा दवाई देना अपॉइंटमेंट्स ते लै के जाना या सफाई विच मदद करदे ने। तुहानू जेब विचों कोई भी खर्चा नहीं आएगा। ए सिद्धा सरकार नू बिल करदे ने। होर जानकारी लई कॉल करो 825-760-0983 825-760-0983। प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक फेयर डील फर्नीचर दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। किसे भी तरह दे मॉडर्न ट्रेडिशनल कस्टमाइज्ड फर्नीचर दी जानकारी लई पिछले 33 सालां तों कैलगरी विच सेवावां दे रहे फेयर डील फर्नीचर नूं कॉल करो 403-250-5646 403-250-5646। इना दा पता है 2023 34th स्ट्रीट नॉर्थ ईस्ट कैलगरी।
0: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक रियो बैंक्वेट हाल दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो किसी भी तरह दे ब्याह शादी दे प्रोग्राम बर्थडे पार्टी जां होर फंक्शन संबंधी हाल बुक करन दी जानकारी लैण लई तुसी रियो बैंक्वेट हाल नूं 403-633-2000 यानी 403-633-2000 ते संपर्क कर सकते हो। रियो बैंक्वेट हाल दा पता है यूनिट नंबर 2850 होपवेल प्लेस नॉर्थ ईस्ट कैलगरी। पंजाबी रेडियो 102.7 FM ते प्रसारित होने वाले प्रोग्रामा ते जो भी विचार पेश कीते जांदे ने ओ उना विद्वाना दे अपने विचार ने। रेडियो अदारा 102.7 FM इना दे नाल सहमत होवे ए लाजमी नहीं।
3: कौन ब्रह्मा का पिता है, कौन विष्णु की माँ, शंकर का दादा कौन है, हमको दे बता। ये जानने के लिए कृपया सुनिए जगतगुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन, सर्व पवित्र धर्मों के पवित्र शास्त्रों के आधार पर।
4: आपका सौभाग्य है कि आपको इन सदग्रंथों के दर्शन हो रहे हैं और साथ में ये अनमोल ज्ञान आपके सामने निर्णायक हो रहा है। अब आपको दिखाते हैं कि वो ऋषि महर्षि ये नकली क्या कहा करते थे और कहते थे कि हम वेदों को सही मानते हैं, वेद ज्ञान सत्य है, लेकिन उनका अपना अनुभव वेदों के विपरीत था। ये है श्रीमद देवी भागवत गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित। संपादक हैं हनुमान प्रसाद पोदार और चिमन लाल गोस्वामी। ये कहां से प्रकाशित है? गीता प्रेस गोरखपुर से। प्रकाशक एवं मुद्रक हैं गीता प्रेस गोरखपुर, गोविंद भवन कार्यालय कोलकाता का संस्थान। देवताओं के गुरु बृहस्पति जी का के विचार दिखाते हैं। पांचवा स्कंद श्री संक्षिप्त देवी भागवत 282 और 283 पृष्ठ पर 282-283। व्यास जी कहते हैं देवराज इंद्र की बात सुनकर बृहस्पति जी उनसे कहने लगे, ये बृहस्पति जी के विचार हैं, प्रारब्ध कर्मों का अभाव बिना भोगे नहीं हो सकता। यानी जो प्रारब्ध में पाप लिखे हैं या पुण्य लिखे हैं वो सारे भोग का ही समाप्त होंगे, यह स्पष्ट है। आर्य संपूर्ण देवता तुम्हारे सहायक है, तुम स्वयं भी बुद्धिमान हो, फिर भी जो होनी है वह होकर ही रहेगी, तुम उसे टाल नहीं सकते। ऐसी स्थिति में सुख और दुख की चिंता में नहीं पड़ना चाहिए। महाभाग सुख और दुख ये दोनों कर्म से पुण्य और पाप के क्षय के सूचक है। कितनी बढ़िया थ्योरी बता दी कि ये सुख और दुख, जिसको सुख है उसके तो पुण्य अक्षय हो रहे हैं, नाश हो रहे हैं, और जिनको दुख है उनके पाप नष्ट हो रहे। ये तरीका बता रखा पाप नाश करण का कि सुख और दुख ये दोनों कर्म से पुण्य एवं पाप के क्षय के सूचक हैं। अतएव विद्वान पुरुषों को चाहिए कि सुख के अभाव में भी सर्वथा आनंद का ही अनुभव करें। अब ये है देवताओं के गुरु बृहस्पति जी के अपने अमृत वचन। ये कह रहे हैं कि भाई पाप जिसको गणा दुख से उसके पाप कटने लग रहे हैं, कटने दो, और जिसके सुख गणे हैं, जिसको सुख है उसके पुण्य नाश होने लग रहे हैं, वो होंगे ही होंगे। ये तरीका है। और फिर क्या कहा है कि विद्वान पुरुषों को चाहिए कि दुख में भी सुख का अनुभव करे। अरे भले आदमी पेट में दर्द हो रहा हो, किल की नहीं मारेगा आदमी। किसी के पेट में दर्द हो और उन्होंने कहा कोई बात नहीं, इसकी कोई ट्रीटमेंट नहीं है, तू बस इस दुख में सुख को अनुभव करे। सुख तो अनुभव जब होगा जब उसको इसी जड़ी मिला, पेट का दर्द ठीक हो, और फिर आपका सुख में अनुभव हो गया। इन नकलियां की बात नाम ने फाइनल माइंड रखी थी, क्योंकि संस्कृत बोलिया करते। आजकल जो एक और बीमारी चल रही है, जो घनी अंग्रेजी बोल रहे ना, उसकी तरफ अट्रैक्टिव होते हैं। वह विद्वान में पढ़ा है उसने, मनमाना पंजाबी ना आती हो, उसने संस्कृत ना आती हो, के विद्वान हो। भाषा का काम है अपने विचारों को दूसरे तक पहुंचाना, चाहे अपनी मातृभाषा है, वो ज्ञान सही हो उसमें। तो इन महापुरुषों ने एक अनमोल काम किया, आदरणीय गरीबदास साहिब जी ने परमात्मा से परिचित होने के बाद, और स्वयं परमेश्वर कबीर जी ने बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में आम आदमी भी बोल सुमन सके, और इसी भाषा में वो ज्ञान बोल दिया। तो संस्कृत बोला करते, इसलिए हमने सोचा करते तो विद्वान न पड़े है। एक बार जींद जिले में वहां एक जोड़ है तालाब, जिसमें ऐसा बुंडा पानी गधे भी ना पीवे, और उसमें ये नाका आया करे बोली आत्मा, जिनको मोस नान की कोई बता रखी क्रियाएं और उसमें मोक्ष मानते हैं। वहां एक गीसा पंथियों के आश्रम है दो, और गीसा साहेब जी जो थे वो कबीर परमेश्वर के शिष्य हुए, उनसे उनको परमात्मा सतलोक से आकर मिले थे, उन पुण्यात्माओं में से। लेकिन उनके अनुयायी उस यथार्थ ज्ञान से अपरिचित हैं। वो पिंडारे में आश्रम बनाकर अपना चिमटा गाड़ रहे हैं। ये दास वहां इन कबीर पंथी होने के कारण इनके संपर्क में रहा करता था, चला जाता था, कोई समागम करवाते थे तो ये दास वहां गया हुआ था। तो वहां वो क्या कराते हैं, श्याम को सत्संग करते हैं, उनकी अलग से एक स्टेज तखत से डाल दिए जाते थे, जो आमंत्रित वक्ता होते थे संत, उनको टेबल पर बैठने के लिए उन तख्तों पर श्रद्धा से वहां विराजमान कराते थे, और फिर उनको नंबर वाइज बोलने का टाइम देते थे। तो उनमें एक ऐसा था, वो क्या कहता था कि जीव, ये जीव अपनी अज्ञानता के कारण अपने आप को जीव समझता है, ये तो परमात्मा है, ये तो आत्मा है, आत्मा को कष्ट होता ही नहीं, ना गर्मी लगती है ना सर्दी लगती है, आत्मा को कोई दुख नहीं होता, ये कष्ट तो शरीर को होता है। वो पता नहीं पांच चार उदाहरण दे दे, पर सारे श्रोता नो कह सही बात कहे। अब जो आम सुनने वाले ज्ञान से हटकर कोई ज्ञान दे है, वो भी अच्छा लग गया करे। तो तीसरा दिन हो गया, जैसे आज वाली रात ने अगली रात ने दो दिन हो गए, उसने नूका तेरे वो जो दूसरे वक्ता थे वो फीके पड़ गए। अब श्रोता तो इसकी बात में गर्दन लावे हैं, और यही तरीका था उनके शास्त्रार्थ में उनके ज्ञान को सराहने और विसराहने का, को ताली पीट देते हर को वाह वाह वाह नो कर देते हैं, तो दूसरे पड़ जाते थे फीके। तो दूसरे वो वक्ता थे, उन्होंने सोची भाई उसने तो सारी वह बाल उठ ली और बात कर बकवाद। क्या कह रहा है वो, एक दिन कभी एक बार मैं चला जा रहा था, एक व्यक्ति को बहुत पीड़ा थी, और वो चिल्ला रहा था चारपाई पर। मैंने उसको कहा, अरे भोलिया जीव, तू जीव नहीं है, तू तो आत्मा है, तू शरीर नहीं है। और मैंने उसको ऐसा कहा, एकदम उसकी बुद्धि फिर गई, उसने अपने आप को आत्मा मान लिया, उसकी पीड़ा खत्म। वो कहता भी तेरे को पीड़ा नहीं, शरीर को पीड़ा है, तू क्यों रो रहा है। तो एक दिन क्या हुआ कि वो तीसरे दिन शाम ने सत्संग कर लिया और वो उनके अलग अलग कमरे थे, उनमें वो चले गए, बाबा जी वो मंत्र संत थे। तो 2 बजे सी उसका पेट में दर्द हो गया। उस वक्त आ गया, दोनों कहता था तू तो आत्मा है, आत्मा का पीड़ा नहीं होती, शरीर का दर्द है, शरीर भोग लेगा अपना, आत्मा को इससे क्या लेना देना। उसका पेट में दर्द हो गया, मारे किल की बुरी तरह डड्डा व डांगर की डाल। वो दूसरे आश्रम के संत के पास कार थी, वो उस आश्रम वाला जिसमें सत्संग हो रहा था वो साथ साथ थे, थोड़े फैसले गेट थोड़ी सी दूरी का नवद्वार लगे, तो वहां से कार मांग के लाए। वहां से 3-4 किलोमीटर है मेन हॉस्पिटल, ये शहर पंडारा से जींद, वहां ले गए। तो सुबह लाए उसने 6-7 बजे, 2-3 घंटे वहां रखा, ठीक हो गया, उसका दवाई बट्टी आराम लग गया। तो वो शहद शहद उतर के चल रहा है, जो कर दस चाचा ले कर गाड़ी में थे, और वो कमरे में बढ़ गया अपने में। और पीछे पीछे वो दूसरे वक्ता ने बोले, रहा बाबा जी तू तो आत्मा था, क्यों डिड्डा हुआ था फिर, तू क्यों रोआ था काले, अब चिल्ला रहा था, तो आत्मा है, तुझे पीड़ा कहां से होगी, दुख में भी सुख का अनुभव कर। ये बृहस्पति जैसे विद्वान, सुख का अनुभव तो जब हुआ जब उसके पेट की पीड़ा उस औषधि ने खत्म कर दी। इसी प्रकार ये राक्षसों के गुरु शुक्राचार्य के विचार आपको दिखाते हैं। पुणात्माओं, ये राक्षस क्यों कहने लगे न, बाकी तो ये एक ही पिता की संतान है ब्रह्मा जी के, लेकिन ये क्या करते थे, ये इन पर विकार ना छूटे और साधना भी करते रहे, तो वो अलग कर दिया उनको भी, तुम नारे रहो, तुम विकार नहीं छोड़ते, निकाल दिया जाता था साधना से। तो वो साधना भी करते रहे और मांस मिट्टी भी खाते रहे, इसलिए उनको राक्षस कहने लग गए। अब ये प्रह्लाद

अपनी बता दी, दो सट्टे मारने थे मार दिए। आगे के क्या है, धर्म के मर्मज महाशो प्राचीन समय में ब्रह्मा जी के मुख से मैंने जो बात सुनी है, यानी ब्रह्मा जी इनका ज्ञान का स्रोत है सभी का, देवताओं के गुरु बृहस्पति का भी और राक्षसों के गुरु शुक्राचार्य का भी, यानी ब्रह्मा जी को फाइनल मानते हैं वेद ज्ञान दाता। प्राचीन समय में ब्रह्मा जी के मुख से मैंने जो बात सुनी है उसे बता रहा हूं, सुनो। यह वचन बड़ा ही हितकर है, सत्य और अटल है। उन्होंने कहा था, ब्रह्मा जी का ज्ञान बता रहे हैं, उन्होंने कहा था होने वाली बातें अवश्य होकर रहती हैं। धरातल पर कोई भी ऐसा सुयोग्य पुरुष नहीं है जो प्रारब्ध को विफल बनाने में समर्थ हो सके। विपरीत समय के कारण इसमें तुम्हारी शक्ति क्षीण हो गई है, अतः एक बार तो तुम्हें देवताओं से हार कर परास्त होकर पताल में जाना ही पड़ेगा। बताओ, ये बोले आदमी बंडा रहा। यहां तक यू कह है कि मैं दानव, तुम मेरे भगत हो, तुम मेरे यजमान हो, भगत हो, तुमने डरना नहीं चाहिए और ना पाताल में जाना चाहिए, क्योंकि अपने सत मंत्रों के प्रभाव से मैं तुम्हारी रक्षा कर दूंगा। और फिर यू कह है, ब्रह्मा जी से सुना था मैंने कि प्रारब्ध भोगना पड़ेगा, तुमने एक बार परास्त होकर देवताओं से परास्त होकर धरातल पर ऐसा कोई व्यक्ति न प्राप्त विफल कर सके। विपरीत समय के कारण तुम्हारी शक्ति अक्षीण हो गई है, अतः एक बार तो तुम्हें देवताओं से परास्त होकर पताल में जाना ही पड़ेगा। या बकवाद करने लग रहा, मैं रक्षा कर लूंगा। तो इनकी ये थ्योरी थी, और न्यो बंडा रखे थे हम सारे अज्ञानियों ने। ये तो सतयुग के ऋषि महर्षियों का जिक्र है। एक युग कलयुगी ऋषि और था, इसके ज्ञान की खाल भी गिल तारनी पड़ेगी, जब क्योंकि इन पुराणा तथा थोड़े बहुत से उल्टे से हो लिए थे। यू गणा बीच में टांग अड़ा कर गढ़े भक्तों को बर्बाद कर गया। ये देख, ये महर्षि दानंद सत्यार प्रकाश है, इनके अनुभव की पुस्तक ये सत्यार प्रकाश है, और इसको ये महर्षि दानंद जी कहते हैं, मैंने वेदों के यथार्थ ज्ञान से युक्त कर रखा है, जो वेदों का ज्ञान है वो इसमें सरल करके मैंने लिखा है। तो आम आदमी ने न्यो सोच लिया था कि भी महर्षि दानंद तो वेदों के ज्ञाता है, और जो इन सत्यार प्रकाश नामक अपनी रचना में लिखा है वो फाइनल है, सही है। तो इन हमने वेद पढ़ने भी छोड़ दिए थे, इस सत्यार प्रकाश पर हम आश्रित हो गए थे, और इसी कारण से ये सारा काम बिगड़ गया। इसमें क्या लिखा सत्यार प्रकाश के विषय में, कि वेद आदि विविध सद शास्त्र प्रमाण ही संविता है। ये किसने लिखा कि वेद आदि सद शास्त्रों के प्रमाणों के द्वारा इसकी रचना की गई है, श्रीमत परमहंस परिव्राजक आचार्य महर्षि दानंद सरस्वती स्वामी विरचित है। प्रकाशक है वैदिक यति मंडल, दानंद मठ, दीनानगर पंजाब से, और मुद्रक है आचार्य प्रिंटिंग प्रेस, दानंद मठ गोहाना मार्ग रोहतक, ये इनका दूरवास। तो इसमें सातवें समुल्लास में 154 पृष्ठ पर तो ये कह रहा है परमात्मा निराकार है, ये तो 155 पृष्ठ है, और ये सत्यार्थ प्रकाश है 154 पृष्ठ पर। इसी ने पूछा, प्रश्न किया कि ईश्वर साकार है व निराकार, स्वामी जी ने उत्तर दिया निराकार। अब 155 पृष्ठ पे किसी ने प्रश्न किया, क्या भक्ति भगवान की साधना करनी चाहिए, स्वामी जी कहते करनी चाहिए। प्रश्न, परमेश्वर की स्तुति प्रार्थना उपासना करनी चाहिए व नहीं, उत्तर स्वामी जी कहते करनी चाहिए। प्रश्नकर्ता कहता, क्या स्तुति आदि करने से ईश्वर अपना नियम छोड़ स्तुति प्रार्थना करने वाले का पाप छुड़ा देगा, पाप नाश कर देगा, उत्तर स्वामी जी कहते नहीं, पाप नाश नहीं होते। तो फिर स्तुति प्रार्थना क्यों करना, फिर किस लिए करें भक्ति, प्रश्नकर्ता ठीक प्रश्न कर रहा। उत्तर कहते हैं स्वामी जी के, उनके करने का फल अन्य ही है। वो क्या है, उत्तर प्रश्नकर्ता ने पूछा, फिर वो क्या फल है। अब स्वामी दानंद जी का उत्तर है, स्तुति से ईश्वर में प्रीति, उसके गुण कर्म स्वभाव से अपने गुण कर्म स्वभाव का सुधरना, प्रार्थना से निराभिमानता, और उपासना और उत्साह और सहायता मिलना।
उपाय

वासना से परब्रह्म से मेल और उसका साक्षात्कार होना। अरे वाह देवता, यहाँ तक है भगवान निराकार। और फिर नो कहे अगले पृष्ठ पे नो कहे उपासना से परब्रह्म से मेल, यानी ब्रह्म तो भी दूसरे भगवान से मिल ले जाके और परमात्मा का ईश्वर का साक्षात्कार हो जाता है और पाप नाश नहीं होते। इसने 163 पृष्ठ पर कति डिफाइन किया इस बात को, प्रश्न, ईश्वर अपने भक्तों के पाप अक्षमा करता है वा नहीं, अक्षमा करना या नाश करना एक ही बात है। उत्तर स्वामी जी का, नहीं, पाप अक्षमा नहीं करता। अपने आत्माओं, आपने जो छोरी पठी इसकी के उपासना से पाप नाश नहीं होते साधना से, और लाभ मिलते हैं, क्या मिलते हैं कि परब्रह्म से मेल और उसका साक्षात्कार हो जाए। अरे भले आदमियों, एक मोटी सी बात है, कोई साबुन बेच रहा साबुन, और साबुन के गुणों में तो लिखा हुआ है कि साबुन कपड़े का मैल नाश कर देता है, और किसी ने बोर्ड ला रखा है बहुत बड़ा थोक विक्रेता साबुन का, और उससे कोई पूछा भी ये साबुन कपड़े का मैल छुड़वा देगा नाश कर देगा, और वो न्यू कहे कि साबुन से कपड़े का मैल नाश नहीं होता, और केला वो है कि साबुन से कपड़ा मजबूत हो जाएगा। तो उस व्यक्ति ने अपने जीवन में साबुन देखा भी नहीं है, प्रयोग तो बहुत दूर की बात है, और बोर्ड ला रहा है साबुन विक्रेता, वो ठग है, लकड़ी के गुटके कागजाम लपेटे बैठा है, दुनिया को मूर्ख बना रहा है। और जैसे किसी ने वैद का बोर्ड ला रखा हो और वहां जाकर कोई कहता कि वैद जी क्या औषधि खाने से रोग नाश हो जाएगा, और वो नकली वैद कहे कि औषधि खाने से रोग नाश नहीं हो सकता, औषधि से रोग नाश नहीं होता, तो फिर क्या होता है कि पहलवान बन जाएगा, तो क्या वो वैद है और नालायक आदमी। ऐसा सिद्धांत है इस महर्षि, नकली महर्षि दानंद का, कहते भगवान की उपासना से परमात्मा की साधना से पाप नाश नहीं होता और परब्रह्म से मेल हो जाए साकार, बिना मेल किस तो होगा, उसका साक्षात्कार किससे होगा। वास्तव में परमात्मा साकार है, मनुष्य दृश्य है, और ये अभी तक जितने भी ऋषि महर्षि हुए हैं उन्होंने परमात्मा मिला नहीं, अभ्यास कर कर छक लिए, आखिर में बता दिया तो निराकार है, दिखता कोई ना इसलिए निराकार है क्योंकि उनकी रेंज, उनकी भक्ति से उनकी दिव्य दृष्टि की रेंज बनी नहीं जो परमात्मा को अपने स्थान पर देख सके। उनके अंतःकरण की जो दूरबीन है वह कमजोर है, कंडम हुई पड़ी है, और उसको साफ करने की विधि उनके पास है नहीं, उसको मेंटेन करने की, तो इसलिए उन्होंने लिख दिया भगवान निराकार है। अपने आत्माओं, वेद जो है परमेश्वर के गुण है, वेदों में उसकी यथार्थ जानकारी है, जैसे साबुन के गुणों में साबुन की जानकारी होती है कि वो मैल नाश कर देता है पानी के योग से, तो ऐसे ही वेदों में प्रभु के गुण लिखे हैं कि परमात्मा घोर पाप का भी नाश कर देता है। पुणात्माओं, ये उदाहरण आप जी को दिए जा रहे हैं जिससे आपका दिल डटेगा, आपको विश्वास होगा कि या तो वेद झूठे हैं तो फिर भक्ति करनी छोड़ दो, फायदा क्या, और यदि वेद सच्चे हैं, और ये भी कहता है योगदानंद भी कहता है कि वेद में जो ज्ञान है वो सच्चा ही, देखिए यजुर्वेद, और वेद ज्ञान सच्चा है तो फिर वो परमात्मा पाप नाश करेगा, लेकिन उसकी विधि मिलनी चाहिए श्रेष्ठ, ये देखिएगा, ये यजुर्वेद है और इस दानंद जी द्वारा ही इसका अनुवादित है, प्रकाशक है सार्वदेशी कार्य प्रतिनिधि सभा 2/5 महर्षि दानंद भवन रामलीला मैदान नई दिल्ली से, प्रकाशक है सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा 2/5 महर्षि दानंद भवन रामलीला मैदान नई दिल्ली से। यजुर्वेद आर्य भाषा भाषा यानी अनुवाद हिंदी में, पूरे 40 अध्याय इसमें सारे महर्षि दानव सरस्वती ने किए हैं। ये कहां से छपी है, मुद्रक है प्रिंस ऑफसेट प्रिंटर्स 1510 पटौदियाउस दरियागंज नई दिल्ली से। ये है यजुर्वेद का 8वां अध्याय, अष्टमोध्याय 241 पृष्ठ पे इसकी केवल संस्कृत मूल भाषा लिखी है, 8वें अध्याय का 13वां श्लोक है, मंत्र है, इसमें लिखा है देव कर्तस्य एनस्य एवजनमसी, मनुष्य कर्तस्य एनस्य एवजनमसी, पितर कर्तस्य है एनस्य एवजनमसी, आत्म कर्तस्य एवजनम एनस्य असी,
अवेदन मसीह, यानी इसकी अनुवाद यानी के द्वारा दिखाते हैं। अब अनुवाद तो इसने ठीक करना पड़ा, लेकिन इसमें भी थोड़ी सी गुंडी अड़ा गई, या भगवान ना लिखा, या लिख दिया हे सबके उपकार करने वाले मित्र आप। और ये सत्यार प्रकाश के प्रथम समलास में भगवान के नामों के गुण वर्णन करते हुए कहता है, जहां मित्र सबका मित्र होने के कारण परमात्मा का नाम मित्र है, परमेश्वर का। तो हम यहां मित्र शब्द ही लेकर चलेंगे, मित्र माने परमेश्वर है। हे सबके उपकार करने वाले मित्र आप, ये थोड़ा सा कंसेप्ट क्लियर करना पड़ेगा, ना ये फिर बिचड़ा लेंगे नकली। पहले सन 2003, 2004 और 2005 में हमारा और इन आर्य समाज के आचार्यों का ज्ञान के ऊपर विवाद चला था, जिसके कारण ये क्रोथा कांड हुआ। समाचार पत्रों में हमने यही लिखना प्रारंभ किया था कि महर्षि दानंद का सत्यार प्रकाश वेदों अनुसार खरा नहीं है, और ये प्रमाण दिए थे इस सत्यार प्रकाश के पृष्ठ भी और साथ में यजुर्वेद का ये सब प्रमाण। तो उन्होंने फिर वो साथ में फिर उसका उत्तर देते थे समाचार पत्रों में, एकादिव उन्होंने लिखा था कि उसमें तो मित्र के बारे में लिखा है, 8वें अध्याय के 13वें श्लोक में यजुर्वेद में, वो किसी भगवान के बारे में थोड़ा ही है। तो आम जनता बोली बाड़ी थी, पहले तो ये विश्वास नहीं हो, वो कहा करते रामपाल तो संस्कृत नहीं जानता, और वो क्या जाने वेदों के बारे में, दानंद जी तो बड़े महर्षि थे, संस्कृत के विद्वान थे, सूर्य थे वो तो व्याकरण के। तो आम आदमी का यह बात बिना कहे जच्चे थी कि वो तो महर्षि था, बड़ा विद्वान था, वेदों का ज्ञाता। तो रामपाल की बात जची नहीं आम जनता का प्रमाण देने के बाद भी, लेकिन जो हमसे संबंधित हो गए थे पुण्यात्माएं, उनका पक्का विश्वास हो गया था। तो उन्होंने ये भ्रमित करने के लिए लिख दिया कि वो तो मित्र के बारे में लिखे हैं। फिर दास ने अगले उसमें ये लिखा कि स्वामी जी खुद कहते हैं सत्यार प्रकाश के प्रथम समलास में कि मित्र का अर्थ परमेश्वर ही जानो। ये वही सत्यार प्रकाश है और इसके प्रश्न नंबर 18 पे है, ये प्रथम समलास है पर प्रश्न नंबर 18 पे है, जो सबसे स्नेह करे सबको प्रीति करने योग्य है वह परमेश्वर सबका सच्चा मित्र है, इससे परमेश्वर का नाम मित्र है। तो हम यहां मित्र के स्थान पर वहां परमेश्वर बोलेंगे। अब देखिए यजुर्वेद को, अब यजुर्वेद है, हम इसको यहां से देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं 242 पृष्ठ पर यजुर्वेद 8वां अध्याय, ये 8वां अध्याय और इसका 13वां मंत्र है। ये अनुवाद है महर्षि दानंद का। अब इसको महर्षि कहना जरूरी है ना, तुमने सोचा किसी और दानंद के बारे में बोल रहे हैं, बाकी महर्षि नहीं था ये, तो जमाई कति बोला आदमी था। हे सबके उपकार करने वाले मित्र यानी परमेश्वर आप, देव करते से दान देने वाले के, अप एन से माने अपराध के, एन से माने पाप के, एन से माने पाप कहो अपराध कहो, हम क्योंकि इतने अनजान हो लिए अपराध और पाप में फर्क नहीं समझ पाते जल्दी सी, लेकिन ये एक बात है। हे परमेश्वर आप दान देने वाले के पाप के, अवैध जन्म माने नाश करने वाले असी माने हो, साधारण मनुष्यों के किए हुए एनस माने अपराध के यानी पाप के विनाश करने वाले हो, पिता के किए हुए एनस माने या अपराध ही होना चाहिए या पाप के विरोध आचरण के, अवैध जन्म माने अच्छी प्रकार हरने वाले हो, नाश करने वाले हो, अपने किए हुए एनस माने पाप के, एनस माने पाप पाप के, अवैध जन्म माने नाश करने वाले हो, विनाश करने वाले, अवैध जन्म माने विनाश करने वाले हो, दूर करने वाले हो, एक ही बात है। एनस एनस अधर्म के, अधर्म के ओहो यानी घोर पाप के भी नाश करने वाले हो, जानता हुआ मैं जो कुछ भी धर्म अधर्म आचरण किया करता हूं वा करूं, अनजान मैं जो कुछ भी किया करता हूं वा करूं, उस सर्वस्य माने सबके, एनस्य माने पाप के, दुष्टाचरण पाप के, अवजन माने नाश करने वाले हो, विनाश करने वाले हो, दूर करने वाले हो। अपने आत्माओं
अब यू भांग प्यारता दानंद, इसने अनुवाद तो कर रखा है कुछ हद तक ठीक, क्योंकि इसमें 6 बार लिख रखा है N7 है पाप नाश करने वाले, पाप नाश कर, अगर एक स्थान पर होता ना ईसा गोड़ कर देता, कहते सात जन्म सुन मना मरे और कति ना ठहता यो, इसका सत्यार प्रकाश, तो सत्यार प्रकाश कभी नहीं फेल होता। तो परमात्मा ने सारा पता था कि इसमें काल के दूत कैसे अडंगा अड़ाओगे, तो उनकी दाल गड़ी नहीं, कहते चोर चरावे तुम्बड़ी गाड्डे पानी में, और वो गाड्डे व ऊपर सच्चाई छानी ना। अपनी जो इनका अनुभव था वो था कि परमात्मा पाप नाश नहीं करता, ये फाइनल था इनका, और यही प्रचार जनता में कर दिया। और वेद कहते हैं परमात्मा घोर पाप भी नाश कर दे। अब देखिएगा ये खुद कहता है दानंद, ये यजुर्वेद वेद है, और इसमें यहां लिखा है कि वेद सब सत वस्तुओं का, वेद सब सत विद्याओं का पुस्तक है, वेद सब सत विद्याओं का पुस्तक है महर्षि दानंद। जब वेद सत्य है, वेद तो कह रहा है कि पाप नाश होते हैं, और दानंद कह रहा है कि पाप नाश नहीं करता भगवान, तो सत्यार्थ प्रकाश और दानंद का विधान शास्त्र विरुद्ध है। अपने आत्माओं, अब ये वेदों के विद्वान कौन आवे और कह कहेगा पता नहीं वेद क्या बताना चाहते हैं। संस्कृत भाषा के जान लेने से विद्वान नहीं बनता इंसान। यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के श्लोक नंबर मंत्र नंबर 10 से लेकर 13 तक 2 बार कहा गया है कि जो तत्वदर्शी संतों से पूछो वो यथार्थ ज्ञान बताएंगे, परमात्मा जन्म लेता है या नहीं लेता है, साकार है या निराकार। और एक भाषा के जान लेने वाले को विद्वान कहने लग जाते हैं उसको, जैसे किसी ने अक्षर ज्ञान होगा तो उसको विद्वान कहते हैं, जिसको अक्षर ज्ञान नहीं है उसको अविद्वान बोलने लग जाते हैं। विद्वान और अविद्वान की परिभाषा भी वो तत्वदर्शी संत बताएंगे, उनसे सुनो। अब कबीर परमेश्वर महाविद्वान थे, भले ही उसको निरक्षर कहा करते थे कि वो अक्षर नहीं जानते, लेकिन वे महाविद्वान थे और वो सब ज्ञान से परिचित थे। उन्होंने आज से 600 वर्ष पहले लिखा था, जब ही सतनाम हृदय धरो और भयो पाप को नासे, जैसे चिंगारी अग्नि की भाई पड़े पुराने गासे। परमात्मा ने अपने सूक्ष्म वेद में सचिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में 600 वर्ष पहले लिख दिया था, बता दिया था कि जब ही सच्चा नाम सतनाम पूरे सम से लेकर तुम साधना करोगे सच्चे दिल से, आपके पाप ऐसे जलकर नाश हो जाएंगे जैसे बहुत बड़ी हजारों टन सूखा घास पड़ा हो और उसमें एक माचिस की सीख जगाकर उसमें ला दे, उस सारे को जलाकर राख कर देगा, चलेगी तेज हवा और कोई की कोई मारेगा पटक, यानी स्थान भी साफ हो जाएगा। तो ऐसे परमात्मा कहते हैं आप जी के संचित कर्म और प्रारब्ध कर्मों में जो भी जहां पाप दिखेगा वही आग लगा देगा परमात्मा का ये नाम, वो सच्चा नाम यथार्थ मंत्र। इस मंत्र की अब हमें खोज होगी, हमारे सदग्रंथों में था, परमात्मा ने आकर हमें दे दिया। अब जैसे पहले फसल में खरपतवार उग जाता था वो साथ ही पला करता था, फसल उगने के बाद उसका कोई विकल्प नहीं था, अब एक ऐसी औषधि बन गई है कि उसको जल सिंचाई करते समय उसमें डाल देते हैं खेत में, और वो औषधि फसल को हानि नहीं पहुंचाती, खरपतवार का नाश कर देती है। तो ऐसे ही पुण्यात्माओं ये सच्चे मंत्र है, सच साधना जो आपको दी जा रही है ये आपके प्रारब्ध के पाप क्रम रूपी खरपतवार को नाश कर देगा, आपके पुण्यों को सुरक्षित रख देगा, और ऐसे हम सुखी होंगे और इन्हीं पुण्यों के आधार पर भक्ति के आधार से हम सतलोक पहुंचेंगे।

0: आप सुन रहे थे जगतगुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222880541।
1: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक कैसिडी हे इंजरी लॉ तो तारा कैसिडी जी दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो किसी भी तरह दे मोटर व्हीकल एक्सीडेंट इंजरी क्लेम बारे कोई भी जानकारी लैण लई तुसी तारा कैसिडी जी नू 403-770-1099 यानी 403-777-1099 ते संपर्क कर सकते हो। कैसिडी हे इंजरी ला दा पता है, यूनिट नंबर 1507, 14 एवेन्यू साउथ वेस्ट कैलगरी। प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक ट्रैवल वर्ल्ड दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। टिकटां दी किसी भी तरह दी जानकारी लैण लई तुसी अज ही ट्रैवल वर्ल्ड नू 403-717-0771 ते यानी 403-717-0771 ते संपर्क कर सकते हो। ट्रैवल वर्ल्ड दा पूरा पता नोट करो, ग्रीन प्लाजा यूनिट नंबर 1130 4818 वेस्ट विंड ड्राइव नॉर्थ ईस्ट कैलगरी।
2: प्रोग्राम दा ए हिस्सा त्वाडे तक कैनेडियन स्क्रू पाइल्स दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। होम एक्सटेंशन, पैटियो डेक, प्रीकास्ट कंक्रीट स्टेप अते किसे भी तरह दी सॉफ्ट ग्राउंड जिमे गैराज फ्लोर दे स्ट्रॉन्ग अते सिक्योर बेस लई स्क्रू पाइल्स इंस्टॉल कराउन लई जसकरन बराड़ नू कॉल करो 403-439-7700 403-439-7700।
1: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक मालवा टायर्स एंड सर्विसेज दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। ए 24 घंटे 7 दिन मोबाइल सर्विसेज प्रदान करदे ने। इना तो किसी भी तरह दे नवे ते पुराने ट्रक एंड ट्रेलर टायर्स, व्हील बैलेंस एंड अलाइनमेंट्स, टायर रोटेशन एंड रिपेयर्स दीयां सेवावां लैण लई तुसी मालवा टायर्स नू 403-899-1985 जां फिर 403-899-1984 ते संपर्क कर सकते हो। मालवा टायर्स एंड सर्विसेज दा पता है, बिल्डिंग नंबर 8616 44th स्ट्रीट साउथ ईस्ट कैलगरी। पंजाबी रेडियो 102.7 FM ते प्रसारित होने वाले प्रोग्रामा ते जो भी विचार पेश कीते जांदे ने ओ उना विद्वाना दे अपने विचार ने। रेडियो अदारा 102.7 FM इना दे नाल सहमत होवे ए लाजमी नहीं।
3: कौन ब्रह्मा का पिता है, कौन विष्णु की मां, शंकर का दादा कौन है, हमको दे बता। ये जानने के लिए कृपया सुनिए जगतगुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन, सर्व पवित्र धर्मों के पवित्र शास्त्रों के आधार पर।
4: पुनात्मा परमात्मा क्या कहा करते थे, मोती मुक्ता दर्शत नाही, ये जग है सब अंदर दिखत के तो नैन चम, इनका फेरा मोतिया बिंद्रे। अब जिसका मोतिया बिंद हो गया हो ना, उसकी आंखें बिल्कुल स्वस्थ दिखाई देती हैं, जैसे ये खूब देखता होगा, पर उसको दिखता कतीनी नपट अंधा होता है। तो पुण्यात्माओं ये दिखे थे विद्वान, ये कलयुगी ऋषि दानंद और ये सतयुग त्रेता द्वापर के मैं ऋषि बृहस्पति और शुक्राचार्य, फिर अन्य देवता ब्रह्मा जी, विष्णु जी, शिव जी, इन सभी को अज्ञान रूपी मोतियाबिंद हो रहा था। अपने को भी इन्होंने मोतियाबिंद कर रखा था, इन अज्ञानी ऋषि में ऋषियों ने। अब हमारी आंखों का ऑपरेशन परमात्मा ने कर दिया, मोतियाबिंद हटा दिया, ये यथार्थ ज्ञान के माध्यम से। परमात्मा क्या बताते हैं कि मोती मुक्ता, दर्शत नाही। मोक्ष होने का जो यथार्थ ज्ञान रूपी मोती है, यानी यथार्थ तत्व ज्ञान रूपी जो धन है, वो हमें दिखाई नहीं देता। किनको? इनको नहीं दिखाई देता ये। और ये दिखे थे ऐसे, जब बड़े विद्वान है, संस्कृत भाषा आती है, वेदों को पढ़ते हैं और वेदों के मंत्र बोल के हमें ज्ञान दे रहे हैं। अब मंत्र तो बोलना, वेदों के अनुवाद करें वो अपने हिसाब से, ज्ञान प्रचार कर वेदों का नाम लेकर के वो अपनी अज्ञान सिद्धांत के आधार से कि वेद कहते हैं पाप नाश नहीं होते, प्रारब्ध तो भोगना ही पड़ेगा। यदि कोई दुखी प्राणी है वो सुख यानी दुख संकट निवारण के लिए ही प्रयत्नशील है, और उसको लास्ट में ये जवाब मिल जाए कि इतने ये तो भोगना ही पड़ेगा, तो वो टूट जाता है दिल उसका, वो नास्तिक हो जाता है। वो कहता कहीं भगवान नहीं है, और वो धन लाभ के लिए चोरी करने लगता है, डाके मारता है, और उनको डाकू और चोर बनाने का श्रेय इन दानद के से अज्ञानी ऋषियों को, कथित ऋषियों को है, जिन्होंने वेदों को समझा नहीं, बकवाद गढ़ दी और ना जाने कितने समाज को बर्बाद कर दिया। गुरुआ गांव बिगाड़े संतो, गुरुआ गांव बिगाड़े, ऐसे कर्म जीव कहला दिए ईब जड़े ना जाड़े। इन अज्ञान रूपी सिद्धांत पर इतने दृढ़ हो गई है बूढ़ी आत्मा, इब इनको कैत भी ना मानते। मोती मुक्ता दर्शत नाही, ये जग है सब अंदरे, दिखत के तो नैन चम, इनका फेरा मोतिया बंदरे। इनका मोतिया बंद हो रहा था इस बृहस्पति गुरु का, शुक्राचार्य कर नकली कलयुगी आचार्य का तो जकर को नहीं, ये तो किसी खाते में नहीं थे। वर्तमान के जितने ये संत बने फिर न कह का भी नहीं पता भक्ति मार्ग का। कल आपके सामने इस बहुत बड़े ग्रुप का इतिहास दिखा दिया था, सार्वचन राधा स्वामी के सार्वचन, यानी जैसे गीता का सार बताया करते हुए ऐसे इनका सार था। वो इस सचखंड सतनाम की परिभाषा बताते हैं इसको, सतनाम सतपुरुष सार शब्द सत शब्द सतलोक सतपुरुष सतनाम कह के बोलते। पुणात्मा परमात्मा कहा करते हैं, तुम कौन राम का जपते जापम, तात कटे ना थारे तीनू तापम। तुम कौन से भगवानों की भक्ति करते हो जिससे तुम्हारे ये तीन ताप भी ना कटे। पुण्यात्माओं, तीन ताप के अंतर्गत जैसे कोई देव रुष्ट हो जाता है, या कोई ऋषि कोई व्यक्ति महर्षि श्राप दे देता है, या कोई भूत प्रेत जंतर मंत्र कोई कर देता है, वो कहते हैं ना हमारा घाल घाल रखी है, ये भी तीन ताप के अंतर्गत होते हैं। तो ये भी सत भक्ति के बिना नहीं दूर होते हैं। एक समय आपने गीता जी में पढ़ा है, दूसरे अध्याय के 37 और 38 मंत्र में गीता ज्ञान दाता कहता है कि अर्जुन तेरे दोनों हाथों में लड्डू है, यदि तू युद्ध जीत गया, युद्ध कर ले, यदि तू महाभारत के युद्ध में विजयी हुआ तो राज्य का सुख भोगेगा, और यदि युद्ध में मारा गया तो तुझे स्वर्ग मिलेगा। और फिर कहता है कि अर्जुन तू युद्ध कर ले, तुझे पाप नहीं लगेंगे। ये देखना श्रीमद् भगवत गीता, ये जय दयाल गोविंद का इसके अनुवादक है, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। दूसरे अध्याय का 37वां श्लोक दिखाते हैं, अध्याय नंबर 2 और श्लोक नंबर 37। इसमें क्या कहा है कि या तो युद्ध में मारा जाकर स्वर्ग को प्राप्त होगा, अथवा संग्राम में जीत कर पृथ्वी का राज भोगेगा। इस कारण से ही अर्जुन युद्ध के लिए निश्चय खड़ा हो जा। 38 में कहा है, जय पराजय लाभ हानि और सुख दुख को समान समझकर उसके बाद युद्ध के लिए तैयार हो जा। इस प्रकार युद्ध करने से तू पाप को प्राप्त नहीं होगा, तेरा पाप नहीं लगेंगे। एक तो पुण्यात्माओं, ये जो ज्ञान है ना, इस समय गीता जी में जो ज्ञान है ये दो प्रकार का है, एक तो वेदों वाला विधान बताया है इस काल ने, और दूसरा इसने अपना मत व्यक्त किया है, अपना अनुभव, अपने मत के अंतर्गत इसने ये अटकलबाजी भी लाई है कि एक तरफ तो कह रहा है कि अर्जुन तू लाभ हानि छोड़ के, यानी लाभ हानि की परवाह ना कर, तू जीतेगा का रहेगा और युद्ध कर ले, अरे भले आदमी हो, लाभ आने के बिना कौन सिर फुड़वावे। और तुरंत ही कह रहा है कि यदि युद्ध में जीत गया राज्य का सुख भोगेगा, मर गया तो स्वर्ग जाओगे, लाभ आने आपको बताने लग रहा। और साथ में कह रहा है कि तुझे पाप नहीं लगेंगे युद्ध कर ले। अपने आत्माओं, जब महाभारत का युद्ध पूर्ण हो लिया और युधिष्ठिर जी को राजगद्दी पर विराजमान कर दिया गया, कुछ दिनों के बाद युधिष्ठिर जी को एक भयंकर सपने आने लग गए। उसकी आंखें फटी सी रह जाती है, उसको ऐसा लगता है जैसे सिर कटे हुए व्यक्ति बिना शीश के धड़ और उनके घर में घुस रहे हैं। हाहाकार मच रही है, औरतें चूड़ियां फोड़ रही हैं, कह रही हैं कि पापी राजा तू हमारे पतियों का खून पी रहा है, तूने के मिल गया हमारे सुहाग उजाड़ के, लाखों लोग मरवा दिए। उसने वो प्रेत आत्मा दिखे थी सिद्धन लाग गए, उनको हानि करने लगे। अब इन पांडवों का धार्मिक गुरु जी थे श्री कृष्ण जी, पांडवों के धार्मिक गुरु जो थे वो श्री कृष्ण जी थे। तो श्री कृष्ण जी के पास ये पांचों पांडव गए। श्री कृष्ण जी से पूछा कि हमारे भैया को ऐसे ऐसे स्वप्न आ रहे हैं, ये डरा हुआ है, खाना पीना भी छूट गया, आंखें फटी फटी सी रहती हैं, जैसे बोलता नहीं किसी से, ये गुमसुम हो गया। भगवान श्री कृष्ण जी ने कहा कि तुमने जो युद्ध में पाप किया था, वो बंदूक घात किए थे, जनता मारी थी, वो पाप दुखी कर रहा है। अब अर्जुन के तो एकदम स्ट्राइक हुई, दिमाग में झटका सा लग गया कि आज यू के कह रहा भगवान, गीता का ज्ञान दे रहे थे जब तो कह रहे थे भाई तुझे पाप नहीं लगेंगे तो युद्ध कर ले, अरे यू कह तेरा पाप लग गए तो तुमने व्यक्ति मारे। उसका समाधान क्या बताया था श्री कृष्ण जी ने कि एक अश्वमेध यज्ञ करो जिसमें अधिक से अधिक साधु संत बुलाओ, पूरी पृथ्वी के जीव को न्योता दो और एक ऐसा धर्म यज्ञ करो जिससे, और उसका एक प्रतीक बताया सफल होने का, यज्ञ सफल होने का एक लक्षण बताया कि एक पांच मुंह का पंचमुखी शंख, पंचायन शंख, वो अलग से सुसज्जित स्टेज पर रखा जाएगा अलग से एक स्थान पर, और जब सभी संत महंत भगत भोजन प्राप्त कर लेंगे उस भंडारे में तो वो शंख अपने आप आवाज करेगा, गूंजेगा, बोलेगा बगैर किसी के मुख से फूक मारे, ये शर्त रखती। और उसमें करोड़ों रुपये खर्च होना। अर्जुन ने सोचा यदि इस स्थिति में अब मैं ये कहूंगा श्री कृष्ण जी से कि आप गीता का ज्ञान दे रहे थे जब धन्यो को थे कि भी तुम्हें पाप नहीं लगेंगे, अब कह रहे हो तुम्हें पाप लग रहे हैं, ये दोगला ज्ञान कैसे दिया आपने हमारे साथ, ऐसा धोखा क्यों किया। तो अर्जुन ने सोचा भाई युधिष्ठिर ये सोचेगा कि मेरे ट्रीटमेंट में, मेरे उपचार में ये पैसे खर्च होने हैं लाखों करोड़ों रुपये, और जिस कारण से अर्जुन ये पैसे नहीं लगाना चाहता, वाद विवाद कर रहा है, मेरे को स्वस्थ होने में ये खुश नहीं, प्रसन्न नहीं है, ऐसी सोचेगा अर्जुन ने सोचा। और ये ऐसा व्यक्ति है, एक बार इसके मन में यह बात आ गई, इलाज नहीं कराओगा, मर जाएगा। अर्जुन ने अपनी छाती पर पत्थर रखा और दिन निश्चित करवाया यज्ञ का। श्री कृष्ण जी ने वो स्थान तथा तिथि दोनों निहित की। निश्चित तिथि को करोड़ों की संख्या में, कई करोड़ की संख्या में वहां भोजन पाने, भंडारे में भोजन करने के लिए उपस्थित हुए 33 करोड़ देवता, 88,000 ऋषि और 9 नाथ, 84 सिद्ध, 12 करोड़ ब्राह्मण और 56 करोड़ यादव। श्री कृष्ण जी के सारे चूल्हा नौ थे, वो तो गुरु जी थे, उनका सारा परिवार कुल बुला लिया, और भी पृथ्वी के बहुत से प्राणी वहां आ गए। सबके लिए भोजन भंडारा शुरू करवा दिया, सबने भंडारा खा लिया, शंख नहीं बजा। अब श्री कृष्ण जी चिंतित हुए भाई शंख नहीं बजा। युधिष्ठिर जी कहने लगे कि हे भगवान, हमने पाप गणे कर रखे हैं, हमने इतने जुल्म किए हैं, अब मुझे याद आ रहे हैं, हाहाकार मची हुई थी, खून लाल हो गया था कुरुक्षेत्र के मैदान का, हमारा शंख, हमारा यज्ञ पूर्ण हो नहीं सकता, हमने घने जुल्म कर रखे। श्री कृष्ण जी ने कहा कि युधिष्ठिर शंख तो बजेगा, श्री कृष्ण जी ने भी भोजन पा लिया तो भी शंख नहीं बजा। तब श्री कृष्ण जी ने कहा शंख तो बजेगा पर इसको बजाने वाला आया नहीं। युधिष्ठिर जी ने कहा भगवान ऐसे ऐसे महापुरुष बैठे, वशिष्ठ मुनि जैसी तोप बैठी, विश्वामित्र जैसे महात्मा नौनाथ है, और ये दुर्वासा जैसे शुद्ध पुरुष और 33 करोड़ देवता, आप जी ने भोजन खा लिया, अब कौन शेष है प्रभु इस पृथ्वी पर? तब श्री कृष्ण जी ने कहा अभी है शेष, एक सुदर्शन नाम का भक्त है और वो ऐसे ऐसे वहां बनारस में रहता है, उसको क्यों नहीं आमंत्रित किया तुमने? युधिष्ठिर जी ने कहा कि उसको आमंत्रित करने के लिए उस दिशा में भीम जी की ड्यूटी थी, भीम को बुलाया गया, भीम से पूछा क्या आपने सुदर्शन जी को, एक भक्त है, उसको आमंत्रित नहीं किया? भीम जी ने कहा कि मैं उनके पास गया था और मैंने उनको अपनी सारी इंट्रोडक्शन दी कि मैं भीम हूं, युधिष्ठिर राजा का भाई पांडु, और आप जी हमारी यज्ञ में आइएगा। सुदर्शन जी बहुत कुबोल आदमी है, उसने बहुत बुरी बात कही हमारे प्रति, कहा कि तुम तो महापापी हो। सुदर्शन जी ने कहा कि भीम तुम महाघोर अपराधी व्यक्ति हो, तुमने लाखों करोड़ों बहनों के सुहाग उजाड़ दिए और तुम ठाट कर रहे हो, वो रो रही है अपने पतियों को, उनके बच्चे चिल्ला रहे हैं, पूछ रहे हमारे पिता कहाँ गए, और मुझे अगर आपके यहाँ बुलवाना है, ले चलना है, तो जैसे यज्ञ तुम करने जा रहे हो और ये तुम्हारी सफल हो जा तो ऐसी ऐसी 100 यज्ञों का फल मुझे दो, तब मैं तुम्हारे टूक खाऊं, कोई ग्रास खाऊं, नहीं तो मैं भी पाप का भागी नहीं बनूंगा, और तुम तो महाअपराधी हो। श्री कृष्ण जी को पता था कि वो भी पहलवान है, कुछ और उठपटांग बकवाद करी होगी। श्री कृष्ण जी ने पूछा फिर आपने क्या कहा? भीम बोला मन ने न्यू कहा उसने कि तू चुप हो जा बाबा जी, ना तेरी थोपड़ी तोड़ दूंगा। मैंने आपसे भाई युधिष्ठिर से थोड़ा सा डर था ना, उसने समार का वो मैं। तब श्री कृष्ण जी ने कहा और मैंने ये कह दिया था कि तू आइए चाहे मत आइए कि तेरे बिना हमारी यज्ञ संपूर्ण ना होगी, श्री कृष्ण जी हमारे साथ है। अब श्री कृष्ण जी ने कहा भीम तने और महापाप इकट्ठा कर दिया, संतों के प्रति ऐसी दुर्भावना और ऐसे वचन बोलना भी पाप का भागी होता है, क्योंकि सुदर्शन जी वाल्मीकि जाति में जन्मे थे और परमेश्वर कबीर जी भी उस समय द्वापर युग में करुणामय नाम से प्रगट थे, सह शरीर आए थे, और उनको एक वाल्मीकि दंपति, एक वाल्मीकि स्त्री पुरुष ऐसे ही कमल के फूल से उठाकर लेकर गए थे, और वहां वाल्मीकि द्वारा परवरिश होने से वो कबीर परमेश्वर जी भी वाल्मीक कहलाते थे, और उन्हीं से उसका एक मित्र था सुदर्शन कबीर जी का, वो शिष्य भी सही था, वो परमेश्वर जी के ज्ञान से पूर्ण परिचित हो गया था, सत भक्ति करता था, तो वो सुदर्शन था जिससे कहा जाता है कि पांडवों की यज्ञ संपूर्ण हुई थी। अपने आत्मा श्री कृष्ण जी ने कहा युधिष्ठिर यदि तुमने अपना कुछ कल्याण करवाना है और ये पाप नाश करवाना है जो आपके ऊपर 3 ताप का कष्ट है, तो उस संत के बिना हो नहीं सकता, वो सतगुरु का उपासक है, सतगुरु का पुजारी है, सतगुरु यानी सच्चे संत से उपदेशी है वो। अब कृष्ण जी ने इतना तो पता था क्योंकि वो भी पुण्य आत्मा है और उनके अंदर भी परमात्मा सत प्रेरणा कबीर जी ही करते रहते हैं, तो उन्होंने कहा कि चलो उसको बना के लाओ, आत्मा जोड़ो, 500 पांडव श्री कृष्ण जी रथ लेकर चले। जब काफी दूर रह गए ना, रथ रोक दिया वहीं पर, एक योजन 3-4 किलोमीटर दूर, वहां से पैदल चले, रथ पीछे पीछे खाली आ रहा है, क्या देखा कि उधर से उस सुदर्शन जी ने सोचा, सुदर्शन जी ने कि इनकी यज्ञ पूर्ण हो को ना, क्योंकि सुदर्शन जी ने चर्चा की फिर अपने गुरुदेव से, करुणामय जी से, कबीर जी से, कहा गुरुजी ऐसे ऐसे आया था एक भीम युधिष्ठिर का भाई, अरुण ऐसे कहा, मैंने ऐसे कह दिया, परमात्मा बोले ठीक करा, बिल्कुल सही जवाब दिया आपने, परमात्मा कबीर जी ने कह दिया था भाई इनकी यज्ञ पूर्ण ना हो, अपने बिना ना हो बेटा, इन्हें खाण दे धक्के। सुदर्शन जी ने सोचा ये फिर आवेंगे, गुरु जी कह रहे हैं यज्ञ तो पूर्ण हो को ना, और ये तन फिर दुखी करेंगे, वो पाप का भागी बनेगा, उनका भोजन खाना पड़ेगा। अब सुदर्शन जी तो करके ऐसे विचार निकल गया सैर सपट्टे को, महीने 20 दिन की यात्रा पे। उधर से परमेश्वर कबीर जी करुणा में सुदर्शन रूप धारण करके अपने शिष्य का और सुदर्शन वाली झोपड़ी में विराजमान हो गए। अपने आत्माओं ऑटोमेटिकली होता ही हो, समर्थ शक्ति सामने बैठी श्री कृष्ण जी तो तीन लोक के भगवान, वो असंग ब्रह्मांडों का स्वामी। श्री कृष्ण जी ने जाते ही दंडवत प्रणाम किया, साथ में पांचों पांडवों ने और पहलवान भीम ने भी कराया जो श्री कृष्ण जी ने कर दिया था। अब श्री कृष्ण जी ने कहा कि प्रभु ये भगवान इन पांडवों ने एक युग किया है, आप कृपा उसमें पदार्पण कीजिए, आपकी इंतजार है, आपको आमंत्रित करने आए। तो सुदर्शन रूप में विराजमान प्रभु ने कहा कि मैंने इस पहलवान से कहा था मेरा वो काम पूरा करो। क्या कहा था कि 100 अश्वमेघ यज्ञ का पुण्य मुझे दो, तब मैं वहां चलूंगा। श्री कृष्ण जी ने कहा कि प्रभु आपकी वाणी है, संत मिलन को चालियो तज माया अभिमान, और जो जो कदम आगे रखे ओ है यज्ञ समान। क्योंकि परमेश्वर कबीर जी ने चारों युगों में ये सचिदानंद घन ब्रह्म की वाणी बोली थी, इसको ना समझ कर रिजेक्ट कर दिया, वेदों को ही हम सिरोधार्य मानते रहे। श्री कृष्ण जी ने कहा कि प्रभु आप जी की वाणी है कि संत मिलन को चालिए तज माया अभिमान। श्री कृष्ण जी कह रहे हैं कि भगवान आपकी वाणी है, हम आपके, अब देखो ये पांचों पांडव हैं, इनकी तो छक्के बेइज्जती होगी क्योंकि वो यज्ञ पूर्ण नहीं हो रही, अब इनके लिए तो धरती छोटी सी हो चुकी है, इम अभिमान कति नहीं, युग युग खड़ा पहलवान देख लो, अब वो हाथ जोड़े खड़े नो। परमात्मा कहते हैं कि ये द्वारकाधीश, आप मेरे अंदर झांक कर देख लो प्रभु, आप तो अंतर्यामी हो, हमारे अंदर कोई आज इन पांचों में और मुझ में कोई अभिमान नहीं है किसी वस्तु का, और जितने भी कदम वहां से यहां तक हुए हैं आपकी वाणी अनुसार इतने यज्ञ हो गए, इनमें से आप 100 रख लो, बाकी हम दीनों की झोली में डाल दो। कहते साधु भूखा भाव का धन का भूखा ना, मालिक ने देखना था ये योग्य हो गए कि नहीं, थोड़े बहुत दिन या कड़े ठीक हो। अभिमान सबसे बड़ा शत्रु है भक्ति मार्ग में, वहां खड़े वो पांचों पांडवों की घिघी बंध रही थी, जब नाट गया तो नाश हो जाएगा, नुकति करबद्ध खड़े पांचों के पांचों। तो परमात्मा बोले चलो, अब पहले जब ये भीम गया था ना, पहले नौता जन थी बकवाद गणी करे था, अपना अंगा दिखाओ था, सुदर्शन जी से कह रहा था कि तू के बोल रहा है बाबा जी कि युद्ध के न्यो जीत्या जा है, एक का मारू था गदा छह पड़े थे, न्यो जीत्या था हमने युद्ध। वो स्नान करके आया था संत से मिलने से पहले एक तालाब में, कबीर परमेश्वर ने बताया फिर सुदर्शन रूप में कि पहलवान जब तू आया था और स्नान करके आया था ना एक तालाब में, कहा जी, और तू क्या कह रहा था मैं एक का मारू था गदा 20 मरे थे, इतना ताकतवर हूं मैं, तेरे जैसे तो करा कितने को गए जा लिए। अब जिस तालाब में तू स्नान करके आया है उसमें तेरे पैर भी नहीं टिके, इतना जल है कहां जी, वो कुंभकर्ण की खोपड़ी है, सरका ये ऊपर का हिस्सा इतना, तेरे के तो उसका आगे कुछ भी कोनी के पहलवान पा कर है, तेरे कैसे बड़े बड़े होकर जा दिए। कहते मर्द गर्द में मिल गए वह रावण से रणधीर, और कंस के सी चाणूर से वो हरना कुछ बलबीर, तेरी क्या बुनियाद है तू जीव जन्म दर लेत, गरीब दास हरी नाम बिना तेरा खाली रह जा खेत। वो कहने लगा सचमुच महाराज जी वो कुंभकर्ण की खोपड़ी थी, खोपड़ी थी नहीं जा देखा फिर जाके, वो देखा हुई इतना मोटे वो द्वार उसकी चौर देखी, वो खोपड़ा न्यों का न्यों पड़िया रह तरा गजब हुई हो। तो इंसान ये जीव जीव ही होता है, अभिमान इसको स्वाभाविक हो जाता है, थोड़ा सा सुख शारीरिक बल या कोई बाहुबल या कोई सेना का बल हो जाती है धरती तोल देता है, फिर इसका भोग भी इसको भोगना पड़ता है। कहने का भाव यह परमात्मा ने कहा कि ला या मेरी सुमरणी उतार दे। वहां खुट्टी पे एक माला टंग रही थी उस सुदर्शन की, और भीम से कहा भीम ये माला उतार कर दे, चल मैं चलता हूं फिर चलेंगे तुम्हारे वहां। अब भीम ने वह माला ने आसानी से उतारनी चाहिए वह ना उतरी, कति दोनों हाथ ला लिए पसीने आ गए, वह उटस से मसना हो पतली सी वह। अब परमात्मा बोले रे तू क्या था मैं बड़ा बलवान हूं, एक न मारू था और छह मरे थे या मौड़ा ना उतरती पहलवान त्रे थे नो देखे मटर मटर ने बोला आ जा बैठ जा। और परमात्मा ने हाथ कराया था अपने आप उतर आएगी माड़ा हाथ में, तो उनका न्यू पेटा सा भरना था कि ऐसी इनका उलट नहीं गिगी ना पंजीरा कदे यो भी साई पावे। अब क्या कहते हैं धर्मदास जी को परमात्मा ने कहा कि धर्मदास वो संत नहीं जो चमत्कार करे, और भाई वो संत भी नहीं जिससे चमत्कार ना हो, यानी जैसे ही आप जी दुखी आते हो और सुख मिलता है आपकी सच्ची श्रद्धा सच्ची लगन होगी नाम लेते ही राहत मिलनी शुरू हो जाएगी आपको। यहाँ कोई नू ना कहते कि भी जात रेन्यू हो जाएगा जात रेन्यू कर देंगे, हानि लाभ नहीं कर सकते हम ना ऐसे करते कभी। तो ऐसे जो कहता है ऐसे करता वो संत नहीं है, और जिस संत से कोई चमत्कार ना हो जो है अद्भुत कृष्ण में ना हो ना होने के काम ना हो वो संत नहीं। तो परमात्मा ने कहा था कि धर्मदासिया घना अंधेरा और बिन परचय जीव जम का चेहरा, यदि मैं इनको राहत ना दूं अपनी शक्ति का थोड़ा बहुत प्रदर्शन ना करूं तो ये काल के ते अट्टे को ना ये काल के चिपके रहेंगे अपने पास आवे कौन बेटा। तो परमात्मा ने वो छोटा सा एक परिचय दिया था अपना कि भाई हम भी कुछ कर जाएंगे चल, तो उनका इन थोड़ा सा विश्वास हुआ वे महात्मा के तो चाड़ाए है। अब क्या हुआ पुण्यात्माओं कबीर जी की कैसी वेशभूषा थी सुदर्शन के रूप में, जैसे आदिवासी हुआ करते थे पहले, लांडी सी धोती घुटना तो थोड़ी सी नीचे था एक दोहरी लांगड़ टूटे है जूते सिर के बाल छोटे छोटे दाढ़ी बढ़ी और इसे मैले कुचले से कपड़े जैसे कई दिन नहाए हो गया हो। और जो ही वो उन सभा में प्रवेश हुआ जहां 33 करोड़ देवता 88,000 ऋषि मंडलेश्वर बैठे थे नो अंडी पाके कति सज दज के बटे उबने बैठे थे, और उनमें देखा कि यू कौन आ गया ये लाए है कि वो है यू आया है कि यज्ञ संपूर्ण करेगा, अपने कपड़ों को मुंह में ला के रास्ते तले तले नो अगे लाए है ढूंढ गए यू करेगा इनकी यज्ञ न पूरी। उधर से द्रौपदी से श्री कृष्ण जी ने कहा कि द्रौपदी बहन आप बढ़िया भोजन बनाओ इस संत से तुम्हारी यज्ञ संपूर्ण होगी। अब द्रौपदी जी ने बहुत ही प्यार से श्रद्धा से भोजन तैयार किया क्योंकि बात कति अड़ी पड़ी थी। तो वैसे भी स्वभाव होता है घर पर कोई अतिथि आ जाता है तो बहन बेटियां प्रतिदिन बनाने वाले भोजन से हटकर भोजन बनाती है और बहुत सावधानी से कहीं इसमें नमक मिर्च कम ज्यादा ना हो जाए और खाने वाला तेरे द्वारा बनाए गए भोजन को कहीं बिसरा ना दे कि तौर जाके तेरी बेइज्जती हो, इसलिए बहुत अच्छा भोजन बनाती हैं और खाना खाने वाले से इंतजार करती हैं ये कुछ टिप्पणी करे या ना करे तो वो भी ठीक जन्यू कह देख नमक थोड़ा सा या मिर्च गणी है तो बनाने वाली बहन बेटी कह आत्मा में कष्ट बहुत होता है। तो साधु संत क्या करा करते है? वो चाहे कुछ भी होता किसा भोजन किसी घर पर बन रहा होता वो कभी बिसराया नहीं करते वो कमाल हो बहुत बढ़िया भोजन बना चाहे नमक भी ना हो। तो उधर से द्रौपदी जी ने इस दृष्टिकोण से बड़े सुंदर पकवान बनाए न्यारे खीर अलवा कचौड़ी पकौड़ी दाल सब्जी कई प्रकार की सब्जी माल पूड़े बूरा मंडे ये हर तरह के जलेबी लड्डू कचौरी सब बना रहे थे और अलग अलग से एक बहुत बड़ी थाली में थोड़ा थोड़ा आइटम रख के और महात्मा जी के सामने खाने के लिए परोस दिया सर्व कर दिया। अब महाराज जी ने सोचा हमें उदाहरण देने के लिए आम व्यक्ति के लिए उसने सोचा कि भाई आज तक यो मन ये जीभ चठोरी कर लेगा नाना प्रकार के नारे नारे स्वाद लेगा यू तड़के फिर मांगेगा कल ने कितने लावांगे इसने घास फूस खानी आदमी हम। तो उसने क्या किया सतगुरु ने अब मैं सुदर्शन ही कहूंगा क्योंकि वो सुदर्शन का रोल कर रहे थे। अब सुदर्शन जी ने क्या किया उस सारे आइटमा में थे थोड़ा थोड़ा आइटम उठा के अपना अलग से थाली में डाल लिया और उन सबको इकट्ठा कर लिया दाल भी सब्जी भी लड्डू भी जलेबी भी हलवा भी कचौड़ी भी पूरी भी सब कट्ठी तोड़ ताड़ के। अब द्रौपदी ने बाट देखे थी बाबा जी उंगली चाटता रह जाएगा और तेरे गुण गावगा विवाह विवाह बहुत बढ़िया भोजन बनाया, बहुत सुंदर स्वादिष्ट पदार्थ है, 36 व्यंजन डाल रखे हैं। और जब उसने सारा ही मिला दिया तो द्रौपदी ने सोचा यो अच्छा रहा सूदर का सूदर ही, इसने खाना भी ना था, मन मन में इतना दोष कर दिया, यो कहे कि शंख बजाओगा इसने खाने का बिना बेरा गलीज। तो यमन बड़ा उस्ताद एक मिनट में पता नहीं किक के बकवाद कर जाता है। और वो तंत्रयामी थे कि द्रौपदी ने अभिमान हो गया अपने पकवान का, और द्रौपदी का अभिमान भी समाप्त करना था। तो ऐसे उन्होंने 5 बार में जैसे एक ग्रास बनाया, फिर दूसरा, 5 ग्रास में सारा भोजन खा लिया। पहला जब ग्रास खाया तो शंख ने 1 बार आवाज करी, दूसरा किया तो दूसरी बार करी, तीसरी बार खाया तीसरी बार भी आवाज करी, 5वीं बार में सारा भोजन खा लिया तो 5 बार शंख बाज के बंद हो गया। अब 5 पांडवों का उत्साह बढ़ गया। युधिष्ठिर कहने लगा भगवान बड़ी दया करी, आपकी दया से शंख बजते गया। अब कृष्ण जी कहने लगे भाई शंख बज गया लेकिन यज्ञ पूर्ण ना हुई, यो शंख तो बहुत देर तक बजना चाहिए था, जब यज्ञ पूर्ण होगी अखंड बजना चाहिए कई घंटे तक। अरे तो 5 बबूल का बंद हो गया, कोई बात बनी नहीं। युधिष्ठिर फिर पकड़ गया, बैठ गया कलेजा पकड़ के, हे भगवान अब किसने बुलाओगे, अब कौन रह गया खाना खाए बिना। तब कृष्ण जी कहने लगे कोई नहीं रह रहा भाई, ये जो सामने बैठे ना महापुरुष, ये के वाल्मीकि दिखे है, इसके एक बाल के समान भी 3 लोक नहीं है, ये इतना सिद्धि संपन्न शक्ति संपन्न महापुरुष है। पर भाई कोई गलती अपने तो बनी है। कृष्ण जी ने द्रौपदी से पूछा बहन सच्ची बताइए तू, जब इस महाराज जी खाना खा रहा था और इसने सारे आइटम इकट्ठे कर लिए, तेरे मन में कोई दोष आया था? अकां जी दोष आ गया। द्रौपदी ने सच्ची बता दी, मन ने और बात कह दी मन मन में। तो कृष्ण जी कहने लगे ये तेरी अमरोड काट रहे थे, ये तेरे बड़ने सीधा करे थे जो तेरे में बकवाद भर रखी थी, ना तो इस महापुरुष के खाना खान था शंख ना बाजे। ने बोले कृष्ण जी कहने लगे पैर धोकर पीस के इतने वाल्मीकि सा दिखे है, लियाई परात ठा गए बढ़िया सी जल लियाई, और उस वाल्मीकि थी जिसने सुदर्शन के यानी परमात्मा थे वैसे, लेकिन वहां वो रोल वो कर रहे थे। द्रौपदी ने अपने हाथा चरण धोए, वो मैल धूल युक्त और गाल के लोटे में पीण लाएगी, आधा पी लिया। जब श्री कृष्ण जी ने कहा कि बहन मुझे भी दे दे थोड़ा सा इसे महापुरुष का चरणामृत, और कब कब मिले, आधा द्रौपदी ने पिया आधा श्री कृष्ण ने, और शंख अपने आप एकदम बहुत जबरदस्त आवाज करी, और कहते हैं उस शंख की आवाज स्वर्ग तक गई, और उसके कारण बेमौसम में फूलदार पौधे फूलों से लदपद हो गए और फलदार वृक्ष फलों से लदपद हो गए, बसंत जैसा मौसम बन गया, और वो 3 ताप का नाश भी उस कबीर परमेश्वर जी की कृपा से यानी कबीर जी से ही हुआ।
0: आप सुन रहे थे जगतगुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222880541।

प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक रासा प्लेडियम दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। फैमिली डिनर, केटरिंग, स्मॉल बर्थडे पार्टीज अते होर जानकारी लई कॉल करो 403-454-0346।

प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक मालवा टायर्स एंड सर्विसेज दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। ए 24 घंटे सत्तो दिन मोबाइल सर्विसेज प्रदान करदे ने। इना तो किसी भी तरह दे नवे ते पुराने ट्रक एंड ट्रेलर टायर्स, व्हील बैलेंस एंड अलाइनमेंट्स, टायर रोटेशन एंड रिपेयर्स दीयां सेवावां लैण लई तुसी मालवा टायर्स नू 403-899-1985 जां फिर 403-899-1984 ते संपर्क कर सकते हो। मालवा टायर्स एंड सर्विसेज दा पता है, बिल्डिंग नंबर 8616, 44th स्ट्रीट, साउथ ईस्ट, कैलगरी। प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक HMP कस्टम कैबिनेट्स दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो किसी भी तरह दे कस्टम किचन, बार्स, वॉशरूम, वैनिटी, क्लोजेट अते कमर्शियल मिल वर्क बारे कोई भी जानकारी लेने लई तुसी पॉल सेखो जी नू 403-829-5000 या फिर 403-701-4947 ते संपर्क कर सकते हो। HMP कस्टम कैबिनेट्स लिमिटेड दा पता है, यूनिट नंबर 11-2316 नॉर्थ ईस्ट, कैलगरी। प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक M&R रूफिंग एंड साइटिंग लिमिटेड दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो किसी भी तरह दी रूफिंग, साइडिंग, स्टुको, सॉफ्ट फेशिया, स्मार्ट ट्रिम, फ्लैट रूफ अते रेनोवेशन बारे कोई भी जानकारी लेने लई तुसी रंजीत विर्क जी नू 403-903-0483 यानी 403-903-0483 ते संपर्क कर सकते हो। M&R रूफिंग एंड साइडिंग लिमिटेड।

0: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक कैसिडी हे इंजरी लॉ तों तारा कैसिडी जी दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तों किसी भी तरह दे मोटर व्हीकल एक्सीडेंट इंजरी क्लेम बारे कोई भी जानकारी लैण लई तुसी तारा कैसिडी जी नूं 403-770-1099 यानी 403-777-1099 ते संपर्क कर सकते हो। कैसिडी हे इंजरी ला दा पता है, यूनिट नंबर 1507 14 एवेन्यू साउथ वेस्ट कैलगरी।
1: प्रोग्राम दा ए हिस्सा इंटरनेशनल एजुकेशन एंड एम्प्लॉयमेंट लिमिटेड दे सहयोग नाल तुहाडे तक पहुंचाया जा रहा है। जे कोई तुहाडा रिश्तेदार कैनेडा विच पढ़न लई आउणा चाहुंदा है या तुसी कैनेडा विच रहिंदे हो ते किसे भी कॉलेज विच पढ़न लई एडमिशन लैणी चाहुंदे हो ता इस दी जानकारी लई कॉल करो बॉबी डॉड एट 403-561-9811 403-561-9811 साडा पता है इंटरनेशनल एजुकेशन 1130 4818 वेस्ट विंड्स ड्राइव नॉर्थ ईस्ट कैलगरी।

0: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक सुंदर बिल्डिंग एंड सप्लाईज़ दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो किसी भी तरह दे ड्राई वॉल, रूफिंग, इंसुलेशन दे नाल नाल किसी भी प्रकार दे कस्टम मेटल, मिटन साइडिंग दे सामान बारे कोई भी जानकारी लैण लई तुसी अज ही निर्वैर जौहल जी नूं 403-690-8700 यानी 403-690-8700 या फिर भजन सिंह जौहल जी नूं 403-561-0227 यानी 403-561-0227 ते संपर्क कर सकते हो। सुंदर बिल्डिंग एंड सप्लाईज लिमिटेड दे ऑफिस दा पता है यूनिट नंबर 4612 6th स्ट्रीट नॉर्थ ईस्ट कैलगरी।
1: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक कैनेडियन स्क्रू पाइल्स दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। होम एक्सटेंशन, पैटियो डेक, प्रीकास्ट कंक्रीट स्टेप अते किसे भी तरह दी सॉफ्ट ग्राउंड जिमे गैराज फ्लोर दे स्ट्रॉन्ग अते सिक्योर बेस लई स्क्रू पाइल्स इंस्टॉल कराउण लई जसकरन बराड नूं कॉल करो 403-439-7700 403-439-7700।

0: कैलगरी विच 24 घंटे 7 दिन चलन वाले
1: पंजाबी रेडियो 102.7 FM वालों हर रोज शब्द कीर्तन धार्मिक कथा ढाडी वारा तो इलावा होर भी बहुत सारे धार्मिक प्रोग्राम प्रसारित किए जाते ने जिन्हां च स्टूडियो दे नंबर उत्ते कॉल करके तुसी भी हिस्सा ले सकते हो।
0: प्रोग्रामा संबंधी या सहयोग लई किसी भी तरह की जानकारी लेने लई तुसी फोन कर सकते हो। फोन नंबर है 403-238-4067 403-238-6667।
1: होर जानकारी लई विजिट करो punjabiradio.ca।

0: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक कैसिडी हे इंजरी लॉ तो तारा कैसिडी जी दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो किसी भी तरह दे मोटर व्हीकल एक्सीडेंट इंजरी क्लेम बारे कोई भी जानकारी लैण लई तुसी तारा कैसिडी जी नूं 403-770-1099 यानी 403-777-1099 ते संपर्क कर सकते हो। कैसिडी हे इंजरी लॉ दा पता है, यूनिट नंबर 1507 14 एवेन्यू साउथ वेस्ट कैलगरी।
1: प्रोग्राम दा ए हिस्सा इंटरनेशनल एजुकेशन एंड एम्प्लॉयमेंट लिमिटेड दे सहयोग नाल तुहाडे तक पहुंचाया जा रहा है। जे कोई तुहाडा रिश्तेदार कैनेडा विच पढ़न लई आउणा चाहुंदा है या तुसी कैनेडा विच रहिंदे हो ते किसी भी कॉलेज विच पढ़न लई एडमिशन लैणी चाहुंदे हो तां इस दी जानकारी लई कॉल करो बॉबी डॉड एट 403-561-9811 403-561-9811 साडा पता है इंटरनेशनल एजुकेशन 1130-4818 वेस्ट विंड्स ड्राइव नॉर्थ ईस्ट कैलगरी।
2: तन ओ मस्तक तन ओ

0: प्रोग्राम दा एह हिस्सा तुहाडे तक सुंदर बिल्डिंग एंड सप्लाईज़ दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो किसी भी तरह दे ड्राई वॉल, रूफिंग, इंसुलेशन दे नाल नाल किसी भी प्रकार दे कस्टम मेटल मिटन साइडिंग दे सामान बारे कोई भी जानकारी लैण लई तुसी अज ही निर्वैर जौहल जी नूं 403-690-8700 यानी 403-690-8700 या फिर भजन सिंह जौहल जी नूं 403-561-0227 यानी 403-561-0227 ते संपर्क कर सकते हो। सुंदर बिल्डिंग एंड सप्लाईज लिमिटेड दे ऑफिस दा पता है यूनिट नंबर 4612 6th स्ट्रीट नॉर्थ ईस्ट कैलगरी।
1: प्रोग्राम दा ए हिस्सा त्वाडे तक कैनेडियन स्क्रू पाइल्स दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। होम एक्सटेंशन, पैटियो डेक, प्रीकास्ट कंक्रीट स्टेप अते किसी भी तरह दी सॉफ्ट ग्राउंड जिमें गैराज फ्लोर दे स्ट्रॉन्ग अते सिक्योर बेस लई स्क्रू पाइल्स इंस्टॉल कराउण लई जसकरन बराड़ नू कॉल करो 403-439-7700 403-439-7700

0: कैलगरी विच 24 घंटे 7 दिन चलन वाले
1: पंजाबी रेडियो 102.7 FM वालों हर रोज शब्द कीर्तन धार्मिक कथा ढाडी वारा तो इलावा होर भी बहुत सारे धार्मिक प्रोग्राम प्रसारित किए जाते ने जिन्हां च स्टूडियो दे नंबर उत्ते कॉल करके तुसी भी हिस्सा ले सकते हो।
0: प्रोग्रामा संबंधी या सहयोग ले किसी भी तरह की जानकारी लेन ले तुसी फोन कर सकते हो। फोन नंबर है 403-238-6667।
1: होर जानकारी ले विजिट करो punjabiradio.ca।

0: प्रोग्राम का यह हिस्सा तुहाडे तक परमजीत पलाहा डिजार्डिन इंश्योरेंस एजेंट के सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है।
1: इना तो किसी तरह की इंश्योरेंस जिवें लाइफ डिसेबिलिटी ऑटो होम मोटरबाइक बोट अते होर बिजनेस इंश्योरेंस बारे जानकारी लैण लई तुसी परमजीत पलाहा जी नूं 403-554-4444
0: यानी 403-554-4444 ते संपर्क कर सकते हो। परमजीत पलाहा जी दे ऑफिस का पता है यूनिट नंबर 210 2323 32nd Avenue North East Calgary।

प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक कैसिडी हे इंजरी लॉ तो तारा कैसिडी जी दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो किसी भी तरह दे मोटर व्हीकल एक्सीडेंट इंजरी क्लेम बारे कोई भी जानकारी लैण लई तुसी तारा कैसिडी जी नूं 403-770-1099 यानी 403-777-1099 ते संपर्क कर सकते हो। कैसिडी हे इंजरी लॉ दा पता है, यूनिट नंबर 1507 14 एवेन्यू साउथ वेस्ट कैलगरी।

0: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक सुंदर लंबर इंडस्ट्रीज दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो तुसी फुल हाउस लंबर पैकेज, बेसमेंट ते गराज मटेरियल दे नाल नाल सीडर ते फेंस दे समान बारे कोई भी जानकारी लैण लई 403-433-5555 जा फिर 403-717-3899 ते संपर्क कर सकते हो। सुंदर लंबर इंडस्ट्रीज दा पता है 3501 23rd Street नॉर्थ ईस्ट कैलगरी।
1: तन ओ मस्तक तन ओ

प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडी तक फर्स्ट चॉइस लाइटिंग प्लंबिंग ते इलेक्ट्रिकल दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। फर्स्ट चॉइस लाइटिंग एंड प्लंबिंग दा फोन नंबर 403-457-1457 यानी 403-457-1457। इना दे शोरूम दा पता है यूनिट नंबर 2121 51 52 एवेन्यू नॉर्थ ईस्ट कैलगरी कॉमनवेल्थ हाल दे बिल्कुल नेड़े।

प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक HMP कस्टम कैबिनेट्स दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो किसी भी तरह दे कस्टम किचन बार्स वॉशरूम वैनिटी क्लाजेट अते कमर्शियल मिल वर्क बारे कोई भी जानकारी लैण लई तुसी पॉल सेखो जी नूं 403-829-5000 या फिर 403-701-4947 ते संपर्क कर सकदे हो। HMP कस्टम कैबिनेट्स लिमिटेड दा पता है यूनिट नंबर 11 2316 27 एवेन्यू नॉर्थ ईस्ट कैलगरी।

प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक कैसिडी हे इंजरी लॉ तो तारा कैसिडी जी दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो किसी भी तरह दे मोटर व्हीकल एक्सीडेंट इंजरी क्लेम बारे कोई भी जानकारी लैण लई तुसी तारा कैसिडी जी नूं 403-770-1099 यानी 403-777-1099 ते संपर्क कर सकते हो। कैसिडी हे इंजरी लॉ दा पता है, यूनिट नंबर 1507 14 एवेन्यू साउथ वेस्ट कैलगरी।

कैलगरी 24 घंटे सत्तो दिन प्रसारित होने वाले इको एक पंजाबी धार्मिक रेडियो 102.7 एफएम ते हर हफ्ते सोमवार तो शुक्रवार शाम 6 बजे तो 8 बजे तक तुसी सुनदे हो गुरबाणी विचार प्रोग्राम पंजाबी रेडियो कैलगरी दे होस्ट प्रोफेसर मनजीत सिंह प्यासा द्वारा।

प्रोग्राम का यह हिस्सा तुहाडे तक मालवा टायर्स एंड सर्विसेज दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। यह 24 घंटे सत्तो दिन मोबाइल सर्विसेज प्रदान करते ने। इना तो किसी भी तरह दे नवे ते पुराने ट्रक एंड ट्रेलर टायर्स, व्हील बैलेंस एंड अलाइनमेंट्स, टायर रोटेशन एंड रिपेयर्स दीयां सेवावां लैण लई तुसी मालवा टायर्स नू 403-899-1985 जां फिर 403-899-1984 ते संपर्क कर सकते हो। मालवा टायर्स एंड सर्विसेज दा पता है, बिल्डिंग नंबर 8616, 44th स्ट्रीट, साउथ ईस्ट, कैलगरी।

प्रोग्राम का यह हिस्सा तुहाडे तक सुंदर बिल्डिंग एंड सप्लाईज दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो किसी भी तरह दे ड्राई वॉल, रूफिंग, इंसुलेशन दे नाल नाल किसी भी प्रकार दे कस्टम मेटल मिटन साइडिंग दे सामान बारे कोई भी जानकारी लैण लई तुसी अज ही निर्वैर जौहल जी नूं 403-690-8700 यानी 403-690-8700 या फिर भजन सिंह जौहल जी नूं 403-561-0227 यानी 403-561-0227 ते संपर्क कर सकते हो। सुंदर बिल्डिंग एंड सप्लाईज लिमिटेड दे ऑफिस दा पता है यूनिट नंबर 4612 6th स्ट्रीट नॉर्थ ईस्ट कैलगरी।

प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक सुंदर लंबर इंडस्ट्रीज दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो तुसी फुल हाउस लंबर पैकेज, बेसमेंट ते गराज मटेरियल दे नाल नाल सीडर ते फेंस ते सामान बारे कोई भी जानकारी लैण लई 403-433-5555 जा फिर 403-717-3899 ते संपर्क कर सकते हो। सुंदर लंबर इंडस्ट्रीज दा पता है 3501 23rd Street, North East, Calgary।

कैलगरी 24 घंटे 7 दिन चलन वाला इको एक पंजाबी धार्मिक रेडियो पंजाबी रेडियो 102.7 FM धार्मिक प्रोग्रामा दा आनंद मानन लई आज ही अपने करा ते कारा दी रेडियो नू पंजाबी रेडियो 102.7 FM ते ट्यून करो पंजाबी रेडियो।

प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक पंजाब इंश्योरेंस दे हरपिंदर सिंह सिद्धू दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो किसी भी तरह दी लाइफ इंश्योरेंस जां विजिटर इंश्योरेंस बारे कोई भी जानकारी लैण लई तुसी हरपिंदर सिद्धू जी नूं 403-404-3500 यानी 403-404-3500 ते संपर्क कर सकते हो। पंजाब इंश्योरेंस तो हरपिंदर सिंह सिद्धू।

0: कैलगरी विच 24 घंटे 7 दिन चलने वाले
1: पंजाबी रेडियो 102.7 FM वालों हर रोज शब्द कीर्तन धार्मिक कथा ढाडी वारा तो इलावा होर भी बहुत सारे धार्मिक प्रोग्राम प्रसारित किए जाते ने जिन्हां च स्टूडियो दे नंबर उत्ते कॉल करके तुसी भी हिस्सा ले सकते हो।
0: प्रोग्रामा संबंधी या सहयोग ले किसी भी तरह की जानकारी लेने लई तुसी फोन कर सकते हो। फोन नंबर है 403-238-6667।
1: होर जानकारी ले विजिट करो punjabiradio.ca।

प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक रासा प्लेडियम दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। फैमिली डिनर, केटरिंग, स्मॉल बर्थडे पार्टीज अते होर जानकारी लई कॉल करो 403-454-0347 403-454-0347 रासा प्लेडियम दा पता है 202 17th Avenue South East Calgary near Stanford

प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक मालवा टायर्स एंड सर्विसेज दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। ए 24 घंटे 7 दिन मोबाइल सर्विसेज प्रदान करदे ने। इना तो किसी भी तरह दे नवे ते पुराने ट्रक एंड ट्रेलर टायर्स, व्हील बैलेंस एंड अलाइनमेंट्स, टायर रोटेशन एंड रिपेयर्स दीयां सेवावां लैण लई तुसी मालवा टायर्स नूं 403-899-1985 जां फिर 403-899-1984 ते संपर्क कर सकते हो। मालवा टायर्स एंड सर्विसेज दा पता है, बिल्डिंग नंबर 8616, 44th स्ट्रीट, साउथ ईस्ट, कैलगरी।

0: कैलगरी विच 24 घंटे 7 दिन चलन वाले
1: पंजाबी रेडियो 102.7 FM वालों हर रोज शब्द कीर्तन धार्मिक कथा ढाडी वारा तो इलावा होर भी बहुत सारे धार्मिक प्रोग्राम प्रसारित किए जाते ने जिन्हां च स्टूडियो दे नंबर उत्ते कॉल करके तुसी भी हिस्सा ले सकते हो।
0: प्रोग्रामा संबंधी या सहयोग ले किसी भी तरह की जानकारी लेन ले तुसी फोन कर सकते हो। फोन नंबर है 403-238-4067।
1: होर जानकारी ले विजिट करो punjabiradio.ca।

0: प्रोग्राम का यह हिस्सा तुहाडे तक परमजीत पलाहा डेजर्डिन इंश्योरेंस एजेंट के सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है।
1: इना तो किसी तरह की इंश्योरेंस जिवें लाइफ डिसेबिलिटी ऑटो होम मोटरबाइक बोट अते होर बिजनेस इंश्योरेंस बारे जानकारी लेने लई तुसी परमजीत पलाहा जी नूं 403-554-4444
0: यानी 403-554-4444 ते संपर्क कर सकते हो। परमजीत पलाहा जी दे ऑफिस दा पता है यूनिट नंबर 210-2323 32nd Avenue North East Calgary। प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक कैसिडी हे इंजरी लॉ तों तारा कैसिडी जी दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इन्हां तों किसी भी तरह दे मोटर व्हीकल एक्सीडेंट इंजरी क्लेम बारे कोई भी जानकारी लैण लई तुसी तारा कैसिडी जी नूं 403-770-1099 यानी 403-777-1099 ते संपर्क कर सकते हो। कैसिडी हे इंजरी ला दा पता है यूनिट नंबर 1507 14 एवेन्यू साउथ वेस्ट कैलगरी।

0: कैलगरी विच 24 घंटे 7 दिन चलन वाले
1: पंजाबी रेडियो 102.7 FM वालों हर रोज शब्द कीर्तन धार्मिक कथा ढाडी वारा तो इलावा होर भी बहुत सारे धार्मिक प्रोग्राम प्रसारित किए जाते ने जिनाच स्टूडियो दे नंबर उत्ते कॉल करके तुसी भी हिस्सा ले सकते हो।
0: प्रोग्रामा संबंधी या सहयोग ले किसी भी तरह दी जानकारी लेन ली तुसी फोन कर सकते हो। फोन नंबर है 403-238-6667।
1: होर जानकारी ले विजिट करो punjabiradio.ca। प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक ट्रैवल वर्ल्ड दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। टिकटां दी किसी भी तरह दी जानकारी लैण लई तुसी अज ही ट्रैवल वर्ल्ड नू 403-717-0771 ते यानी 403-717-0771 ते संपर्क कर सकते हो। ट्रैवल वर्ल्ड दा पूरा पता नोट करो। ग्रीन प्लाजा यूनिट नंबर 1130 4818 वेस्ट विंड ड्राइव नॉर्थ ईस्ट कैलगरी।

प्रोग्राम का यह हिस्सा तुहाडे तक रियो बैंकुएट हाल के सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो किसी भी तरह के ब्याह शादी के प्रोग्राम, बर्थडे पार्टी जां होर फंक्शन संबंधी हाल बुक करने की जानकारी लेने लई तुसी रियो बैंकुएट हाल नूं 403-633-2000 यानी 403-633-2000 ते संपर्क कर सकते हो। रियो बैंकुएट हाल का पता है, यूनिट नंबर 2850, होपवेल प्लेस, नॉर्थ ईस्ट कैलगरी।

प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक M&R रूफिंग एंड साइटिंग लिमिटेड दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो किसी भी तरह दी रूफिंग, साइडिंग, स्टुको, सॉफ्ट फेशिया, स्मार्ट रिम, फ्लैट रूफ अते रेनोवेशन बारे कोई भी जानकारी लैण लई तुसी रंजीत विर्क जी नूं 403-903-0483 यानी 403-903-0483 ते संपर्क कर सकते हो। M&R रूफिंग एंड साइडिंग लिमिटेड। कैलगरी च इको एक धार्मिक रेडियो पंजाबी रेडियो 102.7 FM जिथे 24 घंटे 7 दिन बहुत सारे धार्मिक प्रोग्राम पेश किते जांदे ने। इना प्रोग्रामा नू स्पॉन्सर करन लई तुसी पंजाबी रेडियो 102.7 FM नू 403-238-6667 यानी 403-238-6667 ते संपर्क कर सकते हो। सुनते रहो पंजाबी रेडियो 102.7 FM कैलगरी। प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक सुंदर बिल्डिंग एंड सप्लाईज दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो किसी भी तरह दे ड्राईवॉल, रूफिंग, इंसुलेशन दे नाल नाल किसी भी प्रकार दे कस्टम मेटल, मिटन साइडिंग दे सामान बारे कोई भी जानकारी लैण लई तुसी अज ही निर्वैर जौहल जी नूं 403-690-8700 यानी 403-690-8700 जां फिर भजन सिंह जौहल जी नूं 403-561-0227 यानी 403-561-0227 ते संपर्क कर सकते हो। सुंदर बिल्डिंग एंड सप्लाईज लिमिटेड दे ऑफिस दा पता है यूनिट नंबर 4612 6th स्ट्रीट नॉर्थ ईस्ट कैलगरी।

0: श्री दरबार साहब अमृतसर तो गुरबाणी कीर्तन दे सरवण ले आज ही अपनी आकारा ते करांदे रेडियो पंजाबी रेडियो 102.7 एफएम ते ट्यून करो। श्री दरबार साहब अमृतसर तो प्रसारित गुरबाणी कीर्तन हर रोज सवेरे 4 to 8 तक ते शाम 5 to 6 बजे तक रिले कीते जांदे ने। पंजाबी रेडियो 102.7 एफएम कैलगरी विच इको एक पंजाबी धार्मिक रेडियो है।
1: ज्यादा जानकारी लई कॉल कर सकते हो, फोन नंबर है 403-238-6060 या विजिट करो www

दर्शन प्यासी दिन सुरात चितवो अन दिन नीत खोल कपट गुर में लिया हाँ नानक

होए प्रभ मेरा हम अवगुण भरे एक गुण नाही अमृत छाड़ बिखै बिख खाई माया मोह परम पै पूले सुत दारा स्यों प्रीत लगाई एक उत्तम पंथ सुनो गुर संगत तेह मिलंत जम त्रास मिटाई एक अरदास पाठ कीरत की गुर रामदास रखो सुनाई।

0: જીવન મફત સવાકીએ માર જીવે મરિયા જન નાનક સતગુર મેલ હર જગ દતર તરિયા
1: સલોક મહલા પહેલા सच्चे तेरे खंड सच्चे ब्रह्मांड सच्चे तेरे लो सच्चे आकार सच्चे तेरे करने सर्व विचार सच्चा तेरा अमर सच्चा दीवार सच्चा तेरा हुक्म सच्चा फुरमान सच्चा तेरा कर्म सच्चा निशान सच्चे तुदा खै लख करोड़ सच्चा सब तान सच्चा सब जोर सच्ची तेरी सिफत सच्ची साला सच्ची तेरी कुदरत सच्चे पातशाह नानक सच ध्यान सच जो मर जमे सो कच न कच महला पहला
0: बड़ी बड़ियाई जा बड़ा नाऊ बड़ी बड़ियाई जा सच ने आऊ बड़ी बड़ियाई जाने चल थाऊ बड़ी बड़ियाई जाने लाओ बड़ी बड़ियाई बुझस पाओ बड़ी बड़ियाई जा पुछन दात

विस्माद नाद विस्माद वेद विस्माद जीव विस्माद भेद विस्माद रूप विस्माद रंग विस्माद नागे फिरे जल विस्माद पौण विस्माद पानी विस्माद अग्नि खेड़े विडानी विस्माद धरती विस्माद खानी।

0: गहने पौन पाणी बसंतर चंद सूर्य अवतार सगली ततिमाल तन वर्तन सब जंजाल नानक मोसे ज्ञान विहूनी खाए गया जमकाल महला पहला।
1: वायन चिले नचन गौर पैर हलायन फिर सर उड़ रामा झट पाए विखे लोक सह कर जाय रोटियां कारण पूरे ताल आप छाड़े तरती नाल गावन गोपियां गावन कान गावन सीता राजे राम निरपौ निरंकार सच नाम जाका किया सगल जहान सेवक सेवा क्रम चढ़ाओ पिनी रांझना मन चाओ सिखी सिख्या गुर विचार नदरी क्रम लंगाए पार कोलू चरखा चक्की चक थल वारोले बहुत अनंत लाटू मदानियां गा पंखी पौंदिया लैना सा सुवे चाड़ पवाई जंत नानक पौंदिया गणत अनंत बंदन बंद पवाए सोए भया कृतन चै सब कोए नच नच हसे चली सी रोए उड़ना जाही सदना होए नचन कुदन मन का चाओ नानक जिन मन पाओ तिना मन पाओ पौड़ी ना।

0: विचार सुनकर प्रगटाक सुनाया। सतगुरु मिले सदा मुक्त है जिन में क्यों मोह छुड़ाया। उत्तम में विचार जिन सच्चे से उचित लाया। जग जीवन दाता पाया, जग जीवन दाता पाया।
1: कर कृपा वसो मेरे हृदय

कूड़ राजा कूड़ प्रजा कूड़ सब संसार, कूड़ मंडप कूड़ माड़ी कूड़ बैसनहार, कूड़ सोयना कूड़ रूपा कूड़ पहननहार, कूड़ काया कूड़ कपड़ कूड़ रूप अपार।

जोधा का विचार मूर्ख पंडित हिकमत हुज्जत संजा करे प्यार तरमी तरम करे गवावे मगे मुख द्वार जदी सदावे जुगत न जाने छड़ बह कर बार सबको पूरा आपे होवे कट न कोई आखे पत परवाना पिछे पाई है तनानक तुलिया जापे महला पहला।

0: करता करना मैं नाही, जा हो करी ना होई, बलिहारी कुदरत वसिया, तेरा अंत ना जाई लख्या रहा हो। जात मैं जोत, जोत मैं जाता, कलकला भरपूर रहा, तू सच्चा साहिब सिख वाले जिनकी ती सो पार पया। कहो नानक करते किया बाता, जो किछ करना सो कर रहा महला दूजा।
1: योग शब्दं ज्ञान शब्दं बे शब्दं ब्राह्मण है, खत्री शब्दं सूर शब्दं सूद्र शब्दं प्राकृत है, सर्व शब्दं एक शब्दं जे को जाने ते हो नानक ता का दास है। सोई निरंजन देव महला दूजा।
0: एक कृष्णं सर्व देवा देव देवा तय आत्मा, आत्मा बास देवस जे को जाने भे हो नानक ता का दास है। सोई निरंजन देव महला पहला।
1: कुंभे बद्दा जल रहे, जल बिन कुंभ ना होए, ज्ञान का बद्दा मन रहे, गुरबिन ज्ञान न होए, पौड़ी पड़िया होवे गुनेगार। तायो मी साधन मारिये, जिह का निकालना तिवे हो नाव पचारिये, सिकन खेडिये जित दर गए गया हारिये, पड़िया ते उमिया विचार
0: अगे विचारिये,
1: मोचले सो अगे मारिये अगे मार।

0: भगत उदरे से नानक कर कृपा कर कृपा संत आप करियो है।
1: गुण समो फल सगल मनो

0: दुख हर सर्व रो खंडन गुणकारी। काम क्रोध मद मत सर तृष्णा बिनस जाहे हर नाम उच्चारी। इशनान दान पापन सुच किरया चरण कमल हृदय प्रभतारी। साजन मीत सखा हर बंद जीतान प्रभ प्राण अधारी। ओट गही स्वामी समरथ नानक दास सदा बलहारी।
1: आवधि कट्यो ना जातो प्रेम रस चरण कमल संग। दामन बंध्यो ना जात विदे मन दर्श मग। पावक जर्यो ना जात रहो जन तूरे लग। नीर ना साकस बोर चले हर पंथ पग। नानक रोग दोख अग मोह सिदे हरि नाम खग।
2: उद्दम कर लगे बोह पाती बिचरे अनक शास्त्र बोह खटुआ। पूजा चक्र करत पसम लगाए तीरथ बोह परमते। सूखम देह बंधे बोह जटुआ। बिन हर भजन सगल दुख पावत। जो प्रेम बढ़ाए सूत के हटुआ।

ब्रह्मन् ये नर आराध्या तेने पौ सागर तरिया जिस मनुख पह करां बेनती सो अपने दुख भरिया पार ब्रह्म जिन हृदय आराध्या तिने पौ सागर तरिया।

पंजन हर राया साध के चरण तोर जन बांछ सुख नानक एह पाया फिरत फिरत तुमरा द्वार आया पंजन हर साध के चरण तोर जन बांछ सुख नानक एह पाया वाहिगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। गुजरी महला पंजवा जिस मानुख पह करो बेनती सो अपने दुख भरिया पार ब्रह्म जिन हृदय अराध्या तिन भाव सागर तरिया।

नील बस्तर ले कपड़े पैरे तुरक पठानी अमल किया चारे भेद हो चार पड़े गुणे तुम चार विचार पाओ भगत करनी सदाए तो नानक मुखंतर पाए पौड़ी सतगुरु बिटो वारिया जित मिले डूबे सिवन जा रहा सतगुरु है बोए।

0: नाही करती रह सच नाम मेरा सच नाम आधार मेरा जन भुखा सब गवाइया
1: शांत सुख मनवाई बस आज ने चा सब जाया
0: सदा कुर्बानक ता गुर बिट्टू जिस दियां आई पटियाइया कहलन को
1: सुनो संत शब्द तरो पे
0: सच नाम मेरा आधारों बाजे पंच सबत धर सपग कर सपग

अण सुनो बट पाप क्यों सकल मनोरथ पूरे दुख रोग संता पुत्र सुनी सच्ची बाणी सुनते पुनीत कहते पवित्र सतगुरु रहे पर पूरे।

का सर्ब सुख होवे। जहां जहां खालसा जी साहेब तहां तहां रच्छे आ रियायत। देग तेग फतेह

बोलबाले बोलो जीवा हे गुरु बोलो जी सिखा नु सिखी दान केस दान रहत दान।

दे, सदा सहाई दातार जीओ। श्री ननकाणा साहिब अते होर गुरुद्वारिया गुरधामा दे जिन्ना

पुस्तक संध्या बादं सिलपुट बगल समाधं मुखचूड़ विभूखण सारं त्रैपाल तिहाल विचारं गल माला तिलक ललाटं दो तोती बस्त्र कपाटं जे जानस ब्रह्मं कर्मं सा फोकट निश्चो कर्मं कौ नानक निश्चो त्यावे वे सतगुर वाट न पावे।

0: अंतर पूजा पड़े कते बात संयम तुरका पहाई छोड़ी ले पाखंडा नाम ले जाहे तंदा महला पहला
1: मानस खाने करे निवाज छुरी बगान तनगल ताक तुरक ब्राह्मण पूरे नाद उन पे आवे ओई साथ उड़ी रास उड़ावा पार उड़ बोल करे आहार श्रमतरन का डेरा दूर नान कुरिया परपूर मथे टिका तिड़ तू तीक खाई हाथ छुरी जगत कसाई दिल वस्त्र पैरे प्रवान मलिश्तान ले पूजे प्राण पाख्या का कुठा बकरा खाना चौंक पर कसैना जाना देखा चौंका कडीका उपरे आए बैठी कुड़िया मत पिटे वे मत पिटे एहो अन साडा फिटे तन फिटे फिट करेन मन जुठे चुली प्रेम पव नानक सच ते आई है सच हो वै ता सच पाई पौड़ी चित अंदर सब को।

0: ने धोए खुआर सूचे न आखिया बैंज पिंड तो सूचे से नानका जिन मन बसिया सो पड़ी तुर पुराने कौन भी हर रंगी अरम सवार कुठी मंड माड़िया लाए बैठे हर पास सारे चीज करम पाम दे हर पुजन नाही हारे कर फरमाइश पाया एक महलत मरण सारे जरे आए जो बन हारे जो बन हारे जो बन हारे
1: ਜਰਾਈ ਜੋ ਬਨਹਾਰਿਆ।

परवाह नहीं उसे केरी बास चला दरवाट पर खर्च मंगा जब देता काल दीवाने को कलम का हम आत्मा में दर ले लिखा फिर छुटे नान का जो दिल तोड़िया पे कड़क कियो कलिया पे इते तालिये दुखता अपना कर कच्ची पक्की सारी जो है सो चल सी।

आपे साजे करे आप जाए परखे आप तस्वी जन तो पाए के देखे ताप थाप किसनो कई नानका सब छपे आप सब छपे आप सब कुछ आपे बड़ी बड़ी आईया।

महला पंजवा जस मानुख पह करो बेनती सो अपने दुख भरिया ब्रह्म जिन हृदय आराध्या तिने पौ सागर तरिया जिस मानुख पह करो बेनती सो अपने दुख भरिया पार ब्रह्म जिन हृदय आराध्या तिन पौ सागर तरिया गोर हार बिन को ना वृथा दुख काटे प्रभ ताज अवर सेवक जे होई है तित मान महत जस कटे माया के सन बंद सेन साक कित ही काम न आया हर का दास नीच कुल ऊंचा तिस संग मन बांछत फल पाया लाख कोट बिखिया के भिंजना ताम है त्रिसन ना भूजे सिमरत नाम कोट उजियारा बसत अगोचर सूजे फिरत फिरत तुमरा द्वार आया पै पंजन हर राया साध के चरण तोर जन बांछा

0: पर पंजन हर राया साध के चरण तोर जन बांछा सुख नानक हो पाया। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतह। गुजरी महला पंजवा, जिस मानुख पह करां बेनती, सो अपने दुख भरिया पार ब्रह्म जिन हृदय अराध्या, तिन भाओ सागर तरिया।
1: कैलगरी 24 घंटे 7 दिन चलन वाला इको एक पंजाबी धार्मिक रेडियो, पंजाबी रेडियो 102.7 FM। धार्मिक प्रोग्रामा दा आनंद मानन लई आज ही अपने घरां ते कारां दी रेडियो नूं पंजाबी रेडियो 102.7 FM ते ट्यून करो। पंजाबी रेडियो।

तेनू हजार वारी कमा के पानी दा घुट पला दे, तू मैनू पानी ना पलावे। अज मेरे वास्ते दुध लैके आया है, मैनू यकीन नहीं आता। माता दे चरणा ते तेरी हो गया मां, मेरी मत ते पड़दा पै गया सी, मेरी मत ते पड़दा पै गया सी। अज मैनू किसे दस दिता है कि मां बाप रब दी जगह हुंदे ने, तू मेरा रब है, मैं तेरी सेवा करया करांगा। दुध शक लै

विरला कोई कोई विरला ही सरबण पुत्र हुंदा है। लोग कहंदे ने ना रब्बा सरबण पुत्र नहीं, पर भाई साहब कह

ਲਈ ਸਕ੍ਰਿਊ ਫਾਈਲਸ ਇੰਸਟਾਲ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਜਸਕਰਨ ਬਰਾੜ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰੋ 4034397700 403-439-7700। प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक फेयर डील फर्नीचर दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। किसी भी तरह दे मॉडर्न ट्रेडिशनल कस्टमाइज्ड फर्नीचर दी जानकारी लई पिछले 33 सालां तों कैलगरी विच सेवावां दे रहे फेयर डील फर्नीचर नूं कॉल करो 403-250-5646 403-250-5646। इना दा पता है 2023 34th स्ट्रीट नॉर्थ ईस्ट कैलगरी। प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक YYC होम केयर सर्विसेज दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। ए किसे भी उम्र तो लै के बुजुर्गां तक दी घर विच रह के संभाल करदे ने। इना दे एक्सपीरियंस्ड पंजाबी केयर गिवर्स डेली एक्टिविटीज जिवें नवाउणा, दवाई देना, अपॉइंटमेंट्स ते लै के जाना या सफाई विच मदद करदे ने। तुहानू जेब विचों कोई भी खर्चा नहीं आएगा। ए सिद्धा सरकार नू बिल करदे ने। होर जानकारी लई कॉल करो 825-760-0983 825-760-0983।

0: सत साहिब, क्या आप अपने जीवन में सुख, शांति और समाधान चाहते हैं? क्या आप नशा, पारिवारिक कलह और जीवन की परेशानियों से मुक्ति पाना चाहते हैं? तो अवश्य पढ़ें जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित अनमोल पुस्तकें ज्ञान गंगा, जीने की राह व गीता तेरा ज्ञान अमृत। ये सभी पुस्तकें पंजाबी, उर्दू, मराठी व अन्य भाषाओं में भी उपलब्ध है। ये पुस्तकें पूर्ण परमात्मा, सच्ची भक्ति विधि और मोक्ष का मार्ग सरल भाषा में समझाती हैं। लाखों लोगों ने इन्हें पढ़कर अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव पाया है। कनाडा में ये पुस्तकें बिल्कुल निःशुल्क मंगवाने के लिए आज ही हमारी वेबसाइट jagatgururampalji.org पर जाएं या 3065818061 पर संपर्क करें।
1: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक सुंदर बिल्डिंग एंड सप्लाईज दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो किसी भी तरह दे ड्राई वॉल, रूफिंग, इंसुलेशन दे नाल नाल किसी भी प्रकार दे कस्टम मेटल, मिटन साइडिंग दे सामान बारे कोई भी जानकारी लैण लई तुसी अज ही निर्वैर जौहल जी नूं 403-690-8700 यानी 403-690-8700 या फिर भजन सिंह जौहल जी नूं 403-561-0227 यानी 403-561-0227 ते संपर्क कर सकते हो। सुंदर बिल्डिंग एंड सप्लाईज लिमिटेड दे ऑफिस दा पता है यूनिट नंबर 4612 6 स्ट्रीट नॉर्थ ईस्ट कैलगरी।
2: प्रोग्राम दा ए हिस्सा ABM कॉलेज दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। ABM कॉलेज विच किसी भी तरह दे हेल्थ प्रोग्राम्स, बिजनेस या IT प्रोग्राम्स दी जानकारी लैण लई कॉल करो 403-719-4300 403-719-4300। होर जानकारी लई साडी वेबसाइट abmcollege.com ते विजिट करो।

0: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक M&R रूफिंग एंड साइटिंग लिमिटेड दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो किसी भी तरह दी रूफिंग, साइडिंग, स्टुको, सॉफ्ट फेशिया, स्मार्ट रिम, फ्लैट रूफ अते रेनोवेशन बारे कोई भी जानकारी लैण लई तुसी रंजीत विर्क जी नूं 403-903-0483 यानी 403-903-0483 ते संपर्क कर सकते हो। M&R रूफिंग एंड साइडिंग लिमिटेड।
1: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक एशिया पैसिफिक इमीग्रेशन दे मनिंदर सिंह ढिल्लो होरां दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इन्हां दा फोन नंबर नोट करो 403-225-1111 403-225-1111। एशिया पैसिफिक इमीग्रेशन दे मनिंदर सिंह ढिल्लो होरां दा पता नोट करो, यूनिट नंबर 144-3670 त्रेंट एवेन्यू नॉर्थ ईस्ट कैलगरी।
0: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक पंजाब इंश्योरेंस दे हरपिंदर सिंह सिद्धू दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो किसी भी तरह दी लाइफ इंश्योरेंस जां विजिटर इंश्योरेंस बारे कोई भी जानकारी लैण लई तुसी हरपिंदर सिद्धू जी नूं 403-404-3500 यानी 403-404-3500 ते संपर्क कर सकते हो। पंजाब इंश्योरेंस तो हरपिंदर सिंह सिद्धू।

0: कैलगरी विच 24 घंटे 7 दिन चलने वाले
1: पंजाबी रेडियो 102.7 FM वालों हर रोज शब्द कीर्तन धार्मिक कथा ढाडी वारा तो इलावा होर भी बहुत सारे धार्मिक प्रोग्राम प्रसारित किए जाते ने जिन्हां च स्टूडियो दे नंबर उत्ते कॉल करके तुसी भी हिस्सा ले सकते हो।
0: प्रोग्रामा संबंधी या सहयोग ले किसी भी तरह की जानकारी लेन ले तुसी फोन कर सकते हो। फोन नंबर है 403-238-6667।
1: होर जानकारी ले विजिट करो punjabiradio.ca। प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक परमजीत पलाहा डेजर्डिन इंश्योरेंस एजेंट दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है।
0: इना तो किसे तरह दी इंश्योरेंस जिवें लाइफ डिसेबिलिटी ऑटो होम मोटरबाइक बोट अते होर बिजनेस इंश्योरेंस बारे जानकारी लैण लई तुसी परमजीत पलाहा जी नूं 403-554-4444
1: यानी 403-554-4444 ते संपर्क कर सकते हो। परमजीत पलाहा जी दे ऑफिस दा पता है यूनिट नंबर 210 3232nd एवेन्यू नॉर्थ कैलगरी। प्रोग्राम दा एह हिस्सा तुहाडे तक M&R रूफिंग एंड साइटिंग लिमिटेड दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो किसी भी तरह दी रूफिंग साइडिंग स्टुको सॉफ्ट फेशिया स्मार्ट ट्रिम फ्लैट रूफ अते रेनोवेशन बारे कोई भी जानकारी लैण लई तुसी रंजीत विर्क जी नूं 403-903-0483 यानी 403-903-0483 ते संपर्क कर सकते हो। M&R रूफिंग एंड साइडिंग लिमिटेड। प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक फेयर डील फर्नीचर दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। किसे भी तरह दे मॉडर्न ट्रेडिशनल कस्टमाइज्ड फर्नीचर दी जानकारी लई पिछले 33 सालां तों कैलगरी विच सेवावां दे रहे फेयरडील फर्नीचर नूं कॉल करो 403-250-5646 403-250-5646। इना दा पता है 2023 34th Street नॉर्थ ईस्ट कैलगरी। कैलगरी दे इको एक धार्मिक रेडियो पंजाबी रेडियो ते आओ हुण सरवण करिए गुरमत विचार भाई पिंदरपाल सिंह जी दी रसना तों।

हम मैले तुम उजल करते, हम निर्गुण तुंदाता, हम मूर्ख तुम चतुर सयाने, तू सर्व कला का ज्ञाता। मादौ हम ऐसे तू ऐसा, हम पापी तुम पाप खंडन, नीको ठाकुर देशा, दंडौत बंदन अनिक बार, सर्व कला समरथ

0: जेवा एक कवन गुण कहिए बेशमार बेअंत स्वामी तेरो अंत ना किन ही लई। ताई गुरु जी ने बाणी शब्द वरते कि मेरे साहिबा कौन जाने गुण तेरे, तेरे मुकम्मल गुणा नु बयान नहीं किया जा सकता। किसे दी इन्नी हस्ती नहीं कि तेरे इन्ना गुणा नु मुकम्मल तौर ते बयान कर सके, पर गुरु जी कहने ओदे गुणा नु गा।
1: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक पंजाब इंश्योरेंस दे हरपिंदर सिंह सिद्धू दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो किसी भी तरह दी लाइफ इंश्योरेंस जा विजिटर इंश्योरेंस बारे कोई भी जानकारी लेने लई तुसी हरपिंदर सिद्धू जी नू 403-404-3500 यानी 403-404-3500 ते संपर्क कर सकते हो। पंजाब इंश्योरेंस तो हरपिंदर सिंह सिद्धू।
2: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक सुंदर लंबर इंडस्ट्रीज दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो तुसी फुल हाउस लंबर पैकेज, बेसमेंट ते गैराज मटेरियल दे नाल नाल सीटर ते फेंस दे समान बारे कोई भी जानकारी लैण लई 403-433-5555 यानी 403-433-5555 ते संपर्क कर सकदे हो। सुंदर लंबर इंडस्ट्रीज दा पता है 3501 23rd Street नॉर्थ ईस्ट कैलगरी। प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक रासा प्लेडियम दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। फैमिली डिनर, केटरिंग, स्मॉल बर्थडे पार्टीज अते होर जानकारी लई कॉल करो 403-454-0347 403-454-0347 रासा प्लेडियम दा पता है 202 17th Avenue साउथ ईस्ट कैलगरी नियर स्टैम्पेड ग्राउंड। प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक YYC होम केयर सर्विसेज दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। ए किसे भी उम्र तो लैके बुजुर्गां तक दी घर विच रह के संभाल करदे ने। इना दे एक्सपीरियंस्ड पंजाबी केयरगिवर्स डेली एक्टिविटीज जिवें नवाउणा, दवाई देना, अपॉइंटमेंट्स ते लैके जाना या सफाई विच मदद करदे ने। तुहानू जेब विचों कोई भी खर्चा नहीं आएगा, ए सीधा सरकार नू बिल करदे ने। होर जानकारी लई कॉल करो 825-760-0983 825-760-0983।

0: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक मालवा टायर्स एंड सर्विसेज दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। ए 24 घंटे सत्तो दिन मोबाइल सर्विसेज प्रदान करदे ने। इन्हां तों किसी भी तरह दे नवें ते पुराने ट्रक एंड ट्रेलर टायर्स, व्हील बैलेंस एंड अलाइनमेंट्स, टायर रोटेशन एंड रिपेयर्स दीआं सेवावां लैण लई तुसीं मालवा टायर्स नूं 403-899-1985 जां फिर 403-899-1984 ते संपर्क कर सकते हो। मालवा टायर्स एंड सर्विसेज दा पता है, बिल्डिंग नंबर 8616, 44th स्ट्रीट, साउथ ईस्ट, कैलगरी।
1: सत साहिब, क्या आप अपने जीवन में सुख, शांति और समाधान चाहते हैं? क्या आप नशा, पारिवारिक कलह और जीवन की परेशानियों से मुक्ति पाना चाहते हैं? तो अवश्य पढ़ें जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित अनमोल पुस्तकें ज्ञान गंगा, जीने की राह व गीता तेरा ज्ञान अमृत। ये सभी पुस्तकें पंजाबी, उर्दू, मराठी व अन्य भाषाओं में भी उपलब्ध है। ये पुस्तकें पूर्ण परमात्मा, सच्ची भक्ति विधि और मोक्ष का मार्ग सरल भाषा में समझाती हैं। लाखों लोगों ने इन्हें पढ़कर अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव पाया है। कनाडा में ये पुस्तकें बिल्कुल निःशुल्क मंगवाने के लिए आज ही हमारी वेबसाइट jagatgururampalji.org पर जाएं या 306-581-8061 पर संपर्क करें।
2: प्रोग्राम का ए हिस्सा ABM कॉलेज दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। ABM कॉलेज विच किसी भी तरह दे हेल्थ प्रोग्राम्स, बिजनेस या IT प्रोग्राम्स दी जानकारी लैन लई कॉल करो 403-719-4300, 403-719-4300। और जानकारी लई साडी वेबसाइट abmcollege.com ते विजिट करो।

0: प्रोग्राम दा ए हिस्सा त्वाडे तक कैनेडियन स्क्रू पाइल्स दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। होम एक्सटेंशन, पैटियो डेक, प्रीकास्ट कंक्रीट स्टेप अते किसी भी तरह दी सॉफ्ट ग्राउंड जिमें गैराज फ्लोर दे स्ट्रॉन्ग अते सिक्योर बेस लई स्क्रू पाइल्स इंस्टॉल कराउण लई जसकरन बराड़ नू कॉल करो 403-439-7700 403-439-7700
1: प्रोग्राम का यह हिस्सा तुहाडे तक रियो बैंकुएट हाल के सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो किसी भी तरह के ब्याह शादी के प्रोग्राम, बर्थडे पार्टी जां होर फंक्शन संबंधी हाल बुक करन दी जानकारी लैण लई तुसीं रियो बैंकुएट हाल नूं 403-633-2000 यानी 403-633-2000 ते संपर्क कर सकते हो। रियो बैंकुएट हॉल का पता है यूनिट नंबर 2850 होपवेल प्लेस नॉर्थ ईस्ट कैलगरी। प्रोग्राम का यह हिस्सा तुहाडे तक HMP कस्टम कैबिनेट्स के सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो किसी भी तरह के कस्टम किचन, बार्स, वॉशरूम वैनिटी, क्लाजेट अते कमर्शियल मिल वर्क बारे कोई भी जानकारी लैण लई तुसीं पॉल सेखों जी नूं 403-829-5000 या फिर 403-701-4947 ते संपर्क कर सकते हो। HMP कस्टम कैबिनेट्स लिमिटेड दा पता है यूनिट नंबर 11 2316 27 एवेन्यू नॉर्थ ईस्ट कैलगरी।

0: ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਰਣਜੀਤ ਵਿਰਕ ਜੀ ਨੂੰ 403-903-0483 ਯਾਨੀ 403-903-0483 ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। M&R Roofing and Siding Limited। प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक कैसडी हे इंजरी लॉ तो तारा कैसडी जी दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो किसी भी तरह दे मोटर व्हीकल एक्सीडेंट इंजरी क्लेम बारे कोई भी जानकारी लैण लई तुसी तारा कैसडी जी नू 403-770-1099 यानी 403-777-1099 ते संपर्क कर सकते हो। कैसडी हे इंजरी ला दा पता है यूनिट नंबर 1507 14 एवेन्यू साउथ वेस्ट कैलगरी।
1: मैं फिर एक बेनती करांगा जी, साडा मकसद है सी जे सिख कहौंदे आ अमृत नू कट्टड़ता नाल संकीर्णता नाल ना जोड़ के देखो, अमृत नू आत्मा दे सफर दे लई गुर प्रसाद दे रूप विच धारण करो। भी इस अंदर ने सफर करना, गुर प्रसाद असी लेना है, गुरु दी कृपा लेनी है। हजूर सच्चे पातशाह महाराज ओ कहंदे ने भी जदों हुण गुरु ने मंत्र दे दिता, उंज तां भगती मैं बोलना सारे आप जी बोल दे, मैं इहनू मेरी अज दी कथा नू कट्टड़ता चनल जायो। मेरा मकसद ए सी भी देह मिल गई, सारे कहने वाहगुरु कहो, पर गुरु ग्रंथ साहिब विच इक शब्द है कि मनमुख बंदे भी कई वारी आप हुदरे हो के गुरु तो बिना भगती करदे आ जिहड़ी फलीभूत नहीं हुंदी। मनमुख भगत करै बिन सतगुर, भगत करै क्या है, मनमुख भगत करै बिन सतगुर भगत ना हो ही रहा। सतगुरु तो बिना भगती किवें होवेगी। गुर प्रसाद कै गुरमुखो, इसे करके पूरा गुरु ग्रंथ साहिब कू के एक गल नू सैकड़े वारी कह रहे है, एक ओंकार सतगुरु प्रसाद, सतगुरु दी कृपा। एक उदाहरण कह, जदो गुरु नानक साहिब जी ने करतारपुर अपना ए चोला हजूर ने बदलिया, 18 साल सतगुरु करतारपुर रहे, ते जिस दिन करतारपुर दा लांघा खुलिया सी, चलो सतगुरु तरस कीता उस दिन जो हुक्मनामे दी कथा करन दा सुभाग प्राप्त होया, काफी लंबेरा समा कथा कीती हजूर दे दरबार साहिब विच, ओ दरबार साहिब ही कहने। फिर मन च इक मेरे च आई, साडे विद्वान पुरश नांदे हुंदे सन कि गुरु एक ही है, जिहो जी तुहाडी भावना ना गुरु ओही है। जिहड़ा बंदा कटाक्ष दे तरीके नाल पढ़ लिया ओ अपने हिसाब नाल तुकां कढ़दा है, ते गुरु साहिब ने बाणी च लिख दिता है भी जिहो जी तुहाडी भावना होवेगी मैं ओह हो जाईआं। सतगुरु सदा दयाल है भाई, विण भागा क्या पाई है, एक नदर कर देखे सब ऊपर, जेहा पाओ त्या फल पाईए, जिहो जी तुहाडी भावना है। हजूर गुरु नानक साहिब जदों गुरता गद्दी देण लगे, परिवार माता सुलखणी जी सन, हजूर दे दोनों बेटे सन, सन्मान युग बाबा श्री चंद जी, बाबा लक्ष्मी दास जी, जदों गुरु गद्दी देण लगे उत्थे सवाल उठिया जी, बाप अपने पुत्र नूं विरासत सौंपदा है। मां जी सुलखणी जी कहिंदे आ, सतगुरु आप जी दे बेटे उह शब्द सुनण वाले ने। कहिण लगे सुलखणीए, मेरा अंदर तां भाई लहणे कोल ही है, इह मेरे पुत्र ने, गुरु अंगद देव ही होवेगा, इन्हां नूं बाबे के कहणगे, पुत्र ना मेरे। कहुण तां असीं जो आउंदा जिन्नी निंदिया रज के करने आ, वाहिगुरु सानूं बचाए जी। असीं उस इतिहास दे वी कटाक्ष कर रहे हैं जिथे बाबा श्री चंद वर्गिया नूं इन्ना सन्मान मिलिया। कहिंदे इह मेरे खून ने, मेरे पुत्र ने। अगले शब्द सुनने वाले ने कहन लगे, अन्न दी पैसे दी इन्हां घर कदी कमी नहीं रहेगी, पुत्र मेरे ने पर जन्म सवरेगा तां जे गुरु गुरु जपणगे, अन्न दी कमी नहीं रहनी। उथे भी इथों तक ही शब्द कहा भी गुरु घर दे बूहे अगे जे कुत्ता रोज बहन लग पवे बरकत उहदे विच वी आ जांदी, इह तां मेरे बच्चे ने। गुरु घर के होए सवाना, तिनको पूजै सगल जखाना। अन्न पैसे दी कमी नहीं, पर उथे घटना वापरी, उहदा जिक्र कुछ विद्वाना कीता है कि गुरु नानक साहिब ने हथ च टका पकड़िया। इह बड़ा घट जिक्र कीता जांदा है, शायद मेरा ख्याल प्यारा सिंह पद्म उहनां ने कीता है। ओ कहिंदे ने हजूर

0: प्रोग्राम का यह हिस्सा तुहाडे तक रियो बैंकुएट हॉल दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो किसी भी तरह दे ब्याह शादी दे प्रोग्राम, बर्थडे पार्टी जां होर फंक्शन संबंधी हाल बुक करन दी जानकारी लैण लई तुसीं रियो बैंकुएट हॉल नूं 403-633-2000 यानी 403-633-2000 ते संपर्क कर सकदे हो। रियो बैंकुएट हॉल दा पता है यूनिट नंबर 28 पुजा होपवेल प्लेस नॉर्थ ईस्ट कैलगरी।
1: सत साहिब, क्या आप अपने जीवन में सुख शांति और समाधान चाहते हैं? क्या आप नशा, पारिवारिक कलह और जीवन की परेशानियों से मुक्ति पाना चाहते हैं? तो अवश्य पढ़ें जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित अनमोल पुस्तकें ज्ञान गंगा जीने की राह व गीता तेरा ज्ञान अमृत। ये सभी पुस्तकें पंजाबी, उर्दू, मराठी व अन्य भाषाओं में भी उपलब्ध है। ये पुस्तकें पूर्ण परमात्मा, सच्ची भक्ति विधि और मोक्ष का मार्ग सरल भाषा में समझाती हैं। लाखों लोगों ने इन्हें पढ़कर अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव पाया है। कनाडा में ये पुस्तकें बिल्कुल निःशुल्क मंगवाने के लिए आज ही हमारी वेबसाइट jagatgururampaljee.org पर जाएं या 306-581-8061 पर संपर्क करें।

0: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक M&R रूफिंग एंड साइटिंग लिमिटेड दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो किसी भी तरह दी रूफिंग, साइडिंग, स्टुको, सॉफ्ट फेशिया, स्मार्ट रिम, फ्लैट रूफ अते रेनोवेशन बारे कोई भी जानकारी लैण लई तुसी रंजीत विर्क जी नू 403-903-0483 यानी 403-903-0483 ते संपर्क कर सकते हो। M&R रूफिंग एंड साइडिंग लिमिटेड।
1: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक एशिया पैसिफिक इमीग्रेशन दे मनिंदर सिंह ढिल्लो होरां दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना दा फोन नंबर नोट करो 403-225-1111 403-225-1111। एशिया पैसिफिक इमीग्रेशन दे मनिंदर सिंह ढिल्लो होरां दा पता नोट करो, यूनिट नंबर 144 3670 त्रेंट एवेन्यू नॉर्थ ईस्ट कैलगरी।
2: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक YYC होम केयर सर्विसेज दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। ए किसी भी उम्र तो लै के बुजुर्गां तक दी घर विच रह के संभाल करदे ने। इना दे एक्सपीरियंस्ड पंजाबी केयरगिवर्स डेली एक्टिविटीज जिवें नवाउणा, दवाई देना, अपॉइंटमेंट्स ते लै के जाना या सफाई विच मदद करदे ने। तुहानू जेब विचों कोई भी खर्चा नहीं आएगा। ए सिद्धा सरकार नू बिल करते ने। और जानकारी लई कॉल करो 825-760-0983 825-760-0983।

0: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक मालवा टायर्स एंड सर्विसेज दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। ए 24 घंटे 7 दिन मोबाइल सर्विसेज प्रदान करदे ने। इना तो किसी भी तरह दे नवे ते पुराने ट्रक एंड ट्रेलर टायर्स, व्हील बैलेंस एंड अलाइनमेंट्स, टायर रोटेशन एंड रिपेयर्स दीयां सेवावां लैण लई तुसी मालवा टायर्स नूं 403-899-1985 जां फिर 403-899-1984 ते संपर्क कर सकते हो। मालवा टायर्स एंड सर्विसेज दा पता है, बिल्डिंग नंबर 8616, 44th स्ट्रीट, साउथ ईस्ट, कैलगरी।
1: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक कैनेडियन स्क्रू पाइल्स दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। होम एक्सटेंशन, पैटियो डेक, प्रीकास्ट कंक्रीट स्टेप अते किसी भी तरह दी सॉफ्ट ग्राउंड जिमें गैराज फ्लोर दे स्ट्रोंग अते सिक्योर बेस लई स्क्रू पाइल्स इंस्टॉल कराउण लई जसकरन बराड़ नू कॉल करो 403-439-7700 403-439-7700।

प्रोग्राम का यह हिस्सा ABM कॉलेज के सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। ABM कॉलेज विच किसी भी तरह के हेल्थ प्रोग्राम्स, बिजनेस या IT प्रोग्राम्स की जानकारी लेने लई कॉल करो 403-719-4300 403-719-4300। होर जानकारी लई साडी वैबसाइट abmcollege.com ते विजिट करो। प्रोग्राम दा ए हिस्सा इंटरनेशनल एजुकेशन एंड एम्प्लॉयमेंट लिमिटेड दे सहयोग नाल तुहाडे तक पहुंचाया जा रहा है। जे कोई तुहाडा रिश्तेदार कैनेडा विच पढ़न लई आउणा चाहुंदा है या तुसीं कैनेडा विच रहिंदे हो ते किसे भी कॉलेज विच पढ़न लई एडमिशन लैणी चाहुंदे हो ता इस दी जानकारी लई कॉल करो bobby.dodd@403-561-9811 403-561-9811 साडा पता है इंटरनेशनल एजुकेशन 1130 4818 वेस्ट विंड्स ड्राइव नॉर्थ ईस्ट कैलगरी।

प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक रासा प्लेडियम दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। फैमिली डिनर, केटरिंग, स्मॉल बर्थडे पार्टीज अते होर जानकारी लई कॉल करो 403-454-0347 403-454-0347 रासा प्लेडियम दा पता है 202 17th Avenue साउथ ईस्ट कैलगरी नियर स्टैंपेड ग्राउंड। प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक सुंदर लंबर इंडस्ट्रीज दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो तुसी फुल हाउस लंबर पैकेज, बेसमेंट ते गैराज मटेरियल दे नाल नाल सीटर ते फेंस दे समान बारे कोई भी जानकारी लैण लई 403-433-5555 यानी 403-433-5555 ते संपर्क कर सकदे हो। सुंदर लंबर इंडस्ट्रीज दा पता है 3501 23rd Street, North East Calgary।

ते सूरज दो दीवे उन्हें लाए आ सानू देखण वास्ते सस कर सूर। जिहड़ा सूरज आ चंद दी कोई अपनी रोशनी नहीं हुंदी, देखो किड्डी कमाल दी गल आ, रात नू चिट्टे रंग दा चंद किन्नी चमक मारदा सानू रोशनी दिंदा, पर उहदी आपदी कोई रोशनी नहीं, उह सूरज दी रोशनी दे सिर ते ही दुनिया नू चानण करदा रात नू। इस तरह एहो जिहियां हैरानीजनक कौतक, इस तरह वख वख तरीकियां दे नाल मनुख नू बंदे नू अकाल पुरख वाहिगुरू ने घड़िया। सानू सच्चे पातशाह जी इस गल तो यही समझाउंदे आ कि उस दुनिया नू बनाउण वाले दे डर दे विच रह के गुरु दे लड़ लग के अपना जीवन जिउणा, वाहिगुरू दे भै भावनी दे विच सिर्फ भेख नहीं, सिर्फ दिखावा नहीं, दिलों उस दा डर मनना, रब दे लड़ लग के अपने अकाल पुरख वाहिगुरु दे लड़ लग के उस दे हुक्मां नू मन के अपना जीवन जिउणा, अते धुरकी बाणी दा उपदेश लै के उस नू लड़ गठ देनी, तां अपने जिहड़े जीवन दे विच जिंदगी दे विच आउणा सफला है। सो अंतलियां पंगतियां फिर पढ़ के सच्चे पातशाह जी दी कृपा दे नाल जो विचार होई भुल्लां चुक्कां दी खिमा बख्शनी, संगत बख्शणहार है। अग्गे वास्तो सच्चे पातशाह जी शुद्ध अते स्पष्ट बाणी पढ़न अते समझण समझाउण दी दात बख्शण। सो अखीरलियां पंगतियां

0: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक सुंदर बिल्डिंग एंड सप्लाईज दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो किसी भी तरह दे ड्राई वॉल, रूफिंग, इंसुलेशन दे नाल नाल किसी भी प्रकार दे कस्टम मेटल, मिटन साइडिंग दे सामान बारे कोई भी जानकारी लैंड लई तुसी अज ही निर्वैर जोहल जी नू 403-690-8700 यानी 403-690-8700 या फिर भजन सिंह जोहल जी नू 403-561-0227 यानी 403-561-0227 ते संपर्क कर सकते हो। सुंदर बिल्डिंग एंड सप्लाईज लिमिटेड दे ऑफिस दा पता है यूनिट नंबर 4612 6th स्ट्रीट नॉर्थ ईस्ट कैलगरी।
1: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक एशिया पैसिफिक इमीग्रेशन दे मनिंदर सिंह ढिल्लो होरां दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इन्हां दा फोन नंबर नोट करो 403-225-1111 403-225-1111। एशिया पैसिफिक इमीग्रेशन दे मनिंदर सिंह ढिल्लो होरां दा पता नोट करो यूनिट नंबर 144 3670 63 एवेन्यू नॉर्थ ईस्ट कैलगरी।
2: सत साहिब, क्या आप अपने जीवन में सुख शांति और समाधान चाहते हैं? क्या आप नशा, पारिवारिक कलह और जीवन की परेशानियों से मुक्ति पाना चाहते हैं? तो अवश्य पढ़ें जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित अनमोल पुस्तकें ज्ञान गंगा, जीने की राह व गीता तेरा ज्ञान अमृत। ये सभी पुस्तकें पंजाबी, उर्दू, मराठी व अन्य भाषाओं में भी उपलब्ध है। ये पुस्तकें पूर्ण परमात्मा, सच्ची भक्ति विधि और मोक्ष का मार्ग सरल भाषा में समझाती हैं। लाखों लोगों ने इन्हें पढ़कर अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव पाया है। कनाडा में ये पुस्तकें बिल्कुल निःशुल्क मंगवाने के लिए आज ही हमारी वेबसाइट jagatgururampalji.org पर जाएं या 306-581-8061 पर संपर्क करें।
0: पंजाबी रेडियो 102.7 FM ते प्रसारित होने वाले प्रोग्रामा ते जो भी विचार पेश किए जाते ने ओ उना विद्वाना दे अपने विचार ने। रेडियो अदारा 102.7 FM इना दे नाल सहमत होवे ए लाजमी नहीं।
3: पूर्ण परमात्मा पाप कर्म दंड को भी काट सकता है। अभी तक जिस भी संत व महापुरुष से मिले उन्होंने यही बताया कि पाप कर्म फल भोगने से ही समाप्त होगा। वो प्रभु कौन है जो पाप कर्म को काट देता है, वो काल के बंधन से छुड़वा देता है, उसका क्या नाम है, पूजा की विधि क्या है? कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन।
4: संसारी दी गल्लां चिन्ह ना बुझै सबद जोगेरे नू, संसारी दी गल्लां चिन्ह ना बुझै सबद जोगेरे नू, ये मुर्दों से ती प्रीत लगावे ना जाने सतगुरु मेरे नू, मुर्दों से ती प्रीत लगावे न जाने।

श्वेत छतर सिर मुकट बेराजे, देखत ना उस चेहरे नु। श्वेत छतर सिर मुकट बेराजे, देखत ना उस चेहरे नु। ऊंची थड़ियां खेती बोवे ये भूल गए नज डेरे नु। ऊंची थड़ियां खेती बोवे ये भूल गए नज डेरे नु। मत दे दी बेरे नु, मत दे दी है बालम बेरे नु। मत दे दी है बालम, ये संसार समझदा नाही कहंदा श्याम दोपहरे नु। ये संसार समझदा नाही कहंदा श्याम दोपहरे नु। गरीब दासिये वक्त जात है रोवोगे इस पैरे नु। गरीब दासिये वक्त जात है रोवोगे इस पैरे नु। मत दे दी है बालम बैरे नु, मत दे दी है बालम। ये संसार समझदा नाही कहंदा श्याम दोपहरे नु। ये संसार समझदा नाही कहंदा श्याम दोपहरे नु। गरीब दासिये वक्त जात है रोवोगे इस पैरे नु। गरीब दासिये वक्त जात है रोवोगे इस पैरे नु। मत दे दी है बालम बैरे। आत्मा रो रही है, परमात्मा से पुकार करी है कि मेरे को तो इस काल ने काल रूपी इस मन के साथ बांध दी, इसके साथ मेरा मेल कर दिया। इस काल ने अपना एजेंट छोड़ रखा मन, आत्मा के साथ ये नकली मालिक बन गया इसका। मन की और आत्मा की खुराक अलग अलग। आत्मा की खुराक परमात्मा की भक्ति, धर्म पूर्ण करना, विनम्र रहना, और मन की वृत्ति बकवाद करना, बेमतलब अहंकार बनाना, रगाने सुनना, मांस खाना, शराब पीना, ताश खेलना और बकवाद, राजनीति में गप्पे मारना। और भक्ति करनी तो उल्टी करनी, अच्छी भक्ति नहीं करने का। अब जैसे कोई साधना कर रहा है, कोई सोमवार का व्रत रखा है और उसने कोई ना कह देना शनिवार का व्रत बहुत लाभ देता, वो शनिवार का भी शुरू कर देगा। और उसको कोई नौका दे वह ना मनसा देवी पर और वहां एक धागा बांध जाओ ना हरि मनोकामना पूर्ण, वहां भी भाग लेगा। और कोई इसने नौका ना कहा जा सतलोक आश्रम बरवाड़ा में नौकर ना वहां के दरिया है, और वहां तो दरका रहता मनसा देवी पर पूरा मर ढाई हजार आदमी मर गए पाचे उसके ऊपर है भगदड़ माच के हर किता चक्कर कोई ना हरियाणा की तो कुत्ता ही टांग टूट जाना आते जाते नो को। चल लेंगे हमारे वहां सत्संग बहुत अच्छा होता है और सारी व्यवस्था बिछे बिछाए गदर ले हैं ऐसी रजाई में, बिल्कुल ताजी रजाई, ऐसी सर्दी में देसी घी का खान पान सारा फ्री हैं। और चल वहां चलेंगे सत्संग सुनेंगे नो को ना टाइम को ना। एक भगत बताओ था कैसे, मैं एक अपने मित्र गांव खाता उसने कहा था कहा तो वहां सत्संग में चलेंगे तीन दिन का सत्संग बोला ना टाइम को ना। इतने में एक व्यक्ति दूसरे ते ही बतावा था नो वहां कंपटीशन आ रहा दूसरे गांव में कंपटीशन होया करो वहां ये गाय को हर अग्नि गाणी हरियाणा के पांच छह पार्टी आ जाया करो वो उस तो बढ़ कर वो उस तो बढ़ कर सुरीली आवाज से गाने गाते इकट्ठे फिर उनको इनाम दिया जाता उसमें कंपटीशन बोला। तो वो किसी और ने बतावा था और जिसको उसने भगत ने कहा था चल सत्संग में उस तो नाइट गया उसने आप तो जाकर पूछा अरे किता रहा कंपटीशन कहाँ रहा है अकवा फलाने गांव में 5 किलोमीटर दूर वहां जा पहुंचा रात तो रात का धाम फदड़ फदड़ 5 किलोमीटर साइकिल पर गया पैदल मर रहा और वहां बैठे जाकर देवी ना बैठे ऐसे रेत के अंदर उड़े मूतें बालक
और वहां सारी रात दांदरे का डके ऐसी बकवाद सुनकर खुश होकर गया और नूके देख चाल सत्संग बना टाइम को ना कन्ना पे गटाल जा। आत्मा रो रही है कि इस मन ने यदि कोई अच्छी साधना पर लगाने की बात करता है तो यूं सुनता नहीं बहरा हो जाए और उल्टी साधना इसने बता दे खुश होकर करता है। पेट पलनिए चलते देखे नू ये खट्टू श्याम जी पर जावे या कोई और जाते हम भी जाते थे साला सर तो वहां देखे नू लेट लेट के कौन ही फूट जा बेचारे की और उनको एक नो कहते ने कहा जा वहां सत्संग में नो ना उड़ा के दरिया है वहां क्या रखा है उसके लिए बता रहे हैं। अब आत्मा रो रही है कि मैं तो दे दी बालम बहरे नू इस मन रूपी पति के इस बहरे के साथ मेरा मेल कर दिया संसारी दी गल्ला चिन्ह ना बुझा समझ गहरे नू आम आदमी कोई बता दे वह साधना शुरू कर दे और इस यथार्थ ज्ञान को प्रमाण के सहित बताया जाता कि तीसने ना माने और मर्दों से ती प्रीत लगावे जैसे को बाबा जी मर गया गांव में 100 साल पहले पूरा माथा टेकन जाएंगे मारे समाज की पूजा है और जिंदे संत ना पूछे आगे पूछते। अब जैसे कोई वैद्य था और बहुत अच्छा वैद्य था नब्ज पकड़ के दवाई देता था स्वस्थ कर देता था अब वो मर गया मृत्यु होगी उसकी यादगार बना दी एक प्रतिमा बना दी। अब कोई उस मर्द के पास वैद्य के पास मत्था टेक कर जाकर मैंने ठीक कर दे स्वस्थ कर दे अब नहीं कर सकता वह मूर्ति कुछ नहीं कर सकती ऐसा ही वैद्य खोजना पड़ेगा कहां मिले फिर वो नब्ज देख के वो दवाई दे तब रो कटे। तो ऐसे ही संत ढूंढने पड़ेंगे उन वो संत बतावेंगे नो कहे उन संता की तो मानते नहीं मुर्दों से ती प्रीत लगावे नहीं जाने सतगुरु मेरे नू उस संत को नहीं समझता जो हर तरह से हर महरम से परिचित है जो तत्वदर्शी है यानी पूरा खोजी है उसका श्वेत छतर सिर मुकुट विराजे और देखत ना उस चेहरे सब ने निराकार निराकार पगाटा जोड़ रखे है विष्णु जी की पूजा करे मूर्ति बना रहे हर कोई नो कह कैसे भक्ति करता ध्यान मेडिटेशन करता हूं भगवान कैसा है वो तो निराकार है पर विष्णु जी की किस लिए पूजा करता जो भगवान विष्णु भगवान नहीं है। ऐसी बालका वाली छुरी थी हमारी बिना ज्ञान के कहते हैं श्वेत छतर उस परम पिता के ऊपर छतर है जैसे इस दास के ऊपर इन भक्तान बना रखे है ये तो अपना आर्टिफिशियल है श्वेत छतर और सिर मुकुट सिर पे मुकुट है और देखत ना उस चेहरे में साकार है वो परमात्मा सतलोक के अंदर ये निराकार निराकार बताने में कैखे का पता नहीं इनका कोई अनुभव नहीं है। श्वेत छतर सिर मुकुट विराज देखत ना उस चेहरे नू ऊंची थलियां खेती बो ये भूल रहे नजडेरे यानी कितना क्यों गरीबदास साहिब जी किसान थे और किसान लोग उनके आसपास आ जाया करते थे उनको उसी ढंग से यानी आम व्यक्ति को ही उन्होंने ज्ञान दिया है लेकिन उस समय जब ये बैठे हैं तो ऐसे व्यक्तियों को भी उसी तरीके से समझाने की चेष्टा की है जिससे वो समझ सकते हैं कि भी तुम ऊंची थलियां पर जाना पानी की व्यवस्था वर्षा हो जा तो बीज डाला जा सकता है अगर वर्षा ना हुई तो बीज भी खराब उसमें डाला हुआ ऊंचे थलों पर और एक डहर होती है समतल जमीन होती थी पहले साधन वर्षा का ही होता था सिंचाई का तो वर्षा थलियों पर वर्षा हुई भी उस डहर में आके जल रुकता था और जिसमें ज्यादा जल वर्षा का रुक जाता था उसमें ज्यादा उपज होती थी और वो डहर उपजाऊ जमीन होती थी थलियों पर तो मनमाने एक मण भी ना हो एक एकड़ में वो है तो एक दो मण हो जाए जब वर्षा ठीक होती रहे तो और डहर में हो जाए 40 मण 50 मण एक एकड़ में। तो कहते हैं तुम ऊंची थलियां यानी आन उपासना अन्य देवताओं की जो पूजा है वो ऊंची थली है और सतपुरुष परमात्मा की पूजा वो डहर है उपजाऊ स्थान है उसको तुम भूल गए जो घना धन दे यानी जिससे आपको अधिक लाभ। ऊंची थलियां खेती वो है ये भूल गए नज डेरे नू ये संसार समझदा नाही कहंदा श्याम दोपहरे नू जैसे कोई व्यक्ति
कोर्ट में मिल रहा है, किसी मित्र अपना कोई रिश्तेदार मिल जाता कचहरियों में, और दोनों आत्मा हाथ में लाग रहे, और ठीक है रिश्तेदार हकामोज हो रही है, कोर्ट में मौज का के महादुखी व्यक्ति जा रहे कोर्ट में गिग्गी बंदी रहे, कदे आज गवाह जा आज वो फलाना ना आवर कदे न्यू हो जा, और वहां भी नौका मौज हो रही है। कहते तुम कहन तक सीमित हो मौज की, अड़ा मौज नाम की चीज नहीं, आपकी तो ऐसी स्थिति है। कबीर ये माया अटपटी, कबीर ये माया अटपटी, सब गट आने अड़ी, किस किस ने समझाऊं या कुए बांग पड़ी। जैसे किसी ने एक मन बांग घोट कर कुएं में डाल दियो, और उस कुएं के जलने से दूसरे आदमी पी ले, पीते ही उनकी एक जैसी शकल एक्टिंग है, ऐसे लड़खड़ा कर चलना और एंड वेंड बोलना। कहते इस काल ने इस त्रिगुणमयी माया की भांग गेर दी 21 ब्रह्मांड में, और इसने ही पी कर तुम टीटी बने फिरो हाज। कबीर ये माया अटपटी, सब गट आन अड़ी, और किस किस ने समझाऊं या कुआ बांग पड़ी। जैसे कोई शराब पिए पड़ा था दो पैर से, जून के महीने में हरियाणा राजस्थान का स्थान, और धूप में पड़ा और पसीना पसीना जागा रे हैं, और सारा रेत में बुरा हाल हो रहा, और उसको कोई उठाता है कि उठ भाई तू यहां दुखी हो रहा है और गर्मी बहुत सता रही है, चल तुझे वृक्ष के नीचे बैठाता हूं। वो कहता ना जोड़ दे मौज आ रही है एक तरफ। तो आज हम इस स्थिति में, इस काल के लोक में, यहां पर किसी को सुख नाम की चीज नहीं चाहिए, प्रधानमंत्री बन रहा है, एक पल की भी चैन नहीं है, सारी पृथ्वी का राजा है। यदि किसी को सुख भी है तो इस परमात्मा की भक्ति सत भक्ति से यहां भी सुख है, और फिर परम सुख स्थान को प्राप्ति होगी। ये संसार समझदा नहीं कहदा श्याम दोपहरे नू, इस काल के लोक में इतना कष्ट उठा रहे हो ना, इससे मौज मान रहे हो तुम। गरीब दासी वक्त जाते है रोगे इस पैरे, ये मनुष्य जीवन एक बार आते छूट गया ना आपके, कहते कुत्ते की तरह रोया करो ऊपर न मुंह करके। गरीब दास ये वक्त जाते है रोगे इस पैरे नो, ये मनुष्य जीवन ऐसे बर्बाद हो गया, वक्षत भक्ति बनी नहीं, परम संत मिले नहीं, तो रोया करोगे इस समय को याद करके। फिर परमात्मा कहते हैं फिर क्या बनेगा, आछे दिन पाछे गए गुरु से किया ना हेत, अब पछतावा के एक रह जो चिड़िया चुकी खेत। जिस लोक में हम रह रहे हैं यह लोक काल भगवान का है, और हम अपनी अज्ञानता के कारण इस काल के साथ इस लोक में आ गए हैं। जो हमारे पुण्य थे वो इसने समाप्त करवा दिए, जो हमारी पूंजी हम सतलोक से साथ लेकर आए थे वो स्वर्ग के अंदर इसने विनाश करा दिए, उसके बाद इसने हमें यहाँ पृथ्वी पर पटक दिया। ये एक कैद है, एक जेल है, यहाँ पर रोके रखने के विधि तरीके इसके भिन्न हैं, और यहाँ इस काल के जेल की 3 जेलर बना रखे हैं इस काल ने, जो हमें यहाँ व्यवस्थित रखते हैं, इनके अपने अपने एक एक विभाग बांट रखे, जिस कारण से हम यहाँ इतने अज्ञानी हो गए, हमें अपने मूल स्थान की याद भी नहीं रही। इस काल भगवान ने, जिसको यहाँ ब्रह्म बोला जाता है, ब्रह्म कहा जाता है, इस ब्रह्म ने कोरा अज्ञान प्रकाश करवा दिया, अज्ञान का प्रचार करवा दिया, यथार्थ ज्ञान को छुपा दिया। परमेश्वर पूर्ण परमात्मा ने इस काल को 5 वेद दिए थे, 5वां वेद सूक्ष्म वेद है, उसको इसने समाप्त करा दिया, छुपा दिया, नष्ट कर दिया, और 4 वेद यहां प्रचार करवा दिए। वो 4 वेद हैं ऋग्वेद, यजुर्वेद, श्यामवेद और अथर्ववेद। इन 4 वेदों में केवल ब्रह्म तक की ही साधना का वर्णन है,
और जानकारी पूर्ण परमात्मा की है, जो समर्थ है, सर्वशक्तिमान है, जो सबका मालिक है, जिसने सारी सृष्टि रची है। उस परमात्मा के विषय में भी अत्यधिक जानकारी है, लेकिन वे ऑफ वर्शिप, पूजा की विधि इन चार वेदों में केवल ब्रह्म तक की है। तो इससे सिद्ध है कि ये चारों वेद इनकम्प्लीट हैं, अधूरे हैं। ये अधूरा ज्ञान हमारे को दे दिया और हम इस अधूरे ज्ञान को संपूर्ण ज्ञान मान के, और जैसा भी ऋषि महर्षियों ने निष्कर्ष निकाला अपने ही अनुभव से, उसी को आज तक हम सुनते सुनाते रहे। वेदों में प्रमाण है कि वो परमात्मा स्वयं ही चलकर आते हैं और अपने यथार्थ ज्ञान को वो स्वयं ही अपनी प्यारी आत्माओं को बताते हैं। फिर वो पुण्यात्मा अन्य अपने साथियों को, भाई बहनों को वो यथार्थ ज्ञान कराते हैं। लेकिन काल के दूत, काल के द्वारा प्रेरित संत ऋषि महर्षि मंडलेश्वर आचार्य, ये उस भ्रमित ज्ञान से अधिक भ्रमित रखते हैं और वो प्रचारक ज्यादा होते हैं। परमात्मा से परिचित व्यक्ति पुण्यात्माएं बहुत सीमित होती हैं, तो जिस कारण से वो यथार्थ ज्ञान जन साधारण तक नहीं पहुंच पाया, उसका मूल कारण ये रहा कि पहले सभी अशिक्षित हुआ करते थे। प्रत्येक युग में एक विधान बना दिया था इन ऋषियों ने, अपने आप ही एक विधान बना दिया कि ब्राह्मणों के बच्चे विद्या ग्रहण करेंगे, वो सदग्रंथों को समझेंगे और फिर उनका प्रचार, परमात्मा की महिमा अन्य जनता को वो बताया करेंगे। तो इस बात से सभी सहमत हो गए भी ठीक है, हम व्यवसाय करते हैं, अपना रोजगार में लगे रहते हैं, हमें इतना समय नहीं है पढ़ने का, अच्छी बात है। और जो परमात्मा की कथा प्रचार किया करते थे उनको वो अन्य वर्ण, तीन वर्ण, चार वर्ण बनाए थे, एक ब्राह्मण, वैश्य, अक्षत्रिय और शूद्र। ब्राह्मण वर्ग केवल शिक्षा ग्रहण करता था, तीन वर्ण उन्हीं ब्राह्मण वर्ण से सुने हुए ज्ञान को ही स्वीकार करते थे और उनको दक्षिणा दिया करते थे। ये रूटीन अभी तक चलता रहा। अब वो जितने भी ऋषि थे, ब्राह्मण थे, गुरु थे, वो तत्व ज्ञानहीन थे, क्योंकि ज्ञान कहां से प्रारंभ हुआ? ब्रह्मा जी से। ब्रह्मा जी के वंशज ब्राह्मण कहलाते हैं, वो ऋषि महर्षि कहलाए। और ब्रह्मा जी को स्वयं ज्ञान नहीं, ब्रह्मा जी स्वयं वेदों से अपरिचित, क्योंकि वेद, चारों वेद इनकम्प्लीट नॉलेज रखते हैं, इनकम्प्लीट ज्ञान है। और ब्रह्मा जी ने उन्हीं वेदों को पढ़ा और समझा जो इनकम्प्लीट अधूरा ज्ञान है, और साथ में हठ योग भी करते रहे। तो ब्रह्मा जी से विष्णु जी और ब्रह्मा जी से ही शिव जी ने अध्यात्म ज्ञान को ग्रहण किया। अपुण्यात्मा परमेश्वर की वाणी में आता है कि तीन लोक और भवन चतुर्दश कोई नहीं सत्संगी। सत्संगी का अर्थ होता है जिसके पास सच्चा ज्ञान हो, वो सत का साथी, और जिसके पास सत ज्ञान नहीं है, वो अधूरा ज्ञान है, तो वो सत का साथी यानी सत्संग नहीं रखता। परमात्मा कबीर जी ने अपनी वाणी बताया, सुर नर मुनि जन 33 करोड़ी बंधे सभी काल की डोरी। सुर देवता, नर आम व्यक्ति, और मुनि जन ये ऋषि महर्षि, कहते ये सभी काल की डोरी से बंधे हुए हैं, ये काल के ज्ञान से परिचित हैं, ये ब्रह्म को सुप्रीम पावर मानकर ओम नाम के जाप का सिमरण ध्यान करते रहे। और कुछ एक ऐसे रहे जो केवल अपने निष्कर्ष से, अब ज्ञान कैसे बिगड़ा, वेदों में केवल ओम नाम है और एक परमात्मा की साधना की तरफ संकेत है, निर्देश है, फाइनल है कि एक ही भगवान है जो सर्वशक्तिमान है, उसी की पूजा से पूर्ण मोक्ष होगा और वही पूजा के योग्य है, वही मोक्षदायक है, पाप कर्म नाशक है। साथ में ये भी लिखा है कि ओम नाम जो है ये
सिमरन करना चाहिए, ये ब्रह्म का जाप है। तो ऋषि महर्षि उसको ठीक से ना समझ कर ओम नाम को पूर्ण परमात्मा का मानकर इस ब्रह्म को कहीं पर ब्रह्म बोलते हैं, कभी इसको कहीं पूर्ण ब्रह्म बोलते हैं, कहीं अक्षर ब्रह्म बोलते हैं, लेकिन ये ओम मंत्र केवल ब्रह्म का है। जिस कारण से उन्होंने साधनाएं करते हुए भी कुछ उपलब्धि नहीं हुई, फिर जब ओम नाम के जाप से हठ योग करने से प्रभु प्राप्ति नहीं हुई तो फिर विचलित हो गए। अपने अनुभव से बता दिया कि परमात्मा निराकार है, जबकि वेदों में और सदग्रंथों में और जिन महापुरुषों ने परमात्मा का साक्षात्कार हुआ उन्होंने बताया कि परमात्मा साकार है, मनुष्य दृश्य है, लेकिन उनका तेज, उनके शरीर की जो चमक है वो असाधारण है, लेकिन है मनुष्य जैसा ही। तो पुण्यात्माओं, इस प्रकार फिर ये उस साधना को छोड़कर अन्य साधनाएं करने लगे और जिसको जैसा भी अनुभव हुआ उसी को आधार मानकर उन्होंने अपना कोई इष्ट चुनकर साधनाएं करते रहे और काल के जाल में फंसे रहे।

0: आप सुन रहे थे जगतगुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222880541।
1: प्रोग्राम का यह हिस्सा तुहाडे तक M&R रूफिंग एंड साइटिंग लिमिटेड के सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो किसी भी तरह की रूफिंग, साइडिंग, स्टुको, सॉफ्ट फिश या स्मार्ट रिम, फ्लैट रूफ अते रेनोवेशन बारे कोई भी जानकारी लैण लई तुसी रंजीत विर्क जी नूं 403-903-0483 यानी 403-903-0483 ते संपर्क कर सकते हो। M&R रूफिंग एंड साइडिंग लिमिटेड। प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक HMP कस्टम कैबिनेट्स दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो किसी भी तरह दे कस्टम किचन, बार्स, वॉशरूम वैनिटी, क्लोजेट अते कमर्शियल मिल वर्क बारे कोई भी जानकारी लैण लई तुसी पॉल सेखो जी नूं 403-829-5000 या फिर 403-701-4947 ते संपर्क कर सकदे हो। HMP कस्टम कैबिनेट्स लिमिटेड दा पता है यूनिट नंबर 11 2316 27 एवेन्यू नॉर्थ ईस्ट कैलगरी। प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक पंजाब इंश्योरेंस दे हरपिंदर सिंह सिद्धू दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो किसी भी तरह दी लाइफ इंश्योरेंस जा विजिटर इंश्योरेंस बारे कोई भी जानकारी लैण लई तुसी हरपिंदर सिद्धू जी नूं 403-404-3500 यानी 403-404-3500 ते संपर्क कर सकते हो। पंजाब इंश्योरेंस तो हरपिंदर सिंह सिद्धू। प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक मालवा टायर्स एंड सर्विसेज दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। ए 24 घंटे 7 दिन मोबाइल सर्विसेज प्रदान करदे ने। इना तो किसी भी तरह दे नवे ते पुराने ट्रक एंड ट्रेलर टायर्स, व्हील बैलेंस एंड अलाइनमेंट, टायर रोटेशन एंड रिपेयर्स दिया सेवावां लैण लई तुसी मालवा टायर्स नूं 403-899-1985 जां फिर 403-899-1984 ते संपर्क कर सकते हो। मालवा टायर्स एंड सर्विसेज दा पता है बिल्डिंग नंबर 8616 44th स्ट्रीट साउथ ईस्ट कैलगरी।
2: सत साहिब, क्या आप अपने जीवन में सुख, शांति और समाधान चाहते हैं? क्या आप नशा, पारिवारिक कलह और जीवन की परेशानियों से मुक्ति पाना चाहते हैं? तो अवश्य पढ़ें जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित अनमोल पुस्तकें ज्ञान गंगा, जीने की राह व गीता तेरा ज्ञान अमृत। ये सभी पुस्तकें पंजाबी, उर्दू, मराठी व अन्य भाषाओं में भी उपलब्ध है। ये पुस्तकें पूर्ण परमात्मा, सच्ची भक्ति विधि और मोक्ष का मार्ग सरल भाषा में समझाती हैं। लाखों लोगों ने इन्हें पढ़कर अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव पाया है। कनाडा में ये पुस्तकें बिल्कुल निःशुल्क मंगवाने के लिए आज ही हमारी वेबसाइट jagatgururampalji.org पर जाएं या 306-581-8061 पर संपर्क करें।
3: पूर्ण परमात्मा पाप कर्म दंड को भी काट सकता है। अभी तक जिस भी संत व महापुरुष से मिले उन्होंने यही बताया कि पाप कर्म फल भोगने से ही समाप्त होगा। वो प्रभु कौन है जो पाप कर्म को काट देता है, वो काल के बंधन से छुड़वा देता है, उसका क्या नाम है, पूजा की विधि क्या है? कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन।
4: अब आपको थोड़ी सी झलक देंगे श्रीमद् देवी भागवत से। यह श्रीमद् देवी भागवत गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। संपादक हनुमान प्रसाद पोदार चिमन लाल गोस्वामी, प्रकाशक एवं मुद्रक हैं गीता प्रेस गोरखपुर गोविंद भवन कार्यालय कोलकाता का संस्थान। इस पर आपको दिखाते हैं विष्णु जी को कितना ज्ञान था, ब्रह्मा जी को कितना ज्ञान था। वर्ष 28 28 पर पहला सकल। ये नारद जी और व्यास जी जो इन पुराणों के राइटर हैं, व्यास जी ये दोनों डिस्कस कर रहे हैं। नारद जी से व्यास जी पूछ रहे हैं, नारद जी बता रहे हैं। नारद जी ने कहा, महाभाग व्यास जी तुम इस विषय में जो पूछ रहे हो ठीक ही प्रश्न मेरे पिताजी ने भगवान श्री हरि से किया था, यानी विष्णु जी से किया था। देवा अधिदेव भगवान जगत के स्वामी है। अब नारद जी के ज्ञान का भी पता लग जाएगा इसमें, ये विष्णु जी को देवा अधिदेव यानी भगवानों के भगवान जगत के स्वामी कह रहे हैं। लक्ष्मी जी उनकी सेवा में उपस्थित रहती हैं, दिव्य कौस्तुभमणि उनकी शोभा बढ़ाती है, वे शंख चक्र गदा लिए रहते हैं, पीताम्बर धारण करते हैं, चार भुजाएं हैं, वक्ष स्थल पर श्री वत्स का चिन्ह चमकता रहता है, वे चराचर जगत के आश्रयदाता हैं, जगत गुरु हैं। विष्णु जी को जगत गुरु कह रहे हैं कुन नारद जी, एवं देवताओं के भी देवता हैं। ऐसे जगत प्रभु भगवान श्री हरि महान तप कर रहे थे, उनकी समाधि लगी थी। यह देखकर मेरे पिता ब्रह्मा जी को बड़ा आश्चर्य हुआ, अतः उन्होंने उनसे जानने की इच्छा प्रकट की। ब्रह्मा जी ने पूछा, प्रभो आप देवताओं के अध्यक्ष, जगत के स्वामी और भूत भविष्य एवं वर्तमान सभी जीवों के एकमात्र शासक हैं, भगवान फिर आप क्यों तपस्या कर रहे हैं और किस देवता की आराधना में ध्यान मगन है, आप किस भगवान की पूजा कर रहे हो? मुझे असीम आश्चर्य तो यह हो रहा है कि आप देवेश्वर एवं सारे संसार के शासक होते हुए भी समाधि लगाए बैठे हो। ब्रह्मा जी के विनित वचन सुनकर भगवान श्री हरि उनसे कहने लगे, ब्रह्मन सावधान होकर सुनो, मैं अपने मन का विचार व्यक्त करता हूं। देवता दानव मानव सब यही जानते हैं कि तुम सृष्टि करते हो, मैं पालन करता हूं और शंकर संहार किया करते हैं, किंतु फिर भी वेद के पारगामी पुरुष अपनी युक्ति से यह सिद्ध करते हैं कि रचने पालने और संहार करने की यह योग्यता जो हमें मिली है इसकी अधिष्ठात्री शक्ति देवी है। सुवर्त प्रत्यक्ष और परोक्ष दोनों उदाहरण मैं तुम्हारे सामने रखता हूं, सुनो। यह निश्चित है कि उस शक्ति के अधीन होकर ही मैं इस शेष नाग के सैया पर सोता और सृष्टि करने का अवसर आते ही जाग जाता हूं। मैं सदा तप करने में लगा रहता हूं, उस शक्ति के शासन से कभी मुक्त नहीं रह सकता। कभी अवसर मिला तो लक्ष्मी के साथ सुखपूर्वक समय बिताने का सौभाग्य प्राप्त होता है। मैं कभी तो दानों के साथ युद्ध करता रहता हूं, अखिल जगत को भय पहुंचाने वाले दैत्यों के विकराल शरीरों को शांत करना मेरा परम कर्तव्य हो जाता है। अब ये क्या बता रहे विष्णु जी के, मैं सदा तप करने में लगा रहता हूं और फिर थोड़ा बहुत समय मिला तो लक्ष्मी के साथ सुखपूर्वक समय व्यतीत करता हूं, फिर उसके बाद तप करके बैटरी चार्ज कर लेता है, ये कुछ सिद्धियां प्राप्त कर लेता है विष्णु जी, उस सिद्धियों को फिर समाप्त कर देता है, राक्षसों को मार कर पाप इकट्ठे कर देता है, मेरा परम कर्तव्य हो जाता है। यहां बताया मुझे विष्णु जी कह रहे मुझे सब प्रकार से शक्ति के अधीन होकर रहना पड़ता है, दुर्गा के उन्हीं भगवती शक्ति का यानी दुर्गा का उन्हीं भगवती शक्ति का मैं निरंतर ध्यान किया करता हूं। ब्रह्मा जी मेरी जानकारी में यानी मेरे धार्मिक नॉलेज में, स्पिरिचुअल नॉलेज में, मेरे आध्यात्मिक ज्ञान में मुझे जितना ज्ञान है, मेरी जानकारी में इस भगवती शक्ति से बढ़कर दूसरे कोई देवता नहीं। अपने आत्मा ब्रह्मा विष्णु और नारद और व्यास जी के ज्ञान का ये पर्दा उठ गया कि ना तो ब्रह्मा जी ने कह कहेगा पता भक्ति के बारे में, क्योंकि वो विष्णु जी को सर्वेश्वर महेश्वर सब देवों के देव जगत के स्वामी सबका मालिक

मेरी पूजा भी छोड़ दो। इसे सिद्ध है कि ना तो ब्रह्मा ने ज्ञान ना विष्णु जी को। आगे देखिए 562 पृष्ठ पर श्री संक्षिप्त देवी भागवत में सातवां स्कंद 562 पृष्ठ पे ये दुर्गा हिमालय को ज्ञान दे रही है। देवी द्वारा हिमालय को ज्ञानोपदेश ब्रह्म स्वरूप का वर्णन यानी ब्रह्म के बारे में जानकारी दे रही है। श्री देवी जी कहने लगी पर्वतराज, अब ये तो पहले तो यहां तक तो अपने विषय बता रही, फिर कहती है कि उस ब्रह्म का क्या स्वरूप है यह बतलाया जाता है, जो प्रकाश रूप सबके अत्यंत समीप में स्थित हृदय रूप गुहा में स्थित होने के कारण गुहाचर नाम से प्रसिद्ध और महान पद अर्थात परम प्राप्य है। वह समस्त प्रजा के ज्ञान से परे है, अर्थात किसी की बुद्धि में आने वाला नहीं है, यह तुम जानो। जो परम प्रकाश रूप है, जो सूक्ष्म से भी अत्यंत सूक्ष्म है, जिसमें संपूर्ण लोक और उन लोकों में निवास करने वाले प्राणी हैं, वही यह अक्सर ब्रह्म है। अब देखो यहां से कहन लगी थी या ब्रह्म के बारे में बताऊंगी, ब्रह्म स्वरूप का वर्णन है, और ये क्या कह रही है, अक्सर ब्रह्म है और वही सबके प्राण है, वही सबकी वाणी है और वही सबके मन है, वही परम सत्य है और अमृत अविनाशी तत्व है। सौम्य उस वेदने योग लक्ष्य का तुम वेदन करो और मन लगाकर उसमें तन्मय हो जाओ। सौम्य उपनिषद में कथित महान अस्त्र रूप धनुष लेकर उस पर उपासना द्वारा तीक्ष्ण किया हुआ बाण संधान करो। भावानुगत चित्त के द्वारा उस बाण को खींचकर उस अक्षर रूप ब्रह्म को लक्ष्य बनाकर वेधन करो। अब क्या बताते हैं, महिमा तो गा रही है अक्षर ब्रह्म की और नाम बता रही है ब्रह्म का। परवण ओम धनुष है, जीवात्मा बाण है और ब्रह्म को उसका लक्ष्य कहा जाता है। अभी सब उवा बाई बांध रहे हैं, यहां अक्षर ब्रह्म कह रही है, यहां केवल ब्रह्म का ओम नाम है बस। आगे देखो, उस एकमात्र परमात्मा को ही जाने, दूसरी बातों को छोड़ दे, यानी मेरी पूजा भी छोड़ दो, दुर्गा कह रही है, और केवल उसी परमात्मा का जानो जिसका ओम नाम है। यही अमृत रूप परमात्मा के पास पहुंचाने वाला पुल है। संसार समुद्र से पार होकर अमृत रूप परमात्मा को प्राप्त कराने का इस सुलभ साधन है। जिस प्रकार इस आत्मा का ब्रह्म के जप के साथ ध्यान करो, ओम के यानी उस आत्मा ब्रह्म का, ब्रह्म के बारे में बता रहे हैं, इस आत्मा का यानी ब्रह्म का ओम के जप के साथ ध्यान करो। अब ये गुण तो गा रही है अक्षर ब्रह्म के और मंत्र बता रही है ओम ब्रह्म का, यह स्पष्ट कर रही है कि इससे अज्ञान में अंधकार से सर्वथा परे और संसार समुद्र से उस पार जो ब्रह्म है उसको पा जाओगे, यानी ओम नाम के जाप से ये कह रही है कि उस ब्रह्म को प्राप्त हो जाओगे, तुम्हारा कल्याण हो। और वो कहां रहता है, वह सबका आत्मा, वह यह सबका आत्मा ब्रह्म, ब्रह्मलोक रूप दिव्य आकाश में स्थित है। यह ब्रह्म लोक में रहता है यो ब्रह्म, और ओम नाम के जाप से उसके पास पहुंच जाओगे ब्रह्म लोक में। ये दुर्गा का ज्ञान है जो हिमालय को बता रही है, और विष्णु भगवान कह रहे हैं कि मैं दुर्गा से ऊपर किसी देवता ने जानता ही नहीं। दुर्गा कह रही है कि उस कह रही है ब्रह्म का जाप करो, उसका ओम नाम है, नथिंग एल्स। उससे क्या होगा कि ब्रह्म लोक में चले जाओगे। गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 16 में कहा है कि ब्रह्म लोक पर्यंत सभी पुनरावर्ती में है, पुनरावर्ती यानी बार बार आने और जाने का जो चक्कर है। ब्रह्म लोक में गए प्राणी भी पूर्ण मोक्ष प्राप्त नहीं करते, उनकी भी जन्म और मृत्यु होती रहती है। पुण्यात्माओं, गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1 से 4 में कल आपको

लिखा, उसमें लिखा है कि जब तत्वदर्शी संत मिल जाए, उसकी ये पहचान है कि संसार रूपी वृक्ष के वो सभी अंगों को भिन्न भिन्न प्रकार से विस्तार से बताएगा, वो तत्वदर्शी संत होगा। उसके बाद फिर उस परमेश्वर के परम पद की खोज करनी चाहिए, जहां जाने के बाद प्राणी फिर लौटकर कभी संसार में नहीं आते, अर्थात उनका पूर्ण मोक्ष हो जाता है। गीता ज्ञानदाता कह रहा है, गीता ज्ञानदाता 18वें अध्याय के 62वें श्लोक में कहता है कि अर्जुन को सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, उसकी कृपा से ही तुम परम शांति को, परम शांति जीव को परम शांति उस समय होगी जब इसका जन्म और मृत्यु का रोग कट जाएगा, और सतलोक के अंदर जाने के बाद वहां कोई कष्ट नहीं, किसी प्रकार की कोई टेंशन नहीं, और वहां जाकर के जरा और मरण दोनों नष्ट, युवा शरीर रहेगा और कभी मृत्यु नहीं होगी, राग द्वेष नहीं, बाहि बंटवारा नहीं, नेक आत्माएं होती हैं जो आपस में वहां झगड़ा भी नहीं होता, सब भरे भंडार है भगवान के दरबार में, कोई काम नहीं। गीता जी माता है कि नैष्कर्मे जो सिद्धि है, उपलब्धि है, वो सतलोक में ही प्राप्त होगी, और उसकी साधना यहाँ तीन मंत्र के जाप से। गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 1 में अर्जुन ने पूछा, प्रभु आपने अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 29 में जिस तत्वर्म के बारे में बताया है, कहा है कि उसके जानने के उपरांत तो प्राणी केवल जरा और मरण के मोक्ष के लिए ही प्रयत्न करता है, अर्थात वो फिर यहां संसार की कुछ भी वस्तु की इच्छा नहीं करता, यहां से छुटकारा ही चाहता है, तो किम तत्वर्म, वो तत्वर्म क्या है? गीताजी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 3 में कहा कि वो परम अक्षर ब्रह्म है। गीताजी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 13 में गीता ज्ञान दाता कहता है, मेरा तो एक ओम अक्षर है, ओम इति एक अक्षरम ब्रह्म विवहरण माम अनुसमरण ये प्रयाति तजंदेहम सयाति परमाम गति। मुझ ब्रह्म का एक ओम अक्षर है, उच्चारण करके स्मरण करता हुआ जो व्यक्ति शरीर त्याग कर जाता है वो ओम नाम से होने वाली परम गति को प्राप्त होता है। और गीता जी अध्याय नंबर 17 के श्लोक नंबर 23 में उस सच्चिदानंद घन ब्रह्म के पाने का, ये तीन मंत्र का जाप, इसमें ओम भी इंक्लूड है, ओम तत् सत, ओम तो क्लियर है, तत् और सत ये सांकेतिक है, ओम और तत् वो सांकेतिक शब्द मिलकर ये सतनाम बनता है, सच्चा नाम बनता है सतनाम, सत शब्द जो सत है वो सार नाम है, वो सार नाम मिलकर तीन मंत्र का यू जाप इकट्ठा ही हो जाता है। तो उस सच्चिदानंद घन ब्रह्म, उस परमेश्वर की शरण में जाने के लिए, पूर्ण मोक्ष प्राप्त करने के लिए, जरा मरण से छुटकारा पाने के लिए, तत्वदर्शी संत द्वारा बताए गए उस तीन मंत्र के जाप का स्मरण करे, रटना लावे, तब उसका पूर्ण मोक्ष होगा। यानी व्यास जी कह रहे हैं, ब्रह्मा जी श्रेष्ठ, ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि विष्णु जी सर्वशक्तिमान सबसे उत्तम, विष्णु जी कह रहे हैं मैं दुर्गा से ऊपर कोई देवता भगवान नहीं जानता, दुर्गा कह रही है ब्रह्म फाइनल गॉड, उसका ओम नाम ब्रह्म लोक में रहता है, और वेद और गीता जी, वेदों का सारांश है गीता जी, श्रीमद् भगवत गीता वेदों का सारांश है, और उसमें बताया कि ओम नाम है ब्रह्म का, और ओम नाम के जाप से ब्रह्मलोक प्राप्ति होती है। 8वें अध्याय के 16वें श्लोक में लिखा है कि ब्रह्मलोक पर्यंत भी गए हुए वापस जन्म मृत्यु को आते हैं, और ब्रह्म कहता है कि उस परम अक्षर ब्रह्म की पूजा करो, जब पूर्ण मोक्ष चाहिए तय, उसकी जानकारी तत्वदर्शी संत बताएंगे, ना वेदों में वर्णित, ना गीता जी वर्णित, ना किसी अन्य ऋषि के पास ही ज्ञान, और वो तत्वदर्शी संत स्वयं परमात्मा ही आते हैं। सतयुग के ऋषियों के ज्ञान, और वो ऋषि जी क्या ज्ञान रखते थे देखिएगा 414 पे। अब प्रसंग चल रहा है कि सुर नर मुनिजन 33 करोड़ी बंदे सभी काल की डोरी, ये है 6वां स्कंध संस्कृत देवी भागवत 414 पृष्ठ पे। जन्मे जय ने पूछा महाभाग किस युग में कैसा धर्म का स्वरूप है, व्यास जी से पूछ रहे हैं, इस संपूर्ण विषय को विशेष रूप से बताने की कृपा कीजिए। व्यास जी बोले, राजन यह निश्चय है कि सतयुग में ब्राह्मण वेद के पूर्ण विद्वान थे। अब व्यास जी के ज्ञान की पोल खुलेगी, वो नो कह रहे हैं कि सतयुग के ब्राह्मण वेद के पूरे ज्ञाता थे,
और उनके द्वारा निरंतर भगवती जगदम्बा की आराधना होती थी। वह भी दुर्गा की पूजा किया करते थे और वेद के ज्ञाता थे। वेदों में और गीता जी में कितने भी दुर्गा की पूजा का प्रावधान नहीं है। भगवती का दर्शन करने के लिए उनका मन सदा ललायत रहता था। धर्म की यही सतीची त्रेता में रही, परंतु कुछ हरास हो गया था। सतियों की जो सतीची थी वह द्वापर में विशेष रूप से कम हो गई थी। राजन, उन प्राचीन युगों में जो राक्षस समझे जाते थे वे ईव कलयुग के ब्राह्मण माने जाते हैं। ओ तेरा गजब भैया, क्योंकि अब के ब्राह्मण प्राय पाखंड करने में तत्पर रहते हैं। दूसरों को ठगना, झूठ बोलना और वैदिक धर्म कर्म से अलग रहना कलयुगी ब्राह्मणों का स्वाभाविक गुण हो गया है, बन गया है। अब पुण्य आत्माओं, परमात्मा ने 600 वर्ष पहले यह संघर्ष किया था। इस ज्ञान को यहां अपना एक बीज रूप में छोड़ गए थे, यथार्थ ज्ञान को। उस समय के इन नकली ब्राह्मणों ने, इन राक्षस रूपी ब्राह्मणों ने, दास नहीं कह रहा, देवी भागवत बता रही है कि कलयुग के ब्राह्मण सतयुग त्रेता द्वापर के राक्षसों के समान है। और उन्होंने कैसा जुल्म किया परमात्मा के साथ, कबीर जी के साथ, जो हमारे को यथार्थ ज्ञान देने स्वयं भगवान आए थे, और उस ज्ञान को इन्होंने हम तक नहीं आने दिया। आप जी ने कल गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 32 में पढ़ा था कि जो अन्य साधनाएं जो करते हैं, कोई ऐसी करता है, कोई कैसे कर रहा है, कोई कुछ करता है, आध्यात्मिक मार्ग में जो वो लगे हुए हैं, वो अपनी अपनी क्रियाओं को, अपनी अपनी साधनाओं को पाप नाश करने वाली जानकर कर रहे हैं। और उनको ये पता लग जाए कि पाप नाशक नहीं है तो उसी दिन छोड़ देंगे वो। तो उस तरह उस सचिदानंद घन ब्रह्म ने जो स्वयं परमात्मा आए थे, स्वयं परमात्मा आते हैं और वो जो ज्ञान देते हैं, वो फिर अपनी मुखारविंद से उच्चारण करते हैं वो यथार्थ ज्ञान को, और उस ज्ञान के अंदर बहुत विस्तार के साथ कौन सी साधना करनी चाहिए, कौन सी ना करनी चाहिए, वो विशेष विस्तार से बताई गई है। उस ज्ञान को चौथे अध्याय के 34वें श्लोक में कहा कि उस ज्ञान को तू तत्वदर्शी संतों के पास जाकर समझ, फिर वो बताएंगे तेरे को यथार्थ ज्ञान। अपनी आत्मा, अब काल ने ये दूत भेजे थे इस बोली आत्मा और श्रद्धालुओं को मिसगाइड करने के लिए। उसको पता था कि कलयुग में परमात्मा ने कहा है कि हम अपना ज्ञान दे करके अपनी प्यारी आत्माओं को सतलोक ले जाएंगे। काल ने कहा था कि इस कलयुग में ऐसे कर दूंगा इनको, कोई भक्ति के योग्य नहीं रहेंगे, इतना ज्ञान ठोक दूंगा कलयुग के अंदर, इतने विभाजन कर दूंगा मानव के। अब 36 तो मजो बना दिए और ना जाने कितने नकली पंथ चला दिए, लेकिन परमात्मा को पता था कि वो सभी पंथों की अज्ञान की अंपोल खोल देंगे, और जब जिसकी पिटारी में, जिसकी बोरी में जिसका माल होगा वो खुलकर सामने आ जाएगा, और वो बढ़िया माल साथ में होगा, डेरी लगा दी जाएगी, तो अपने आप ही समझ जाएंगे कि यो माल अच्छा है, यो गलत है, ग्रहण कर लेंगे। और इस युग में शिक्षा देना परमात्मा कबीर जी के लिए अनिवार्य था। और शिक्षा का सबसे बड़ा दुर्गुण है कि इसमें ये बेईमान बनाती है जीव को, विकारों का घर बना देती है। सतयुग त्रेता द्वापर में ये एक अवगुण एक ही वर्ग में था, ब्राह्मण वर्ग में, और वो इतने छल कपट, झूठ कपट के सहारा लेकर के अपना जीवन बर्बाद करते रहे और साथ में अन्य यजमानों को भी मिसगाइड करते रहे अपने लालच और लोभ में। वो विद्वान होने करके एक दूसरे की टांग भी खींचते थे, अपने आप को विद्वान सिद्ध करने के लिए चतुरता प्रयोग करते थे। परमात्मा कहते हैं कि इस विद्या में अवगुण बहुत है, लेकिन इसमें एक ही गुण है, इसमें एक ही गुण परमात्मा ने हमारे लिए रखा है कि हम सदग्रंथों को स्वयं पढ़ सकेंगे और उनके गुण रहस्यों को स्वयं समझकर भगवान पहचान लेंगे। और जब हम भगवान से परिचित हो जाएंगे फिर हमारे लिए शिक्षा भी हानिकारक नहीं रहेगी, माया की दौड़ नहीं रहेगी,
भगवान हमें बगैर दो नंबर का काम करे ही बहुत ज्यादा धन देते रहेंगे, क्योंकि हमारी भक्ति मार्ग ऐसा है, तो फिर हमने किसी प्रकार का कोई विकारकरण की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। तो पुण्यात्माओं, तो वेद बताते हैं कि वो परमात्मा कैसी लीला करता है। कबीर परमेश्वर है, वो कबीर देव है, हम उसको कबीर साहब कहे, कबीर देव कहो चाहे साहब कहो, राम कहो, भगवान कहो, वेदों में उसे कबीर देव कहा है। कहीं पर कवि सीधा शब्द भी लिखा है तो वो कवि काव्यकार के लिए होता है, और एक भाषा भाषा का अंतर होता है। जैसे फारसी भाषा में कबीरन लिखते हैं कबीरन, या कबीरा लिखते हैं या खबीरा लिख देते हैं, तो वो परमात्मा के उस यथार्थ नाम की तरफ ही संकेत है। ऐसे ही कबीर देव वेदों में लिखा है। तो वो कबीर परमात्मा क्या लीला करता है, ये तो वेद बता रहे हैं, और वो 600 वर्ष पहले ऐसी लीलाएं करके चले गए, सतयुग में की, त्रेता में की, द्वापर में ये लीलाएं की, ये ज्ञान दिया, लेकिन सतयुग त्रेता द्वापर का दिया हुआ ज्ञान नहीं रहा। अब कलयुग में फिर आकर परमात्मा ने दिया, वो ज्ञान समाप्त करवा देते थे ये नकली ऋषि, कबीर जी के ज्ञान को नष्ट करा देते रहे सतयुग त्रेता द्वापर तक। अब कलयुग में ये हमारे पास उपलब्ध है, कुछ दिनों में इसका भी ये विनाश करा देते। तो 600 वर्ष पहले परमेश्वर ने जो लीलाएं की कि वो परमात्मा सतलोक से चलकर आए, एक धर्मदास नाम के महापुरुष पुण्यात्मा थी कि भगवान के लिए भटक रहे थे, तीर्थ करते फिर रहे थे, श्री कृष्ण जी के पुजारी थे, उनको मिले यथार्थ ज्ञान दिया, फिर धर्मदास जी ने उसके बाद वो सत साधना की। वही परमात्मा दादू साहेब जी को मिले, राजस्थान के अंदर दादू साहेब जी थे जयपुर के पास, वहां परमात्मा आए, सतलोक से चलकर आए, 7 वर्ष के दादू जी बालक थे, बच्चों में खेल रहे थे, वहां उनको एक बूढ़ा बाबा के रूप में मिले, सतलोक लेकर गए उसकी आत्मा को। पीछे से वो 3 दिन 3 रात तक अचेत पड़े रहे दादू जी का शरीर, तीसरे दिन वापस उनकी आत्मा आई तो उन्होंने कबीर जी की कलम तोड़ महिमा गाई। ऐसे गरीबदास साहेब जी छुड़ानी गांव जिला झज्जर वर्तमान में हरियाणा, तो वहां परमात्मा सशरीर आए, सतलोक से चलकर आए, एक जिंदा महात्मा, बूढ़ा बाबा का एक जिंदा महात्मा के रूप में, जिंदा संत के रूप में, मुसलमान में होते जिंदा, जैसे कोई अलग अलग वेशभूषा होती है उनको अलग अलग भेख बोलते हैं, जिंदा महात्मा होते हैं, एक ओवर कोट सा पहनते हैं काला सा घुटनों के नीचे तक का, एक अंडरवियर पहनते हैं, सिर पर एक टोप पहनते हैं, इस पर दाढ़ी और सिर के बाल बड़े बड़े होते हैं, इस वेशभूषा वाले को जिंदा महात्मा कहते हैं। तो परमात्मा जिंदा के वेशभूषा में, गरीबदास जी 10 वर्ष के थे, गौवें चरा रहे थे खेतों में, और भी बहुत से पाली गवाले थे, वहां गरीबदास जी आपको आकर मिले, सतलोक लेकर गए, वहां उन्होंने सब ब्रह्मंडों की जानकारी दी, अपनी यथार्थता बताई, वहां सतलोक में दर्शन दिखाए, गरीबदास जी के शव की अंतिम संस्कार करने की तैयारी कर दी थी, चिता पर रख दिया गया था मृत जानकर, इतने में आत्मा वापस भेज दी परमात्मा ने। खड़े हो गए गरीबदास जी, फिर ये वाणी बोलन लग गए जो परमेश्वर ने उनके हृदय में फीड कर दी थी कबीर जी ने, तो वही वाणी आज परमात्मा कबीर जी की महिमा से ओतप्रोत है, गरीबदास जी के द्वारा लिखी गई, बोली गई, और एक गोपाल दास नाम के एक दादूपंथी महात्मा संत के द्वारा वो लिखी गई, आज हमारे पास उपलब्ध है। तो वो परमात्मा ऐसी लीलाएं करते हैं, अपनी प्यारी आत्माओं को मिलते हैं, अपना यथार्थ ज्ञान बताते हैं।

0: आप सुन रहे थे जगतगुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222880541।
1: गैलग्रीज इको एक धार्मिक रेडियो पंजाबी रेडियो 102.7 FM जिथे 24 घंटे सत्तो दिन बहुत सारे धार्मिक प्रोग्राम पेश कीते जांदे ने। इना प्रोग्रामा नू स्पॉन्सर करन लई तुसी पंजाबी रेडियो 102.7 FM नू 403-238-6867 यानी 403-238-6667 ते संपर्क कर सकते हो। सुनते रहो पंजाबी रेडियो 102.7 FM कैलगरी।

0: प्रोग्राम का यह हिस्सा तुहाडे तक परमजीत पलाहा डेजर्डिन इंश्योरेंस एजेंट के सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है।
1: इना तो किसी तरह की इंश्योरेंस जिवें लाइफ डिसेबिलिटी ऑटो होम मोटरबाइक बोट अते होर बिजनेस इंश्योरेंस बारे जानकारी लैण लई तुसी परमजीत पलाहा जी नूं 403-554-4444
0: यानी 403-554-4444 ते संपर्क कर सकते हो। परमजीत पलाहा जी दे ऑफिस का पता है यूनिट नंबर 210-2332 32nd Avenue North ईस्ट कैलगरी। प्रोग्राम का यह हिस्सा तुहाडे तक कैसडी हे इंजरी लॉ तो तारा कैसडी जी दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इन्हां तो किसी भी तरह दे मोटर व्हीकल एक्सीडेंट इंजरी क्लेम बारे कोई भी जानकारी लैण लई तुसी तारा कैसडी जी नूं 403-770-1099 यानी 403-777-1099 ते संपर्क कर सकते हो। कैसडी हे इंजरी ला दा पता है यूनिट नंबर 1507 14 एवेन्यू साउथ वेस्ट कैलगरी।

प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक फेयरडील फर्नीचर दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। किसी भी तरह दे मॉडर्न ट्रेडिशनल कस्टमाइज्ड फर्नीचर दी जानकारी ले पिछले 33 सालां तों कैलगरी विच सेवावां दे रहे फेयरडील फर्नीचर नूं कॉल करो 403-250-5646 403-250-5646। इना दा पता है 2023 34th स्ट्रीट नॉर्थ ईस्ट कैलगरी। प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक YYC होम केयर सर्विसेज दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। ए किसे भी उम्र तो लैके बुजुर्गां तक दी घर विच रह के संभाल करदे ने। इना दे एक्सपीरियंस्ड पंजाबी केयर गिवर्स डेली एक्टिविटीज जिवें नवाउणा, दवाई देना, अपॉइंटमेंट्स ते लैके जाना या सफाई विच मदद करदे ने। तुहानू जेब विचों कोई भी खर्चा नहीं आएगा, ए सिद्धा सरकार नू बिल करदे ने। होर जानकारी लई कॉल करो 825-760-0983 825-760-0983।

0: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक HMP कस्टम कैबिनेट्स दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो किसी भी तरह दे कस्टम किचन बार्स वॉशरूम वैनिटी क्लाजेट अते कमर्शियल मिल वर्क बारे कोई भी जानकारी लैण लई तुसी पॉल सेखों जी नूं 403-829-5000 या फिर 403-701-4947 ते संपर्क कर सकते हो। HMP कस्टम कैबिनेट्स लिमिटेड दा पता है यूनिट नंबर 11-2316 27 एवेन्यू नॉर्थ ईस्ट कैलगरी।
1: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक कैनेडियन स्क्रू पाइल्स दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। होम एक्सटेंशन, पैटियो डेक, प्रीकास्ट कंक्रीट स्टेप अते किसी भी तरह दी सॉफ्ट ग्राउंड जिमें गैराज फ्लोर दे स्ट्रॉन्ग अते सिक्योर बेस लई स्क्रू पाइल्स इंस्टॉल कराउण लई जसकरन बराड नूं कॉल करो 403-439-7700 403-439-7700

0: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक मालवा टायर्स एंड सर्विसेज दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। ए 24 घंटे सत्तो दिन मोबाइल सर्विसेज प्रदान करदे ने। इना तो किसी भी तरह दे नवे ते पुराने ट्रक एंड ट्रेलर टायर्स, व्हील बैलेंस एंड अलाइनमेंट्स, टायर रोटेशन एंड रिपेयर्स दीयां सेवावां लैण लई तुसीं मालवा टायर्स नूं 403-899-1985 जां फिर 403-899-1984 ते संपर्क कर सकते हो। मालवा टायर्स एंड सर्विसेज दा पता है, बिल्डिंग नंबर 8616, 44th स्ट्रीट, साउथ ईस्ट, कैलगरी।
1: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक रासा प्लेडियम दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। फैमिली डिनर, केटरिंग, स्मॉल बर्थडे पार्टीज अते होर जानकारी लई कॉल करो 403-454-0347 403-454-0347 रासा प्लेडियम दा पता है 202 17th एवेन्यू साउथ ईस्ट कैलगरी।

0: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक रियो बैंकुएट हाल दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो किसी भी तरह दे ब्याह शादी दे प्रोग्राम, बर्थडे पार्टी जां होर फंक्शन संबंधी हाल बुक करन दी जानकारी लैण लई तुसी रियो बैंकुएट हाल नूं 403-633-2000 यानी 403-633-2000 ते संपर्क कर सकते हो। रियो बैंकुएट हाल दा पता है, यूनिट नंबर 2850, होपवेल प्लेस, नॉर्थ ईस्ट कैलगरी।
1: प्रोग्राम दा ए हिस्सा ABM कॉलेज दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। ABM कॉलेज विच किसी भी तरह दे हेल्थ प्रोग्राम्स, बिजनेस या IT प्रोग्राम्स दी जानकारी लैन लई कॉल करो 403-719-4300 403-719-4300। होर जानकारी लई साडी वेबसाइट abmcollege.com ते विजिट करो।

0: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक सुंदर लंबर इंडस्ट्रीज दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो तुसी फुल हाउस लंबर पैकेज, बेसमेंट ते गैराज मटेरियल दे नाल नाल सीटर ते फेंस दे समान बारे कोई भी जानकारी लैण लई 403-433-5555 यानी 403-433-5555 ते संपर्क कर सकदे हो। सुंदर लंबर इंडस्ट्रीज दा पता है 3501 23rd स्ट्रीट नॉर्थ ईस्ट कैलगरी।
1: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक एशिया पैसिफिक इमीग्रेशन दे मनिंदर सिंह टिल्लो होरां दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना दा फोन नंबर नोट करो 403-225-1111 403-225-1111। एशिया पैसिफिक इमीग्रेशन दे मनिंदर सिंह टिल्लो होरां दा पता नोट करो, यूनिट नंबर 144-3670 63 एवेन्यू नॉर्थ ईस्ट कैलगरी।

कैलगरी 24 घंटे 7 दिन चलन वाला इको एक पंजाबी धार्मिक रेडियो पंजाबी रेडियो 102.7 FM धार्मिक प्रोग्रामा दा आनंद मानने लई आज ही अपने करा ते कारा दी रेडियो नू पंजाबी रेडियो 102.7 FM ते ट्यून करो पंजाबी रेडियो।

प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक सुंदर बिल्डिंग एंड सप्लाईज दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो किसी भी तरह दे ड्राईवॉल, रूफिंग, इंसुलेशन दे नाल नाल किसी भी प्रकार दे कस्टम मेटल मिटन साइडिंग दे सामान बारे कोई भी जानकारी लैण लई तुसी अज ही निर्वैर जौहल जी नूं 403-690-8700 यानी 403-690-8700 जां फिर भजन सिंह जौहल जी नूं 403-561-0227 यानी 403-561-0227 ते संपर्क कर सकते हो। सुंदर बिल्डिंग एंड सप्लाईज लिमिटेड दे ऑफिस दा पता है यूनिट नंबर 4612 6th स्ट्रीट नॉर्थ ईस्ट कैलगरी। प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक M&R रूफिंग एंड साइटिंग लिमिटेड दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो किसी भी तरह दी रूफिंग, साइडिंग, स्टुको, सॉफ्ट फिश या स्मार्ट रिम, फ्लैट रूफ अते रेनोवेशन बारे कोई भी जानकारी लैण लई तुसी रंजीत विर्क जी नूं 403-903-0483 यानी 403-903-0483 ते संपर्क कर सकते हो। M&R रूफिंग एंड साइडिंग लिमिटेड।

0: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक रासा प्लेडियम दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। फैमिली डिनर, केटरिंग, स्मॉल बर्थडे पार्टीज अते होर जानकारी लई कॉल करो 403-454-0347 403-454-0347 रासा प्लेडियम दा पता है 202 17th Avenue साउथ ईस्ट कैलगरी नियर स्टैम्पेड ग्राउंड।
1: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक परमजीत पलाहा डेजर्डिन इंश्योरेंस एजेंट दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है।
2: इना तो किसे तरह दी इंश्योरेंस जिवें लाइफ, डिसेबिलिटी, ऑटो, होम, मोटरबाइक, बोट अते होर बिजनेस इंश्योरेंस बारे जानकारी लैण लई तुसी परमजीत पलाहा जी नूं 403-554-4444
1: यानी 403-554-4444 ते संपर्क कर सकदे हो। परमजीत पलाहा जी दे ऑफिस दा पता है यूनिट नंबर 210 2323 32nd Avenue North East Calgary।

0: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक ट्रैवल वर्ल्ड दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। टिकटां दी किसी भी तरह दी जानकारी लैण लई तुसी अज ही ट्रैवल वर्ल्ड नूं 403-717-0771 ते यानी 403-717-0771 ते संपर्क कर सकते हो। ट्रैवल वर्ल्ड दा पूरा पता नोट करो, ग्रीन प्लाजा यूनिट नंबर 1130 4818 वेस्ट विंड ड्राइव नॉर्थ ईस्ट कैलगरी। प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक मालवा टायर्स एंड सर्विसेज दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। ए 24 घंटे 7 दिन मोबाइल सर्विसेज प्रदान करदे ने। इना तो किसी भी तरह दे नवे ते पुराने ट्रक एंड ट्रेलर टायर्स, व्हील बैलेंस एंड अलाइनमेंट्स, टायर रोटेशन एंड रिपेयर्स दीयां सेवावां लैण लई तुसीं मालवा टायर्स नूं 403-899-1985 जां फिर 403-899-1984 ते संपर्क कर सकते हो। मालवा टायर्स एंड सर्विसेज दा पता है, बिल्डिंग नंबर 8616 44th स्ट्रीट साउथ ईस्ट कैलगरी।
1: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक कैनेडियन स्क्रू पाइल्स दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। होम एक्सटेंशन, पैटियो डेक, प्रीकास्ट कंक्रीट स्टेप अते किसी भी तरह दी सॉफ्ट ग्राउंड जिवें गैराज फ्लोर दे स्ट्रोंग अते सिक्योर बेस लई स्क्रू पाइल्स इंस्टॉल कराउण लई जसकरन बराड़ नू कॉल करो 403-439-7700 403-439-7700

प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक पंजाब इंश्योरेंस दे हरपिंदर सिंह सिद्धू दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो किसी भी तरह दी लाइफ इंश्योरेंस जां विजिटर इंश्योरेंस बारे कोई भी जानकारी लैण लई तुसी हरपिंदर सिद्धू जी नूं 403-404-3500 यानी 403-404-3500 ते संपर्क कर सकते हो। पंजाब इंश्योरेंस तो हरपिंदर सिंह सिद्धू। ए प्रोग्राम तुहाडे तक केयरिंग होम हेल्थ सॉल्यूशंस वालियां दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। विजिट केयरिंग होम हेल्थ सॉल्यूशंस, यूनिट नंबर 124-4774 वेस्ट विंस ड्राइव नॉर्थ ईस्ट कैलगरी। किसी भी तरह की जानकारी ले आज ही केयरिंग ते कॉल करो 403-605-6300 ते यानी 403-605-6300 ते। प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक HMP कस्टम कैबिनेट्स दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो किसी भी तरह दे कस्टम किचन, बार्स, वॉशरूम वैनिटी, क्लोजेट अते कमर्शियल मिल वर्क बारे कोई भी जानकारी लैण लई तुसी पॉल सेखो जी नूं 403-829-5000 या फिर 403-701-4947 ते संपर्क कर सकते हो। HMP कस्टम कैबिनेट्स लिमिटेड दा पता है यूनिट नंबर 11-2316 27 एवेन्यू नॉर्थ ईस्ट कैलगरी।

0: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक सुंदर लंबर इंडस्ट्रीज दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो तुसी फुल हाउस लंबर पैकेज, बेसमेंट ते गैराज मटेरियल दे नाल नाल सीटर ते फेंस दे समान बारे कोई भी जानकारी लैण लई 403-433-5555 यानी 403-433-5555 ते संपर्क कर सकदे हो। सुंदर लंबर इंडस्ट्रीज दा पता है 3501 23rd Street, नॉर्थ ईस्ट कैलगरी।
1: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक एशिया पैसिफिक इमीग्रेशन दे मनिंदर सिंह ढिल्लो होरां दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना दा फोन नंबर नोट करो 403-225-1111 403-225-1111। एशिया पैसिफिक इमीग्रेशन दे मनिंदर सिंह ढिल्लो होरां दा पता नोट करो, यूनिट नंबर 144 3670 Trent Avenue, नॉर्थ ईस्ट कैलगरी।

0: कैलगरी विच 24 घंटे 7 दिन चलन वाले
1: पंजाबी रेडियो 102.7 FM वालों हर रोज शब्द कीर्तन धार्मिक कथा ढाडी वारा तो इलावा होर भी बहुत सारे धार्मिक प्रोग्राम प्रसारित किए जाते ने जिन्हां च स्टूडियो दे नंबर उत्ते कॉल करके तुसी भी हिस्सा ले सकते हो।
0: प्रोग्रामा संबंधी या सहयोग ले किसी भी तरह की जानकारी लेन ले तुसी फोन कर सकते हो। फोन नंबर है 403-238-6667।
1: होर जानकारी ले विजिट करो punjabiradio.ca। प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक परमजीत पलाहा डेजर्डिन इंश्योरेंस एजेंट दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है।
0: इना तो किसे तरह दी इंश्योरेंस जिवें लाइफ डिसेबिलिटी ऑटो होम मोटरबाइक बोट अते होर बिजनेस इंश्योरेंस बारे जानकारी लैण लई तुसी परमजीत पलाहा जी नूं 403-554-4444
1: यानी 403-554-4444 ते संपर्क कर सकते हो। परमजीत पलाहा जी दे ऑफिस दा पता है यूनिट नंबर 210 2323 32nd Avenue North East Calgary।

प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक ट्रैवल वर्ल्ड दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। टिकटां दी किसी भी तरह दी जानकारी लैण लई तुसी अज ही ट्रैवल वर्ल्ड नूं 403-717-0771 ते यानी 403-717-0771 ते संपर्क कर सकते हो। ट्रैवल वर्ल्ड दा पूरा पता नोट करो, ग्रीन प्लाजा यूनिट नंबर 1130 4818 वेस्ट विंड ड्राइव नॉर्थ ईस्ट कैलगरी। प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक मालवा टायर्स एंड सर्विसेज दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। ए 24 घंटे 7 दिन मोबाइल सर्विसेज प्रदान करदे ने। इन्हां तों किसी भी तरह दे नवें ते पुराने ट्रक एंड ट्रेलर टायर्स, व्हील बैलेंस एंड अलाइनमेंट्स, टायर रोटेशन एंड रिपेयर्स दीआं सेवावां लैण लई तुसी मालवा टायर्स नूं 403-899-1985 जां फिर 403-899-1984 ते संपर्क कर सकते हो। मालवा टायर्स एंड सर्विसेज दा पता है, बिल्डिंग नंबर 8616, 44th स्ट्रीट, साउथ ईस्ट, कैलगरी।

प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक सुंदर लंबर इंडस्ट्रीज दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो तुसी फुल हाउस लंबर पैकेज, बेसमेंट ते गैराज मटेरियल दे नाल नाल सीटर ते फेंस दे समान बारे कोई भी जानकारी लैण लई 403-433-5555 यानी 403-433-5555 ते संपर्क कर सकते हो। सुंदर लंबर इंडस्ट्रीज दा पता है 3501 23rd स्ट्रीट नॉर्थ ईस्ट कैलगरी। प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक YYC होम केयर सर्विसेज दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। ए किसी भी उम्र तो लै के बुजुर्गां तक दी घर विच रह के संभाल करदे ने। इना दे एक्सपीरियंस्ड पंजाबी केयर गिवर्स डेली एक्टिविटीज जिवें नवाउणा, दवाई देना, अपॉइंटमेंट्स ते लै के जाना या सफाई विच मदद करदे ने। तुहानू जेब विचों कोई भी खर्चा नहीं आएगा। ए सिद्धा सरकार नू बिल करते ने। होर जानकारी लई कॉल करो 825-760-0983 825-760-0983।

0: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक कैसिडी हे इंजरी लॉ तो तारा कैसिडी जी दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो किसी भी तरह दे मोटर व्हीकल एक्सीडेंट इंजरी क्लेम बारे कोई भी जानकारी लैण लई तुसी तारा कैसिडी जी नूं 403-770-1099 यानी 403-777-1099 ते संपर्क कर सकते हो। कैसिडी हे इंजरी लॉ दा पता है, यूनिट नंबर 1507 14 एवेन्यू साउथ वेस्ट कैलगरी।
1: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक रासा प्लेडियम दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। फैमिली डिनर, केटरिंग, स्मॉल बर्थडे पार्टीज अते होर जानकारी लई कॉल करो 403-454-0347 403-454-0347 रासा प्लेडियम दा पता है 202 17th एवेन्यू साउथ ईस्ट कैलगरी नियर स्टैंड

0: इंश्योरेंस एजेंट दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है।
1: इना तो किसी तरह दी इंश्योरेंस जिवें लाइफ, डिसेबिलिटी, ऑटो, होम, मोटरबाइक, बोट अते होर बिजनेस इंश्योरेंस बारे जानकारी लेन ले तुसी परमजीत पलाहा जी नु 403-544-4444
0: यानी 403-554-4444 ते संपर्क कर सकदे हो। परमजीत पलाहा जी दे ऑफिस दा पता है यूनिट नंबर 210-23-23 32nd एवेन्यू नॉर्थ ईस्ट कैलगरी। वाहे गुरु जी का खालसा, वाहे गुरु जी की फतेह। कैलगरी दे इको एक पंजाबी धार्मिक रेडियो 102.7 FM ते हुन सर्वन कर दिया श्री हरमंदर साहब अमृतसर तो श्री रहरा साहब जी दे पाठ। वाहे गुरु जी का खालसा, वाहे गुरु जी की फतेह।
2: हर जोग जोग

दुखा सो क्यों विसरै मेरी माए साचा साहेब साचा नाए रहाओ साचे नाम की तिल वड़ियाई आख थके कीमत नहीं पाई जे सब मिलकै आखन पाहे वड़ा ना होवै घाट ना जाए ना ओह मरै ना होवै सोग देंदा रहै ना चूकै भोग गुण एहो होर नाही कोए ना को होवै ना को होए जे बड़ आप ते बड़ तेरी दात जिन दिन करकै कीती रात खासम विसार है ते कम जात नानक नावै बाज सनात राग गुजरी महला चौथा हर के जान सतगुर सतपुरखा बिनो करो गुरपास हम कीरे किरम सतगुर सरनाई कर दया नाम प्रगास मेरे मीत गुरदेव मोको राम नाम प्रगास गुरमत नाम मेरा प्राण सखाई हर कीर्त हमरी रह रास रहाओ हर जन के बड भाग वडेरे जिन हर हर सरदा हर प्यास हर हर नाम मिलै तृप्ता सह मिल संगत गुण प्रगास जिन हर हर हरस नाम ना पाया ते भागहीन जम पास जो सतगुर सरण संगत नहीं आए त्रिग जीवे त्रिग जीवास जिन हर जन सतगुर संगत पाई तिन तुर मस्तक लिखिया लिखास तन तन सत संगत जित हरस पाया मिल जन नानक नाम प्रगास राग गुजरी महला पंजवा काहे रे मन चित वै उद्यम जा हर हर जियो परया सैल पत्थर मह जंतो पाए ताका रिज कागै कर धरिया मेरे माधो जी सत संगत मिले सो तरिया गुर प्रसाद परम पद पाया सूके काष्ट हरिया रहाओ जनन पिता लोक सुत बनता कोय न किसकी तरिया सिर सिर रिजक संभाहे ठाकुर काहे मन भाव करिया उडे उड़ावै सह कोसा तिस पाछै बचरे शरिया तिन कवन खलावै कवन चुगावै मन मह सिमरन करिया।

तेरांतना परावरया रागासा महला चौथा सो पुरख एक ओंकार सतगुरु प्रसाद सो पुरख निरंजन हर पुरख निरंजन हर अगमा अगमा पारा सब त्याव है सब त्याव है तुद जी हर सच्चे सृजनहारा सब जी तुम्हारे जी तू जिया का दा तारा हर त्याव हो संत हो जी सब दुख विसारन हारा हरा पे ठाकुर हरा पे सेवक जी क्या नानक जंत विचारा तू घट घट अंतर सर्ब निरंतर जी हर एको पुरख समाना एक दाते एक पेखारी जी सब तेरे चोज बडाणा तू आपे दाता आपे भुगता जी हां तुद बिन अवर ना जाना तू पार ब्रह्म बेअंत बेअंत जी तेरे क्या गुणाख बखाना जो सेव है जो सेव है तुद जी जन नानक तिन कुरबाना हर त्याव है तुद जी से जान जुग मह सुखवासी से मुक्त भये जिन हर त्याया जी तिन तूटी जमकी फासी जे निरपौ जिन हर निरपौ त्याया जी तिनका पाओ सब गवासी जिन सेविया मेरा हर जी ते हर हर रूप समासी से धन जिन हर त्याया जी जन नानक तिन बल जासी तेरी भगत भंडार जी भरे बेअंत बेअंता तेरे भगत सलाहन तुद जी हर अनक अनेक अनंता तेरी अनक करै हर पूजा जी तप तप है जप है बेअंता तेरे अनेक पढ़ै बहु सिमरत सास जी कर किरिया खट कर्म करंता से भगत भले जन नानक जी जो भाव है मेरे हर भगवंता तू आद पुरख अपरंपर करता जी तुद जेवड़ अवर ना कोई तू जुग जुग एको सदा सदा तू एको जी तू नहीं चल करता सोई तुद आपे भावै सोई वरतै जी तू आपे करहें सो होई तुदापे सृष्ट सब उपाई जी तुदापे सिरज सब गोई जन नानक गुण गावै करते के जी जो सब सह का जान ओई आसा महला चौथा तू करता सचियार मैडा साई जो तो पावै सोई थीसी जो तू दे सोई हों पाई रहाओ सब तेरी तू सबनी त्याया जिसनो कृपा करहें तिन नाम रतन पाया गुरमुख लादा मनमुख गवाया तुद आप बिछोड़िया आप मिलाया तू दरियाओ सब तुझ ही माहे तुझ बिन दूजा कोई नाहे जी जंत सब तेरा खेल बिजोग मिल बिछुड़िया संजोगी मेल जिसनो तू जाना है सोई जन जाने हर गुण सद ही आख बखाने जिन हर सेविया तिन सुख पाया सहजे ही हर नाम समाया तू आपे करता तेरा किया सब होए तुद बिन दूजा अवर ना कोए तू कर कर वेख है जाने सोए जन नानक गुरमुख प्रगट होए आसा महला पहला
तित सर्वरडै भईले निवासा, पाणी पावक तिन्हे किया। पंक जो मोह पग नहीं चाला, हम देखा तह डूबी अले। मन एक न चेत समूढ़ मना, हर विसरत तेरे गुण गलया रहाओ। ना हो जति सती नहीं पढ़िया, मूर्ख मुगदा जन्म भया। प्रणवत नानक तिन की सरणा, जिंतु नाही विसरिया। आसा महला पंजवा, भई प्राप्त मानुख देहुरिया, गोविंद मिलन की हे तेरी बरिया। अवर काज तेरा कितै ना काम, मिल साध संगत भज केवल नाम। सरंजाम लाग भव जल तरण कै, जन्म वृथा जात रंग माया कै रहाओ। जाप ताप

एक ओंकार श्री वाहिगुरु जी की फतेह पातशाही दसवें कवियो वाच बेनती चौपई हमरे करो हाथ दा रक्षा पूर्ण होए चित की इच्छा तब चरण नमन रहा हमारा अपना जान करो प्रतपारा हमरे दुष्ट सवै तुम काव हो आप हाद मोहे बिचाव हो सुखी बसा मोरो परवारा सेवक सिख सभा करतारा मोर अच्छा निज करदा करिया सब बैरन को आज संघरिया पूर्ण होए हमारी आसा तोर भजन की रह प्यासा तुम्हें छाड़ कोई अवर ना त्याओ जो वर चाहो सो तुम ते पाओ सेवक सिख हमारे तारी है चुन चुन सत्र हमारे मारी है आप हाथ द मुझे अवरिया मरण काल का त्रास निवरिया पूजो सदा हमारे पच्छा श्री अस्तोज जु करिहो रक्षा राख ले हो मोह राखन हारे साहेब संत सहाय प्यारे दीन बंद दुष्टन के अंता तुम हो पुरी चतुर्दश कंता काल पाए ब्रह्मा बाप तरा काल पाए शिवजू अवतरा काल पाए कर विष्णु प्रकाशा सकल काल का किया तमाशा जवन काल जोगी शिव कियो वेद राज ब्रह्मा जू थियो जवन काल सब लोक सवारा नमस्कार है ताहे हमारा जवन काल सब जगत बनायो देव दैत जशन उपजायो आद अंत कै अवतारा सोई गुरु समझियो हमारा नमस्कार तिसही को हमारी सकल प्रजा जन आप सवारी सिवकन को सब गुण सुख दियो सत्रन को पल मोबद कियो कट कट के अंतर की जानत भले बुरे की पीर पछानत चीटी ते कुंचर स्थूला सा पर कृपा दृष्ट कर फूला संतन दुख पाए ते दुखी सुख पाए साधन के सुखी एक की पीर पछान घट घट के पट पट की जान जावुद करख करा कर तारा प्रजा धरत तब देह अपारा जावया करख करत हो कबहूँ तुम मैं मिलत देह तर सब हूँ जेते वादन सृष्ट सब धारै आप आपनी बूझ उचारै तुम सब ही ते रहत निरालम जानत भेद भेद आरालम रंका निर्विका निर्लंब आद अनिल अनाद असंभ ताका मूढ़ चारत भेदा जाको पेवना पापत भेदा ताको कर पाहन अनुमानत महामूढ़ कछ भेद न जानत महादेव को कहत सदा शिव निरंकार का चीनत नह पेव आप अपनी बुद्ध है जेती वर्णत भिन्न भिन्न तोय तेती तुमरा लखा ना जाए पसारा किह बिद सजा प्रथम संसारा एक रूप नूप स्वरूपा रंग भयो राव कही भूपा अंडज जेरज सेत जकीनी उत्पुज खान बहुर रच दीनी कहूँ फूल राजा है बैठा कहूँ सिमट भयो शंकर अकैठा सागरी सृष्ट दिखाए अचंपव आद जुगाद स्वरूप सजंपव अब रक्षा मेरी तुम करो सिख उबार असिख संगरो दुष्जिते उठवा तुत पाता सकल मलेश करो रण काता
जे अस भुजतव सरणी परे तिनके दुष्ट दुखित है मरे। पुरख जवन पग परे तिहारे तिनके तुम संकट सब टारे। जो कल को एक बार त्यै हैं ताकि काल निकट न हैं। रक्षा होए तहें सब काला दुष्ट रिष्ट ट्रें तत्काला। कृपा दृष्ट तन जाहे निहर हो ताके ताप तन कमह हर हो। रिद्ध सिद्ध कर्मो सब होई दुष्ट शाह छ सकै न कोई। एक बार जिन तुम्हें संभारा काल फास्ते ताहे उबारा। जिन नर नाम तिहारो कहा दारद दुष्ट दोख ते रहा।

सवैया पाएंगे जब ते तुमरे तब ते को आंतरे नहीं आने हो। राम रहीम पुराण कुरान अनेक कह मत एक ना माने हो। सिमरत शास्त्र वेद स्वै बहु भेद कह हम एक ना जाने हो। श्री असपान कृपा तुमरी कर मैं ना कहो सब तोहे बखाने। दोहरा

राम कली महला तीजा आनंद एक ओंकार सतगुर प्रसाद। आनंद पिया मेरी माए सतगुरु मैं पाया, सतगुर तां पाया सह सेती मन वजियां बाधाइयां। राग रतन परवार परियां शब्द गावण आईया, शब्दो तां गावो हरी केरा मन जनी वसाया। कह नानक आनंद होआ सतगुरु मैं पाया, ए मन मेरे आ तू सदा रहो हर नाले, हर नाल हो तू मन मेरे दुख सावे सारना। अंगीकार हो करे तेरा कार्ज सब सवारना, सबना गल्लां समरत स्वामी सो क्यों मनहो बिसारे। कह नानक मन मेरे सदा रहो हर नाले, साचे साहेबा क्या नाहीं कर तेरा, करता तेरा सब किश है जिस देह सो पावे। सदा सिफत सलाह तेरी नाम मन वसावे, नाम जिनकै मन वसिया बाजे शब्द कनेरे। कह नानक सच्चे साहेब क्या नाहीं कर तेरा, साचा नाम मेरा आधारो, साच नाम आधार मेरा जन भुखा सब गवाईया। कर शांत सुख मन आए वसिया, जिन इच्छा सा पूजाईया। सदा कुर्बान कीता गुरु विट हो, जिस दी आए बड़िआईया। कह नानक सुनो संत हो, शब्द धरो प्यारो, साचा नाम मेरा आधारो। बाजे पंच शब्द तित कर सुभागै, कर सुभागै शब्द बाजे कला जित कर धारिया। पंच दूत तुद वस कीते काल कंटक मारिया, तुर कर्म पाया तुद जिन कौ से नाम हर कै लागे। कह नानक तह सुख होआ तित घर अनहद वाजे। आनंद

सतनाम श्री वाहे गुरु साहेब जी। सोरठ महला नावा मानरे प्रभु के शरण विचार जह सिमरत गन कासी उदरी ताको जास उर तार। मान रे प्रभु के शरण विचार जह सिमरत गन कासी उदरी ताको जास उर तार। रहा अटल भयो तू जाके सिमरन आर निरपय पाद पाया। दुख हरता इह विद को स्वामी तै काहे बिसराया। जावहि शरण गही कृपा निध

निमख माहे निस्तारा नानक कहत चेत चिंता मन तै पी उतर पार अजा मल पापी जग जाने

नानक कहत चेत चिंतामन तैपी उत्तर पार। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।